और ये प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

आया जगदीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आ रही साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका याग्निक क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नैतिकेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर ये आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

फिल्म नागिन जो नहीं खनती फिरन फाइव तक में पिक्चराइज किया गया है सुनने वालों, और इसमें जो स्टार कास्ट थे प्रदीप कुमार, विजयंती माला, जीवन मुबारक, और गीत हमको सुनाए लता जी, और साथ में देखे तो आशा भोसले जी और हेमंत कुमार जी के आवाज़ में यह सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बार है अकेली मत जाइयो फिल्म बैजू भौरा से।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में सुनाई हमको फिल्म बैजू भौरा से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है।

izbare akeli mat jaiyo, film ka naam singer hai लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब।

हवा, ये मस्ताना मौसम, जैसे हमने बताया गीत के शुरुआत में, तो लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अकेली मत जाइयो फिल्म का नाम, वही फिल्म अकेली मत जाइयो से।

सवाल आप करें, एक सवाल मैं करूं। जी हाँ, लाइफ ऑन इत्तेहाक फाहम हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप चुने।

लता और रफ़ी जी ने सुना दी कि कर गए जिसका इंतज़ार, देखो लाई मेरा प्यार। फिल्म में जो स्टार कास्ट थे राजेंद्र कुमार और जमुना, आप सोचते होंगे मैं तो कह दी फिल्म पर नाम नहीं बताई, तो यहाँ से नाम है फिल्म हमराही, नाम है फिल्म हमराही, नाम है फिल्म हमराही।

खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुँच नहीं जाता मुकाम पर।

कोयल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

के लिए। सुनने वालों, यहाँ से हम आपके लिए एक सुंदर सा गीत लगा देती हूँ जो आप ज़रूर सुनेंगे और पसंद करेंगे।

करारी किस लिए है। बलबीर और मोहम्मद रफ़ी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाए है। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बैंत अलीन एन एन एन पर्सन, एन यूनिक पर्सन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें। अपने आप को खसोंद एन खलुक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटे दार लहंगा जो हमको गाकर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

एलम मिलन से निकाला गया सुने वालों, ये सुंदर सा गीत जो लता जी फरमाई कि तो है सवरिया ना ही खबरिया। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से, जी हाँ, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है।

जो बात हम आपको बतलाने जा रहे हैं, हम आशा यही रखते हैं कि आप मुझ पर नाराज ना हो, क्योंकि आज के जमाना का ये हकीकत है। तो इसको जरूर ध्यान पूर्वक आप श्रवण करें। अगर आप इस तरह का है तो जरूर आप पर लागू है। सुनिए और पहचानिए अपने आप को।

मित्रों, जरूरी नहीं है कि मुझे सभी लोग प्यार करें। मेरे लिए जो वादा महत्वपूर्ण है वो है सही लोगों द्वारा प्यार पाना। मित्रों, मैं आपको हर दिन के लिए एक फूल और एक मैत्रीपूर्ण शब्द, एक प्रसन्न मुस्कान और आपके कंधों के चारों ओर एक हाथ और एक आंख मारने की कामना करता हूं, जो काम आए। लेकिन सबसे ऊपर एक अंगूठा, यही आशा से कि आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। मित्रों, आपके आंसुओं के लिए एक अलिंगन यानि कुनिफल, आपके लिए एक अलिंगन प्यार और आराम से भरा है एक अलिंगन। क्योंकि कभी कभी ये जरूरी होता है मुश्किल की घड़ियों में एक झप्पी, एक अलिंगन, एक कुनिफल इंसान को जरूरी पड़ जाता है। मित्रों,

सज्जनों, उस परिवार के बारे में चिंता ना करें जो आपको अनदेखा करते हैं और आपको ऐसा महसूस कराते हैं क्योंकि उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसे जाने दें और उन लोगों से प्यार करें जो हमेशा आपके लिए मौजूद है, तैयार रहते हैं मदद करने के लिए। मित्रों, और जो परिवार या रिश्तेदार मेरे लिए गलत विचार रखते हैं, उन्हें मैं अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानता। परिवार एक दूसरे की मदद और सुरक्षा के लिए बना है, एक दूसरे को नष्ट करने के लिए नहीं, जैसे आप करते हैं। नहीं, आप ऐसे नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते रहना, अच्छाई करते रहो। मित्रों, ये आपके जीवन में बहुत कल्याणकारी साबित होगा।

मित्रों, यदि आप अतीत को पीछे नहीं छोड़ते हैं तो ये आपके भविष्य के उस प्रेम को नष्ट कर देगा जो आज आपको देना था, न कि जो कल था। वो तो बीत गया, बीत गया। मैं अब वो नहीं रहा जो मैं था, जो सब कुछ किया करता था, जो दूसरों को मुझसे अपेक्षा थी। अब मैं वही करता हूँ जो मैं खुद की सुनना चाहता हूँ और अपने दिल की सुनता हूँ। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं बदल गया हूँ, तो मैं कहता हूँ नहीं नहीं, मैंने उस तरह जीना बंद कर दिया है जैसे आप चाहते थे। मित्रों, जैसे आप चाहते थे इस तरह आपको भी जीना चाहिए।

वक्रतुंड महाकाया सूर्यकोटि संप्रभा निर्विधिनम कुरु मे देवा सर्वकार्यषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् पारब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमः माता पिता चरणं नमः विद्या प्रदायकं दीक्षं मंत्रं गुरु वंदे वंदे गुरु पद पुनम पुनम। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमम। सुनने वालों सभी को हार्दिक से अभिनंदन करते हुए मैं संजय जो आपके साथ जुड़ गए हैं कुछ समय तक आपके साथ व्यतीत करूंगा और कुछ सुंदर सुंदर भजनों के साथ। जो बीमार है भगवान से यही विनती प्रार्थना किया जाता है कि आपके स्वास्थ्य में परिवर्तन आवे। जिसके घर पे एक नया शिशु ने जन्म लिया है उन्हें बहुत सा बधाई दिया जाता है। जिनका आज सालगिरह है उन्हें बहुत सा हैप्पी बर्थडे। जो अपने तैयारी कर रहे हैं कुछ शिक्षा दीक्षा लेने और देने को तो उनको भी माता सरस्वती को ओर से शुभकामनाएं प्रस्तुत है। जो अपना तैयारी कर रहे हैं नौकरी के ओर तो उनको ओर से ये कहना चाहूंगा, हर बार की तरह की गांधी जी को भूलना नहीं। ये मत सोचना कि हमारा देश हमारे लिए क्या कर सकते हैं, ये सोच कि हम अपने देश के लिए क्या कर सकते हैं। अगर ये सोच जा आपको रहेंगे तो ये अगर मैं आपसे ज्यादा ना कह दूं तो ये जरूर स्पर्श है कि आप अपना समय पे पेंशन को प्राप्त कर सकेंगे।

सुनो लो गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक सुंदर सा दोहा हम सबके लिए लिख गए हैं। और तुलसीदास कह गए हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान। कहते हैं कि काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मुरुख तुलसी एक समान।

इसका अर्थ क्या होता है? अर्थ यही है कि जब तक मनुष्य के मन में काम, क्रोध, अहंकार और लालच भरे हुए है, तब तक एक ज्ञानी पंडित और एक मूर्ख में कोई अंतर नहीं होता है। दोनों समान होते हैं।

सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करते हूँ और एक सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे।

स्वस्ति माहौल के हवास में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने। ये फाउन हिंदुस्तानी रेडियो है और हमारे सभी कर्मचारियों जो हमारे सभी कोलेग खास होते हैं उनके ओर से एक सुंदर सा भजन के ओर बढ़ेंगे। भजन का बोल दो तीन है जिंदगी।

आई जगत में काई करो, यानी कहने के तात्पर्य ये है, हम जगत में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करके जाए जिसे हमें हाँ कोई बाद में कुछ बातचीत करके, ऐसा ना हो कि हमारा जो कर्म किए हमने वो कर्म ऐसा है जिसके बारे में लोग नेगेटिव बात करते रहे। दोस्तों सुन लो वालों, बातचीत, बातचीत ये दो शब्द ही है, पर की जाए तो दिलों को कई मैल धुल जाते हैं। एक सुंदर सा भजन और हम चलाने वाले हैं जो हमारे स्टूडियो यानी फाहोन रेडियो का सभी कोलेगास की ओर से।

स्वस्ति मिश्रा के आवाज में ये सुंदर सा भजन कि तेरी शुक्रिया है सुबह की पहली प्रणाम कि हे ईश्वर आपकी कृपा से एक नया सुबह देखने का सौभाग्य मिला है। आपकी आभार हूँ मेरे सभी मित्रों और सभी संबंधियों, सुखी रहे, स्वस्थ रहे और दीर्घ आयु को प्राप्त करे। अगला भजन की ओर हम बढ़ने वाले हैं सुनने वालों, और ये भजन भी सभी को लेकर खास हमारे डायरेक्टर कुमार घिराव जी के ओर से, जॉनी सुरजबाली जी के ओर से, शांता खेमाई, रजेश बदलू, राजन द्वारका, प्रदीप फेराई, विजंती नाथू, रोसिता गिरजा सिंह, सुरेन भगवान दीन, बबली आसरा, रोमियो हाउस, संजय भगवंत, गंगा चंद्र जी और यूसुफ सितु, बीबी साहिबा रहीम बख्श जी, श्याम पूरन, अनुराधा चंद्र जी और राजेंद्र सिंह हैन और अनिल सरजुग जी के ओर से ये सुंदर सा भजन।

जब कुछ समझ में ना आए तो सीताराम गाइए, और यही संदेश, जो सुंदर सा संदेश हमारे फाहुन का सभी कोलेखास की ओर से रखा गया। और एक मैसेज जो उत्तम नगर भारत से आया है, ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है, और संदेश ये है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। तो ये सुंदर सा संदेश भाई ईश्वर जी जो उत्तम नगर भारत से और ये संदेश को भेजे है, एक बार और उसे दोहरा दिया जाता है कि उन लोगों के जीवन में आनंद और शांति कई गुना बढ़ जाती है जिन्होंने प्रशंसा और निंदा दोनों में एक जैसा रहना सीख लिया है। एक और सुंदर सा भजन की ओर बढ़ेंगे सुनने वालों।

होगा वही जो राम ने लिखा है। ये सुंदर सा भजन हम सब सुने अजय तिवारी के आवाज में। सुनवलो, हमारे पास मोहन गार्डन भारत से भी एक और मैसेज आए है कि गुजरी हुई जिंदगी को तू कभी याद ना कर, तकदीर में जो लिखा होगा उसकी फरियाद ना कर, जो होगा वो होकर रहेगा, तू कल की फिक्र में आज की हंसी बर्बाद ना कर। ये सुंदर सा मैसेज श्रीमती सुनील जी जो मोहन गार्डन से भेजे है। बहुत खुशी की कार्यक्रम को अन्य और स्थानों पे भी सुना जाता है। सभी को एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और एक और सुंदर सा भजन के ओर बढ़ रहे हैं।

जय किशोरी और सोनू निगम के आवाज़ में ये सुंदर सा भजन हम सब सुने जो हमारे देश में सफ़र करने को आए हैं। हार्दिक से स्वागत किया जाता है और कहना ये चाहूँगा कि हमारे देश में हॉलैंड में कितने मंदिरों है, जैसे कि देनहाग में राधे कृष्ण मंदिर, देव मंदिर जो हर रविवार को और लगाया जाता है शाम में 2 बजे से 5 बजे तक, मंगलवार को राधे कृष्ण मंदिर जो 6 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, सेवाधाम मंदिर जो देनहाग शहर में वो भी शाम को लगाया जाता है हर रविवार को, और इसी प्रकार से सुतमेर शहर में लक्ष्मी नारायण मंदिर जो कि हर मंगलवार को लगाया जाता है 6 बजे से 8 बजे तक, दमेरन शहर उत्तराखंड में गणेश मंदिर जो भी हर मंगलवार को 4 बजे से 8 बजे तक लगाया जाता है, इसी तरह से अलमेर में विष्णु मंदिर जिसे हम गोल्डन टेंपल के नाम से जानते हैं वो भी हर रविवार को 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। ऐसे भी हम लोग के देश में जो सुंदर सुंदर मंदिरों का स्थान है जहाँ पर हम सब जा कर के सत्संग आदि कर सकते हैं और कथन वहाँ हर अलग मंदिर दिन पे कथा को और जो व्यास भगवान का प्रार्थना पूजन आराधना किया जाता है संदेश को रखा जाता है। रोटरडम शहर में शिव मंदिर और शिव मंदिर अर्नहेम में भी हर रविवार को जो सुबह में रोटरडम में और सुबह से 9 बजे से 12 बजे तक, और अर्नहेम में जो कि 2 बजे से 5 बजे तक लगाया जाता है। हम एक और भजन की ओर बढ़ेंगे, राधा रानी का चरण जो कि चित्रलेखा जी के आवाज में रखने वाले हैं।

राधा रानी के चरण प्यारी प्यारी, चित्रलेखा जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन हम सबको सुनने को प्राप्त हुआ। दोस्तों, हम एक और मैसेज जो प्रदीप जी जो उत्तम नगर से हमारे लिए भेजे हैं, और ये मैसेज का बोल ये है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि समय और सत्ता, संपत्ति और शरीर चाहे साथ दे या ना दे, लेकिन स्वभाव और समझदारी और सच्चे संबंध हमेशा साथ देते हैं। तो भाई प्रदीप जी को बहुत सा और नमन करता हूँ, और ये सुंदर सा संदेश रेडियो पर रख दिया गया। हम एक और सुंदर से भजन की ओर बढ़ेंगे। सुनने वालों, जया किशोरी जी के आवाज में ये सुंदर सा भजन।

अगर आपका दिन एक शुभ दिन हो, यही आशा लेकर हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ जुड़ गए हैं।

धुरंधर फिल्म से निकाला गया कि दिल ही ना माने ये, और कहते हैं कि ज्यादा अच्छा होना भी गुना है, ज्यादा अच्छा ही होना भी गुना है, पता नहीं चलता लोग इज्जत कर रहे हैं या इस्तेमाल कर रहे हैं। तो दोस्तों, एक और सुंदर सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे और इसी प्रकार से नए नए न्यू सॉन्ग्स के ओर हम आज बढ़ चले हैं। देखते हैं क्या और नया गीत हमारे लिए है।

चुनरी चुनरी, ये सुंदर सा गीत जो कि एक न्यू यश में रखा गया। और दोस्तों सुनने वालों, भाषा शरीर का एक ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देते हैं। तो बस इस पे थोड़ा से ध्यान देना। आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ और सुंदर दिवस आपको रहे। Een hele vreugdige en gelukkige dag toegewenst.

स्टूडियो में तो थोड़ा बटन ज्यादा लेफ्ट की ओर घुमा दिया था या राइट की ओर पता नहीं, पर लाल जल रहा था। आप अपना रेडियो का बटन किस ओर घुमा रहे हैं, बस ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ।

सुंदर सा गीत जो निकाला गया एक फिल्म जो 2025 में रिलीज हुआ। कहते हैं कि जिंदगी बहुत आसान हो जाता है, जिंदगी बहुत आसान हो जाता है जब परखने वाले नहीं समझने वाला मिल जाते हैं। एक और नया सा गीत के ओर हम बढ़ेंगे सुनने वालों, और आपको एक शुभ दिवस प्रस्तुत करता हूँ। मौसम पता नहीं कैसे है, गर्मी है या सर्दी है, पर जरूर अपना चलने का व्यवस्था आज का भूलना नहीं, क्योंकि कहा गया है कि रोज हमें कम से कम 6 दर्शन स्थापन तो करना ही है, तो उस पे जरूर ध्यान देना। और यहाँ से फाहुन से हम सब कुछ सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े रहेंगे।

0: वेलकम टू द जंगल, ये फिल्म जो 2026 में है और इसमें से ये निकाला गया ये सुंदर सा गीत जो भोजपुरी में गाया गया है। और कहते हैं कि कुछ पंजाबी गीतों जो फिल्मों में चलाया जाता है आजकल, देखो भोजपुरी भी खूब जोर तोर से सहयोग दे रहा है बॉलीवुड के फिल्म इंडस्ट्री में। भोजपुरी जो सुरिनामी, हमारे सुरिनाम भाषा से ज्यादा मिलते जुलते है।
1: के अंदर एक लड़की को रखना जिसे 78 ईयर से देखा तक नहीं है।

वापस आऊंगा। कहते हैं दोस्तों सुनने वालों की देखकर दूसरों की आनंदित होना स्वस्थ मन की पहचान है। देखकर दूसरों की आनंदित होना भी स्वस्थ मन की पहचान है। ये सुंदर सा संदेश रखने वाले ईश्वर सिंह जो भारत से हमारे लिए ये मैसेज को भेजा और आपके तक पहुंचा दिया गया।

एक फिल्म जिसमें आयुष्मान और भूमि जी ने अपना कला सा प्रदर्शन दिए। दोस्तों कहते भी कि समय पर समय देने वाला व्यक्ति समय पर मिल जाए तो समय को अच्छा होने में समय नहीं लगता है। एक और सुंदर सा गीत को मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है।

ग्रेट सॉन्ग हल्लो, जिसमें काम किए राम चरण, बुच्ची बाबू, श्रुति हसन और जानवी कपूर ने। तो ये बात कहा जाता है कि समय और बचपन दोनों ही यादों में सबसे सुंदर लगते हैं। तो क्यों ना हम एक और सुंदर सा सॉन्ग की ओर बढ़ते हैं।

आर्यन खान और राशमिका मधाना अपना कला से प्रदर्शन दिया। ये सुंदर सा गीत जो निकाला गया न्यू सॉन्ग 2026 रोमांटिक सॉन्ग जो कि निकाला गया दिल पे तेरा नाम। दोस्तों सुनने वालों, हम इसी तरह से और भी सुंदर सुंदर गीतों के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं। और भारत मोहन गार्डन से भाई ईश्वर सिंह जी ने ये संदेश को भेजा है कि दुनिया में दो ही पौधे ऐसा है जो कभी मुरझाते नहीं। पहला जो निस्वार्थ प्रेम से और रहे, और दूसरा जो अटूट विश्वास।

तृप्ति डिमरी और शाहिद कपूर ने ये फिल्म में काम किए। दोस्तों सुनने वालों, मैं आपके साथ कुछ समय तक और व्यतीत करूंगा। एक और सुंदर सा गीत मैंने प्लेयर पर चुन करके रखे हुए है, क्यों ना उस ओर बढ़ते हैं कि मुझको तुमसे प्यार हुआ।

इमरान हाशमी ने फिल्म में काम किए। दोस्तों, ये फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो है, 2400 घंटा आपके साथ, जो हम सब जुड़े रहते हैं, हमारे सभी कोलेखा साथी अपने अपने समय पे और यहाँ उपस्थित होकर के कार्यक्रम को रखते हैं। किसी ने मेरे पास ये संदेश को भेजा है कि हद से ज़्यादा सीधा सादा होना भी ठीक नहीं है, हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ों को काटा जाता है। तो आप खुद समझदार हो, समझ जाना क्या संदेश देना चाहते हैं। जो व्यक्ति ने हमें हमारे पास ये संदेश को भेजा है, एम फी नाम है उनका, हम एक और सुंदर सा गीत की ओर बढ़ेंगे।

0: सुनने वालों, आपके सेवा में हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किया जा रहा है कार्यक्रम ज्योति का प्रकाश। हमारे साथ जो स्टूडियो में उपस्थित है श्रीमती मीनाक्षी जी, जो अपने ओर से भी संदेश रखने वाले हैं, और अभी हम कनेक्ट होने वाले हैं अनुराधा जी से। अनुराधा जी जो दिल्ली से हम सबके साथ अभी कनेक्ट होने वाले हैं, तो अनुराधा जी के से पहले मीनाक्षी जी जो अपना संदेश रखने वाले हैं, तो मीनाक्षी जी आपका माइक हम ऑन कर देता हूँ और
1: जी धन्यवाद,
0: अपना संदेश को रखिए।
1: मैं एक कहानी के रूप में कुछ कहना चाहती हूँ, संदेश देना चाहती हूँ कि एक प्रश्न उठता है, जीवन मृत्यु दोनों चलते रहते हैं, तो क्या जीवन ही चलता रहे और मृत्यु ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन मृत्यु आवश्यक है। तो हम हर एक कोई मृत्यु से डरता है, लेकिन जन्म और मृत्यु सृष्टि के नियम है और ये ब्रह्मांड के संतुलन के लिए भी बहुत आवश्यक हैं। इसके लिए हम एक कहानी में बताना चाहती हूँ, उसके माध्यम से हमें पता लगेगा कि मृत्यु भी आवश्यक है। एक बार एक राजा एक संत के पास गया जो राज्य के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठे थे। राजा ने पूछा, हे स्वामी, क्या कोई औषधि है जो अमरता दे सके? कृपया मुझे बताएं। संत ने कहा, हे राजा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर लीजिए, वहाँ एक झील मिलेगी, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे।
0: तो मीनाक्षी जी, अब इसमें थोड़ा मैं और प्रश्न थोड़ा अब और खौलने लगा अंदर से ना, कि आप वहाँ एक झील है अभी आपने कहा, उसे हम हिंदी में कैसे कह सकते हैं? झील बोले तो
1: झील वैसे तो हिंदी ही शब्द है।
0: हाँ, पर
1: तालाब,
0: तालाब
1: हाँ।
0: यहाँ यानी कि जिसमें जल
1: जल है, वाटर बॉडी।
0: हाँ,
1: तो जब उसने कहा ना कि आप मुझे बताइए, तो संत ने कहा, आपके सामने जो दो पर्वत हैं उन्हें पार कर कीजिए, वहां एक झील मिलेगी, तालाब मिलेगा, उसका पानी पीने से आप अमर हो जाएंगे। राजा ने पर्वत पार कर झील पाई। जैसे ही वह पानी पीने को झुके, उन्हें करहाने की आवाज आई। आवाज का पीछा करने पर उन्होंने एक बूढ़े और कमजोर व्यक्ति को दर्द में देखा। राजा ने कारण पूछा तो उस व्यक्ति ने कहा, मैंने इस झील का पानी पी लिया और अमर हो गया। जब मेरी उम्र 100 साल की हुई तो मेरे बेटे ने मुझे घर से निकाल दिया। मैं 50 साल से यहाँ पड़ा हूँ बिना किसी देखभाल के। मेरा बेटा मर चुका है और मेरे पोते अब बूढ़े हो चुके हैं। मैंने खाना पीना बंद कर दिया है, फिर भी जीवित हूँ। राजा ने सोचा, बुढ़ापे के साथ अमरता का क्या फ़ायदा? अगर मैं अमरता के साथ यौवन भी प्राप्त कर सकूँ तो। राजा वापस संत के पास गए और समाधान पूछा, कृपया मुझे अमरता के साथ यौवन प्राप्त करने का उपाय बताएं। संत ने कहा, झील पार करने के बाद आपको एक और पर्वत मिलेगा, उसे पार कीजिए और एक पेड़ मिलेगा जिस पर पीले फल लगे होंगे, उन फलों में से एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाज़ें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जंगल में कौन झगड़ सकता है?
0: अरे, अब समस्या थोड़ा गर्म हो गया।
1: जी जी, बहुत
0: समस्या थोड़ा गर्म हो गया, क्योंकि वो पीला फल तो जो आपने कहा कि अमरता यानी कि अमर होने के बावजूद वो अब जवान भी होना चाहता था
1: जी,
0: तो शांता जी क्यों ना पिटारा से एक गीत पहले सुना देते हैं।
1: बिल्कुल, इस वक्त बहुत जरूरत है गीत की।
0: गीत की बहुत जरूरत हो गया मेरे ख्याल से। तो हमारे सुनने वालों, ये पीला फल वाला संदेश अभी आप सुनेंगे, पर एक सुंदर सा गीत की ओर हम बढ़ते हैं पहले।

0: मीनाक्षी ना,
1: मीनाक्षी जी
2: जी,
1: आप झील के बारे में बात करते हैं तो झील होता है, तालाब होता है और झरना होता है
2: जी।
1: इसमें अंतर क्या है? सब तो पानी पानी है पर उसमें फर्क तो होगा ना।
2: ये अलग अलग प्रकार की वाटर बॉडीज हैं
1: जी।
2: झरना पहाड़ों से नीचे गिरता है।
1: अच्छा, वाटरफॉल
2: से नीचे गिरता है, उसको झरना कहते हैं।
1: वाटरफॉल, हाँ
2: वाटरफॉल
1: हाँ।
2: और झील जनरली पहाड़ों में या प्लेन में भी पाई जाती है
1: हाँ।
2: और बोटिंग वगैरह करते हैं उसमें।
1: अच्छा,
2: और तालाब हाँ। तो एक वाटर बॉडी है जो कि जनरली जैसे गांव वगैरह में अमूमन देखने को मिल जाता है, जिसका पानी का उसकी सफाई इतनी नहीं हो सकती है, तो उसको जनरल जैसे गांव के जो
1: हाँ तालाब जिसमें
2: वगैरह होते हैं वो उसमें नहा लेते हैं
1: हाँ। जैसे तालाब में वो हाँ। लोटस ब्लूम होता है ना हाँ। उसमें वो तालाब कहते हैं। और झरना तो वाटरफॉल और क्वा जिसमें रिवर कहते हैं, रिवर
2: हाँ
1: हाँ।
2: नदी तो एक अलग चीज है
1: जी।
2: नदी तो काफी लंबी होती है, समुद्र में जाके मिलती है
1: जी।
2: तो नदी तो बहुत लंबी है,
1: गंगा नदी
2: जैसे गंगा नदी।
3: तो शांता जी, अब आपने छेड़ ही दिया है तो थोड़ा सा और इस पे थोड़ा दृष्टांत डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हॉलैंड में ऐसा स्थान है जहाँ पर कमल का फूल जो तालाब में मिलेगा?
1: अब तो होता है या हमारा क्या करते हैं, हमारा हॉलैंड के लोग जो है जो प्लांट के अंदर के स्टडी करता है ना, ये अन्य देश से जाकर पौधा को लेकर आता है। और यहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर वो सब कैसे बोले, वो सब
2: कल्टीवेट करते हैं उसको
1: जी मुझे हिंदी शब्द नहीं पता, तो उसके अनुसार देखते हैं। और उसके बाद में सब यहाँ तालाब में भी डाल देते हैं, रिवर में भी डाल देते हैं। तो हम देखिए अभी देखे ना, अभी इस मौसम जो शुरू हो जाएगा, सोमर जो आएगा ना हर साल, तो देखना ये नदी में वो कैसे कहते हैं लोटस जो है,
2: कमल के फूल
1: वो असली वाला नहीं, बल जो छोटा छोटा रोस वाला होता है, सफेद वाला पीला सा, इसे वो सब होता हैगा।
2: हाँ, मैंने खुद देखा है।
1: देखो
2: यहाँ पे जो कैनाल्स हैं
1: हाँ।
2: तो एक बार मैं क्राइनस्टीन जा रही थी कार से
1: जी,
2: तो मैंने देखा है कैनाल में बड़े कमल के फूल थे।
1: देखो
2: जी
1: हाँ,
2: हॉलैंड में कमल के फूल देखने को मिलते हैं।
3: मैं इस पे थोड़ा सा और जोर देना चाहता हूँ, एक शहर है यहाँ वेटफेन कहलाते है ना, वेटफेन कहलाते हैं, वो काफ़ी दूर है दनहाग से, और वो एक बड़ा गहरा सा और तालाब खोद करके वो शहर को बनाया गया है। और वहाँ वो जो तालाब है उसमें आपको बिल्कुल ये रोज के कैसे बोल रहे हैं रंग गुलाबी कमल के फूल वहाँ हैं हॉलैंड में, तो अच्छा लगता है देखने का। और बड़ा आश्चर्य होता कि कैसे यहाँ तक भी कमल का फूल है।
2: और इसके साथ वैसे तो हॉलैंड फूलों का देश है ही है,
3: फूलों का देश है ही है,
2: यहाँ तो फूलों को आप देखते रहिए
3: हाँ, जाओ
2: खुश होते रहिए,
3: कोई कुनहफ तो
2: रंग बिरंगे फूल बहुत मजा देते हैं, देखने में बहुत अच्छा लगता है।
3: हाँ, दुनिया के हर एक प्रांत से देखो हाँ। लोग आते हैं यहाँ पर वो फूल देखने को
1: हाँ। और देखो ना, ये केकनहॉफ जो हम कहते हैं ना सिलसिला पिक्चर यहाँ बना है
2: हाँ।
1: वो केकनहॉफ का जो तेलप है ना
2: हाँ।
1: उसको उनका बीच जो है वो तुर्कैय से लाया गया
2: हाँ।
1: हाँ।
2: ये कहाँ आ गए हम
1: जी,
2: गाना यही था अमिताभ बच्चन और रेखा जी के ऊपर फिल्माया गया था
1: जी। देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए
2: हाँ। मजा आता है वहाँ पर देख के उस हाँ। पिक्चर को।
3: पर और भी यहाँ का फूलों का फिल्म किया गया है, रूप के रानी और चोरों का राजा जो बनाया गया, जिसमें श्रीदेवी काम किए थे अनिल कपूर जी के साथ, और जो यहाँ दनहाग में वेस्टर ब्रुक पार्क ये बिल्कुल पास है स्केफनिंग के पास, और वहाँ पर शूटिंग हुआ था।
1: अच्छा,
3: कूर हाउस में कुछ शूटिंग हुआ था और वेस्टर ब्रुक पार्क में वहाँ पर शूटिंग किया गया था। तो कहने के तात्पर्य यह है कि अभी जो संदेश आप सुनाने वाले हैं, जो पीला फल हम सबको मिलने वाले, जो हमें ना सिर्फ अमर करने वाला
2: जी जी।
3: पर हमारा युवा को दोबारा लाने वाले, जो शायद इस समय घर पर बैठे हुए हैं और ये सोच रहे होंगे कि भाई अब समय बीत गया, कितना समय बीत गया, क्यों ना हमारा युवा आ जाए। तो अभी आपके लिए देखते हैं कि मीनाक्षी जी क्या सुनाने वाले हैं।
2: अभी मेरी कहानी
3: पूरा नहीं हुआ,
2: नहीं नहीं,
3: क्योंकि आपने कहानी अब वहां ला करके और हम लोग एक गीत की ओर बढ़ गए थे, पर संदेश आगे बढ़ाइए मीनाक्षी जी।
2: जी मैं बढ़ाती हूँ आगे, और तो इसके बाद जब उसने कहा कि पीले फल लगे होंगे, उन फलों में एक खा लीजिए और आपको अमरता के साथ यौवन भी मिल जाएगा। राजा ने दूसरा पर्वत पार किया और एक पेड़ देखा जिस पर पीले फल लगे हुए थे। जैसे ही उन्होंने फल तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उन्हें तेज बहस और लड़ाई की आवाजें सुनाई दी। उन्होंने सोचा, इस सुनसान जगह में कौन झगड़ सकता है। राजा ने चार जवान आदमियों को ऊंची आवाज में झगड़ते देखा। राजा ने पूछा, तुम क्यों झगड़ रहे हो। उनमें से एक बोला, मैं 250 साल का हूँ और मेरे दाहिने वाले व्यक्ति की उम्र 300 साल है, वह मुझे मेरी संपत्ति का हिस्सा नहीं दे रहा। जब राजा ने दाहिने वाले व्यक्ति से पूछा, उसने कहा, मेरा पिता जो 350 साल का है, अभी भी वह जीवित है और उसने मुझे मेरा हिस्सा नहीं दिया, तो मैं अपने बेटे को कैसे दूंगा। उस आदमी ने अपने 400 साल के पिता की ओर इशारा किया, जिन्होंने भी वही शिकायत की। उन्होंने राजा से कहा कि संपत्ति के इस अंतहीन झगड़े की वजह से गांव वालों ने उन्हें गांव से निकाल दिया है। राजा हैरान होकर संत के पास लौटे और बोले, धन्यवाद, आपने मुझे मृत्यु का महत्व समझाया। संत ने कहा, मृत्यु के कारण ही इस संसार में प्रेम है। मृत्यु के बारे में चिंता करने की बजाय हर दिन और हर पल को खुशी से जियो, खुद को बदलो, दुनिया बदल जाएगी। जब आप स्नान करते समय भगवान का नाम लेते हैं तो वह एक पवित्र स्नान बन जाता है। जब आप खाना खाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन प्रसाद बन जाता है। जब आप अपने चलते समय नाम लेते हैं तो वह एक तीर्थ यात्रा बन जाती है। जब आप खाना पकाते समय नाम लेते हैं तो वह भोजन दिव्य बन जाता है। जब आप सोने से पहले नाम लेते हैं तो वह ध्यानमय नींद बन जाती है। जब आप काम करते समय नाम लेते हैं तो वह भक्ति बन जाती है, और जब आप घर में नाम लेते हैं तो वह घर मंदिर बन जाता है। मृत्यु बहुत ज़रूरी है, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
3: इस बात को समझ आ गया कि वो लालच मुझे नहीं करना चाहिए
2: जी।
3: कि वो पीला फल खाने से, शांता जी आपने तो तैयार हो गए होंगे कि वो पीला फल मिल जाता तो मेरा युवा आ जाता, पर ऐसा भी ये सुनने वालों भी इस बात को सुन करके ये संदेश जो बड़ा इसमें बड़ा महत्वपूर्ण बात रखे आपने, क्योंकि मृत्यु जीवन है तो मृत्यु भी है। और कौन सा गीत आप सुनाने वाले हो शांता जी?
1: ये जीवन है,
3: ये जीवन है।
1: हाँ।
3: तो सुन लेते हैं कुछ।
1: हाँ माँ मीनाक्षी जी, वाकई में उम्र ढलते ही
2: जी।
1: लोग चाहते हैं जवान रहने।
2: हाँ।
1: रहना चाहते हैं।
2: हाँ।
1: काफी लोग के हमने भी देखे और सुने भी ऐसे,
2: लेकिन ये तो प्रकृति का नियम है।
1: बिल्कुल,
2: वो उनके सोचने से क्या ये थोड़ी हो सकता है कि वो जवान हो जाएंगे, क्योंकि जो टाइम निकल गया वो तो गया। अब आप ये सोचें कि जो कल मैं थी वो आज हूँ, वो तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो मैं कल जो बीता हुआ कल है उसमें तो अब नहीं जा सकती।
1: बिल्कुल नहीं,
2: अब तो मैं आने वाले कल को ही देख सकती हूँ, तो ये तो प्रकृति का नियम है।
1: हाँ, और काफी लोग बहुत पछताते हैं।
2: हाँ।
1: कि भले कि मैं ये कर लेती या वो कर लेती, वो तो समय गए।
2: इसीलिए कहते हैं कि समय पर हमेशा अलर्ट और विजिलेंट रहना चाहिए, समय को पकड़ के रखना चाहिए, जिससे, क्योंकि समय दुनिया में सबसे जो महंगी वस्तु है वो है समय। एक बार गया
1: तो गया।
2: वापस नहीं आया।
1: हाँ।
2: इसलिए समय का हर वक्त हमको ध्यान रखते हुए रहना और आगे बढ़ना चाहिए, समय का उपयोग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए।
3: कहते हैं ना कि बगैर कुछ करे एक ही चीज आगे बढ़ते जाते हैं
2: जी,
1: वो है उम्र,
3: वो है उम्र। तो उस पे भी बबली जी आपने हाथ उठाए थे, कुछ कहने वाले हैं क्योंकि पीला फल खाने वाले हैं क्या?
0: नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। मैं भी यही कह रही हूँ, जैसे अभी मीनाक्षी जी ने बताया, शांता जी ने बताया, आपने बताया कि जन्म के साथ मृत्यु भी है और वो तो प्राकृतिक का नियम है, और लोग सब कुछ कर सकते हैं। अगर बाल सफ़ेद हो गए काले कर लो, दांत निकल गए नकली लगा लो, आंखें कमज़ोर हो गई चश्मा पहन लो, हाथ पैर अगर नहीं है वो भी नकली आजकल बन जाते हैं, लेकिन मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता, वो तो आनी है और जरूर आएगी।
3: वो तो जरूर आएंगे, तो क्यों ना शांता जी वही गीत जो आपने चुन करके रखे सुना देते हैं सभी सुनने वालों को।
1: जी किशोर,
2: ये गीत बिल्कुल जो अभी हम बातचीत कर रहे हैं उससे एकदम मेल खाता है, मुझे बिल्कुल लगता है कि दर्शकों को ये गीत बहुत अच्छा लगेगा। ये जीवन है,
1: हाँ, किशोर दा के
2: बहुत ही बढ़िया गीत है।

0: यह जीवन है, ये सुंदर सा गीत जो हम सब सुने, हमारे साथ जुड़ गए हैं अनुराधा जी जो दिल्ली से और हमारे साथ जुड़े हुए। तो अनुराधा जी, आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है और आपको नमन करते हुए आप अपना संदेश को रखिए।
1: ज्योति के प्रकाश में सभी सुनने वालों को अनुराधा का नमस्कार। मैं आशा करती हूँ कि आप सब मंगलमय होंगे। बहुत दिन हो गए आपको मैंने कोई कथा नहीं सुनाई। चलिए एक आज कहानी हो जाए। देखिए, हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि आज हमने गरीबों को भोजन कराया, आज हमने ये बांटा, या आज हमने किसी को, किसी गरीब को दान दिया। हम अक्सर ऐसा कहते हैं और मानते हैं। इसी से संबंधित मैं आप सबको एक अविस्मरणीय कथा सुनाना चाहती हूँ। तो एक बार एक लकड़हारा रात दिन लकड़ियाँ काटता, मगर कठोर परिश्रम के बावजूद उसे आधा पेट भोजन ही मिल पाता था। एक दिन उसकी मुलाकात एक साधु से हुई। लकड़हारे ने साधु से कहा कि जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो, मेरी एक विनती उनके सामने रखना और मेरे कष्ट का कारण पूछना। कुछ दिन बाद उसे वह साधु पुनः मिला। लड़कड़हारे ने उसे अपनी विनती का स्मरण कराया, उनको याद दिलाया कि आपसे मैंने पूछा था कुछ भगवान से पूछने के लिए, तो आपने क्या पूछा। साधु ने कहा कि प्रभु ने बताया है कि लकड़हारे की आयु 60 वर्ष है और उसके भाग्य में पूरे जीवन के लिए केवल 5 बोरी अनाज है, इसीलिए प्रभु उसे थोड़ा अनाज ही देते हैं जिससे वह 60 वर्ष तक जीवित रह सके। ऐसे कहकर साधु ने उसको बता दिया। अब समय बीता, साधु उस लड़कहारे को पुनः मिला तो फिर से लकड़हारे ने कहा, हे ऋषिवर, अब जब भी आपकी प्रभु से भेंट हो तो मेरी यह विनती उन तक और पहुंचा देना कि वह मेरे जीवन का सारा अनाज एक साथ दे दें, ताकि कम से कम एक दिन तो मैं भर पेट भोजन कर सकूं। अगले दिन साधु ने कुछ ऐसा किया कि लड़कहारे के घर ढेर सारा अनाज पहुंच गया। अब ये कहकर अब आप क्या सोचते हैं कि क्या हुआ होगा? संजय जी, आपको क्या लगता है? चलिए मैं कहानी में आगे बढ़ूंगी, पर क्यों ना एक गीत हो जाए और उसके बाद जानते हैं कि क्या हुआ।
0: अनुराधा जी, मेरा तो ये है कि आप कहानी को आगे सुनाइए, पर क्यों ना लकड़हारा से पहले जो वृतांत। मीनाक्षी जी, आप भी कुछ कहने वाले हो?
2: लकड़हारा
0: के एक वृतांत जो
3: हाँ नहीं, उसमें जो अनुराधा जी ये जो कहानी सुना रही हैं उसमें हम बड़ा आनंदित हो रहे हैं, बहुत अच्छी लग रही है।
0: हाँ, क्योंकि वही हाल हो रहा है ना, वो पीला आम के तरह कि क्या होने वाला है अभी।
3: जी जी, और इन्होंने बहुत हमारे माइंड में वो एक बना दिया है कि क्या होगा क्या होगा। मैं इसमें सोच रही हूँ बैठ के कि क्या हुआ होगा, लेकिन चाहती हूँ कि साथ में गीत का भी आनंद लूँ, तो इसलिए मैं पहले गीत भी सुन लूं और फिर अनुराधा जी तो हैं ही, हमें क्या हुआ होगा बाद में बताने के लिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो क्यों ना गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा।
3: तुम एक पैसा दोगे
0: और कितना मिलेगा? 10 लाख देंगे।
3: जी,
0: तो सुनो वालों, चलते हैं उस गीत की ओर।

0: गरीबों के सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, फिल्म का नाम जो 10 लाख। फिल्म से निकाला गया ये सुंदर सा गीत। और शांता जी, ये एक्टर का नाम क्या है?
1: संजय खान।
0: ओ मेरा नौरासी भाई।
1: हाँ।
0: संजय खान शायद मेरा पिता ने ये फिल्म देख करके और नाम, क्योंकि कितने ऐसा हुआ है ना
2: जी, जी बिल्कुल।
0: लोग
1: मीनाक्षी जी आपके नाम भी ऐसी धरा?
2: हाँ, मेरा भी उसकी कहानी है पीछे
1: जी।
2: जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे पिताजी साउथ इंडिया के टूर पे गए थे
1: जी।
2: तो वहाँ पर उन्होंने मदुराई में मीनाक्षी मंदिर के दर्शन किए थे।
1: अच्छा।
2: तो उनको वो देवी का नाम बहुत अच्छा हुआ और उनके आने के 10-15 दिन बाद मैं पैदा हुई तो उन्होंने फिर उन्हीं के नाम पर मेरा नाम मीनाक्षी रखा था।
1: ओ, पापा जी सोच रहे साक्षात देवी के
2: हाँ बिल्कुल। और वैसे भी भारत में तो अधिकांश तह नाम देवियों के ऊपर ही होते हैं।
1: बात सही है।
2: हाँ, काफी कुछ देवियों के नाम पर ही होते हैं, जैसे राधा, सीता, शांता।
0: हाँ ऐसा आदी आदी। हाँ ऐसा ही हो गया हुआ होगा। हाँ। शांता जी आपका नाम भी शांता रखा गया, जरूर कुछ सोच के आपके माता पिता ने रखे होंगे ना?
1: पता नहीं, होते तो पूछते। लोग कहते हैं शांता राम जी का बहन का भी नाम है।
2: जी जी जी जी।
1: हाँ।
2: जिसका लोगों को बहुत कम पता है, चार भाइयों में एक बहन थी सबसे बड़ी।
1: सबसे बड़ी। हाँ।
2: जी जी शांता।
1: और वही के पति जो है शांता का पति, वही अग्नि में से वो खीर निकलवाया था ना।
2: हाँ, हाँ, कहानी।
1: हाँ वो तो बहुत सारे कहानी है।
2: हाँ।
1: हाँ।
0: तो दोस्तों सुनने वालों, हम आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम लेकर के, जो कि हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनुराधा जी, अपना संदेश जो हम सबको सुना रहे हैं। तो अनुराधा जी आप अपना संदेश को आगे बढ़ाइए।
3: तो चलिए आगे पता लगाते हैं कि कहानी में क्या हुआ। तो अब जब साधु ने कुछ ऐसा करा कि लकड़हारे के घर में इतना सारा अनाज पहुंच गया, तो लकड़हारे ने समझा कि प्रभु ने उसकी विनती स्वीकार कर उसे उसका सारा हिस्सा अनाज का भेज दिया है। उसने बिना कल की चिंता किए सारे अनाज का भोजन बनाकर साधुओं को, गौ को और जितनी गायें थी और गरीबों को और जितने भी उसे कोई जो भूखा इंसान नजर आया उसको उसने खिला दिया और स्वयं भी भरपेट खाया। लेकिन अगली सुबह उठने पर उसने देखा कि उतना ही अनाज उसके घर फिर पहुंच गया है। अब ये उस बड़ा आश्चर्य हो गया, उसने पुनः उन सभी को खिला दिया। उसने देखा कि अनाज फिर से मेरे इतना जितना मैंने खत्म करा फिर से उतना अनाज आ गया, तो उसने फिर से वही अनाज लेकर जितने लोग थे जरूरतमंद सबको खाना खिलाया, सबको खिलाकर खिला दिया। फिर परंतु उसका भंडार फिर से भर गया। अब ये सिलसिला, ये जो वो खिलाता सबको, उसका भंडार खाली होना चाहिए था पर वो भंडार खाने का फिर से भर जाता, वो फिर से खिलाता वो फिर से भर जाता। यह सिलसिला प्रतिदिन चल पड़ा और लकड़हारा लकड़ियां काटने की जगह जरूरतमंदों को भोजन कराने में व्यस्त रहने लगा। अब उसने लकड़ी काटना छोड़कर वो जितने जो भूखे प्यासे जितने लोग थे जिनको भी भोजन की वो सबको वो भोजन उसने भोजन खिलाने का कार्य सबको करने लगा। कुछ दिन बाद वह साधु पुनः लकड़हारे को मिला तो लकड़हारे ने उनसे साधु जी से पूछा, हे ऋषिवर, आप तो कहते थे कि मेरे जीवन में केवल 5 बोरी अनाज हैं, लेकिन अब तो हर दिन मेरे घर 5 बोरी अनाज आ जाता है। तो वो उनसे जानना चाहता था कि ये क्या है कि आपने तो कहा था मेरे पूरे जीवन भर में ही थोड़े से मतलब 5 बोरी रहेगा, पर ये तो मेरे प्रतिदिन हर दिन मेरे को मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, तो इसका क्या ये राज है, क्या ये क्या है? तो मैं आपको राज बताना चाहूंगी, पर चलिए संजय जी एक जल्दी से एक सुंदर सा गीत हो जाए और फिर आगे बढ़ते हैं।
0: अनुराधा जी आप फिर वही किया, रास बस रास ही रह गया और हम सबको इंतजार करवा रहे हो। चलो चलते हैं। शांता जी एक सुंदर सा गीत जो चुन करके रख दिए है और उसके बाद में रास का खुलासा जरूर होना है, तो हम सुंदर सा गीत की ओर बढ़ रहे वाले हैं दोस्तों।

0: अच्छे करना, सिर्फ अल्लाह से डरना, सभी को गले लगाना, मोहब्बत में लुट जाना।
1: सभी को गले लगाना और मोहब्बत में लुट जाना, ये सुंदर सा गीत निकाला गया, कौन सा फिल्म है शांता जी?
2: अधिकार
1: फिल्म, जिसमें एक्टर प्राण एक बड़ा बेहतरीन एक्टर होते थे और अपने समय पे। दोस्तों, जो कार्यक्रम में अनुराधा जी हम सबके इंतज़ार करवा रहे हैं, तो क्यों ना वो रास की ओर बढ़ते हैं। तो अनुराधा जी, हम सबको वो रास जो आप अभी तक खुलासा नहीं हुआ है उसके, और संदेश जो हम सबके लिए आप रखने वाले हैं, सुनाइए।
3: तो चलें और पता लगाएं कि जब लकड़हारे ने ऋषिवर से पूछा कि ऐसा क्या है कि रोज अब मेरे घर में 5 बोरी अनाज आ जाता है, तो साधु ने लकड़हारे को समझाया, तुमने अपने जीवन की चिंता ना करते हुए अपने हिस्से का अनाज साधुओं को, गांवों को, गाय जीती हैं और गरीबों को और भूखों को खिला दिया, इसलिए प्रभु अब उनके हिस्से का अनाज तुम्हें दे रहे हैं। तो कथासार का ये समझे कि किसी को भी कुछ भी देने की शक्ति हम में है ही नहीं। हम देते वक्त ये सोचते हैं कि जिसको कुछ दिया तो ये मैंने दिया, तो ये हम बहुत गलत समझते हैं और सोचते हैं, क्योंकि ये हमारे हाथ में नहीं होता है, ये ऊपर वाले के हाथ में होता है, क्योंकि हम तो बस एक जरिया है जो हम दे पाते हैं, पर देने वाला तो ऊपर वाला ही हमारे हमारे हाथ में इतना देता है कि हम दूसरों को दे सकें। देखिए, दान, वस्तु, ज्ञान, यहाँ तक कि अपने बच्चों को भी कुछ देते हम देते या दिलाते हैं तो हम कह देते हैं, हम कहते हैं कि मैंने दिलाया, और वास्तविकता ये है कि वो उनका अपना है। आपको केवल परमात्मा ने निमित्त मात्र बनाया है, हम तो एक जरिया है, हम तो एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके थ्रू जिसके जरिए भगवान ऊपर वाला हमसे दिलवाता है, ताकि उन तक उनकी जरूरतों जितनी और लोगों की जरूरतें हैं पहुंचाने के लिए, जो जरूरतमंद है उनकी हम मदद कर सकें। तो निमित्त होने का घमंड कैसा, तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ही ये सब कर रहे हैं, हम ये बोलते हैं मैंने दान दिया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो ये मैं जब हम बोलते हैं तो ये बहुत गलत है, क्योंकि मेरे को भी जो देने वाला है वो ऊपर वाला ही है, और वो चाहे तो हमें, हम खाली एक जरिया हैं, तो हमें हमेशा भगवान का, ऊपर वाले का हमेशा शुक्रिया करना चाहिए कि हम ऐसे, हमें वो ऐसा समझते हैं और हमें ऐसा, हमें इतनी मान्यता मिलती है कि हम दूसरे को हमारे जरिए हम किसी की मदद कर सकते हैं, पर हम नहीं कर रहे, वो ऊपर वाला ही कर रहा है। देखिए, बड़ा सुंदर कहा है, दान किए से जाए दुख, दूर होए सब पाप, नाथ आकर द्वार पे दूर करे संताप। तो ये बहुत सुंदर कहा है कि हम जब दान देते हैं तो दुख दूर हो जाते हैं, और सब दान देने पर जो दुख दूर हो जाते हैं, दुख दूर होने से होके सब पाप खत्म हो जाते हैं, और नात आकर हमारे भगवान हमारे ही घर आते हैं और हमारी सब दिक्कतें हमारी सब वो खत्म कर देते हैं। तो ऊपर वाला ही जो है हमें उसका नाम लेना चाहिए और हमें हमेशा कृतज्ञ और रहना चाहिए कि भगवान हमारे हाथों से ही दान दक्षिणा कराते हैं, ये हमारे हाथ पर नहीं है, ऊपर वाले का है। चलिए इसी कहानी के साथ आगे बढ़ा जाए और संजय जी एक और गीत हो जाए।
1: जरूर अनुराधा जी, एक और गीत की ओर बढ़ेंगे। इतना सुंदर संदेश जो आपने रखे और जो रास देखो क्या था ना, तो अभी टाइम तो थोड़ा जल्दी है, पर बबली जी आप क्या सुनाने वाले हैं?

भारत के एक महान सम्राट हुए हैं जिनका नाम है अशोक, सम्राट अशोक के नाम से जानते लोग उनको। सम्राट अशोक, पिताजी का नाम बिंदुसर, माताजी का नाम सुभद्राणी। जिस सम्राट के नाम के साथ संसार भर के इतिहासकार महान शब्द लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह अशोक चक्र भारतीय अपने ध्वज में लगाते हैं, जिस सम्राट का राज चिन्ह चार मुखी शेर को भारतीय राष्ट्रीय प्रतीक मानकर सरकार चलाते हैं और सत्यमेव जयते को अपनाया है, जिस देश में सेना का सबसे बड़ा युद्ध सम्मान सम्राट अशोक के नाम पर अशोक चक्र दिया जाता है, जिस सम्राट से पहले या बाद में कोई ऐसा राजा या सम्राट नहीं हुआ जिसने अखंड भारत, आज का नेपाल, बांग्लादेश, पूरा भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान जितने बड़े भूभाग पर एक छत्र राज किया हो। सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। इन्हीं विश्वविद्यालयों में विदेश से छात्र उच्च शिक्षा पाने भारत आया करते थे। जिस सम्राट के शासनकाल को विश्व के बुद्धिजीवी और इतिहासकार भारतीय इतिहास का सबसे स्वर्णमयी काल मानते हैं। जिस सम्राट के शासनकाल में भारत विश्व गुरु था, सोने की चिड़िया था, जनता खुशहाल और भेदभाव रहित थे। जिस सम्राट के शासनकाल में सबसे प्रख्यात महामार्ग ग्रैंड ट्रंक रोड जैसे कई हाईवे बने, 2000 किलोमीटर लंबी पूरी सड़क पर दोनों ओर पेड़ लगाए गए, सराय बनाई गई, मानव पशुओं के लिए भी प्रथम बार चिकित्सा घर यानी हॉस्पिटल खोले गए, पशुओं को मारना बंद कर दिया गया। ऐसे महान सम्राट अशोक जिनकी जयंती उनकी अपने देश भारत में क्यों नहीं मनाई जाती, ना ही कोई छुट्टी घोषित की जाती है।

सावन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी श्रोतागणों को मेरा यानी राजेंद्र सिंह की तरफ से हार्दिक शुभकामना। जो आपने आज संदेश सुना है भगवान बुद्ध का, उसको हम अमल में लाते हुए यानी अपने जीवन में उतारते हुए इसी प्रकार से हम आगे भी कार्यक्रम करते रहेंगे। तब तक के लिए मेरा नमस्कार, शुभ दिन, शुभ रात्रि, हर हर शंभु।

0: दोस्तों, जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं, तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों।
1: लड़ी है तुमसे निगाह तड़प रहा।
0: आज के कार्यक्रम में हमारे सहयोग दिए हमारे मास्टर जी भारत से राजेंद्र सिंह जी, हमारे कोलेखा साथी अनुराधा चंद्र जी, और हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित है मीनाक्षी जी और शांता खेमाई जी और बबली आसरा जी। आशा यही है कि कुछ न कुछ संदेश आप तक जरूर पहुंचे होंगे। मैं हूं आपका सेवक संजय, यही आशा लेकर कि आपको जरूर कुछ अच्छा लगे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने भी ये कहा है, कहा है कि भाई मिलते रहना तो जिंदा

तमाम रेडियो फाहुन के सुनने वालों को हमारा राम राम नमस्कार, प्यार भरी नाम से श्रीकाल है। जॉनी नंबर वन है हमारा नाम। आज की देश विदेश की समाचार सुनाना है हमारा काम, तेरी हर यही है मोहब्बत भरी प्यार की पैगाम। तो दोस्तों हर हफ्ता की तरह आज भी आप लोग को हम सुरीनाम नाल और देश के समाचार आप लोग को हम सुनाएंगे। समाचार कभी कभी मीठे हैं, कभी कभी खट्टे हैं, और आज भी हम फेसबुक के माध्यम से लाइव है हमारी यारो। तो हम तुरंत चलते हैं, और कहाँ चलते हैं? वातरकान सुरीनाम के ओर हमारी जनता। सुरीनाम में भैया मुसीबत एक अभी नहीं रुकता है तो दूसरा मुसीबत आ जाता है, दूसरा अभी नहीं उपलोषित होता है तो तीसरा मुसीबत आ जाता है। तो मुसीबत के ऊपर प्रॉब्लम के ऊपर प्रॉब्लम हमारे देश पे बस छा ही रहती है हमारे जनता। और सबसे पहला प्रॉब्लम ये भैया, बारिश वहाँ पर थम नहीं रहा है, रुक नहीं रहा है। बारिश के मौसम बहुत ज़्यादा है, यानी कि बूढ़ा सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है भैया। आदमी लोग को हम जिस सोशल मीडिया पे देखते हैं, न्यूज़ पे देखते हैं, तो आदमी लोग के हमारे जनता के घर में पानी और पानी चल गया है। लेडन देखो, वनिका देखो भैया, और परमारी बहुत सेल्फ इस ओंदर वाटर हील माल ब्लॉक मैन से। और जनता लोन के हम काम बोली बहुत दुख में है, मुसीबत में है, लेकिन तो पानी दोस्तों साथे साथ पानी के साथ में वहाँ पर भैया स्टॉकिंग होता है। तो राजा अयोध्या भी आ गया है हमारा प्रोग्राम में, जुड़ गए हैं। तो राजा साहब आपके राजा साहेब आपको हम यहाँ से बहुत दुलार और प्यार देखते हैं। साथ ही साथ हमारा फेसबुक के माध्यम से धर्मेंद्र श्री भी आ गया है। तो धर्मेंद्र, बारिश के मौसम लंगडाम पेना सुरीनाम देश में बहुत ज़्यादा है, लेकिन न खाली बारिश भैया स्टॉकिंग सुरीनाम में डेमोस्ट्रेशन के तरह भैया स्कूल के जितना यूफ्राउ मिस्टर रहा वो सब स्टॉकिंग कर ले रहा, कारण कि वो सबके पैसा ना फर हो करत रहा था। अब पैसा मिलल है तो स्कूलिया अब शुरू करी, इधर जब स्कूल शुरू भेल है तब शुरू करी से पुलिसी स्टॉकिंग मांगे करे भैया, डेमोस्ट्रेट करे मांगे हैं, स्टॉकिंग मांगे करे, ओहो सब मांगे अपन लोन्स फॉर हुकिंग मांगे हैं। अब ऊना शुरू भैले भैया, अब यहाँ पर सेंट्रल बैंक जो सुरीनाम के हैं अब उ सब मांगे हैं आक्सी करे भैया। यहाँ पर लिखा है पर्सनल सेंट्रल बैंक फुट आक्सी ना एट ब्लाई फॉर रियाक्सी फंड मैनेजमेंट और मैनेजमेंट रियाक्सी ना दे सब मांगे आक्सी करे। और सेंट्रल बैंक भैया जहाँ पे हम लोग के पूरा सुरीनाम के खजांची है वही सेंट्रल बैंक के त्रिक लूटे रहा, हुफ्द्राट लूटे रहा, सुरीनाम से पोस्पार बैंक के क्रोमो लूटे रहा। तो हम लोग तरी से कभी कभी आप लोग को बता दी कि चलो के याद रहे ना भूलियो जा कि के कौची करी से हम लोग के देश में। तो वही सेंट्रल बैंक बातचीत हो रहा है राजा साहेब। तो अब सेंट्रल बैंक सुरीनाम के 5 तारीख यूनी 2017 तक के सेंट्रल बैंक के कम करतन जो है 8:30 बजे सब बैलकार आएल है प्लेंचे पे, और फंड बैंक के प्लेंचप आएल है और सब हुआ पे अब्बा और बोले हैगा आन दाख फ्राख फोर सोरखन फ्राखन सिनियाल इन फन मी द वर्कर्स ओवर द हेर सिन द फिंसी है इसके बारे में यहाँ जा रहा है। और बोले हेड बस ट्यून नुम द एट ब्लाइव एंड फन रियाक्सी टू लर्स टैलेंट एंड सेक द ऑन्टविकलिंग नाउ लेटन द ब्लाइव एंड फॉलखन।
तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे जनता। तो हम बोली 5 तारीख यूनी हिंदुस्तान से एमी खराची के बारे में होंद्रियन फेफ तक यार 153। हाँ होंद्रियन फेफ तक यार हो गया है सूरीनाम देश में बहुत बहुत यानी कि अन अक्तिफित है। यहाँ दनहाख में भी अक्तिफित रहा होमामार प्लेन पे म्यूजिक बजल है और याद भैल है हमारे जो बाब दादा पूर्व जो 5 तारीख यूनिक के कॉन्ट्रैक्ट और बेदस जो लाला रुख पे नई अख्तिन होंद द्रियन सीफन तक में सूरीनाम में गई है। तो वहाँ के यानी 5 तारीख यूनिक के उसको याद करते हैं होंद द्रियन फाइव तक यार हो गया है। तो बताओ और खान शांसी वैस एरोप दद इस्त हिंदुस्तान से एमी खराची जो रहा बोले हैगा उन बेरिंग इन उन तीकर है जन उद्दाखिंग फन बलांगरेक बैदराखन है वर खलीफर अंद एकनोमी सोशियाल एंड कल्चरल अंतविकलिंग इन उस लान सुरीनाम में से दौर कस के काम करे के डिसिप्लिन रहा सबके दौर से तस्फर मौका रहा। तो जितना अभी हमारे औद्रे है आप लोग को बाप दादा हमार तो नानी रहा मेरे ख्याल से नानी नाना भारत देश से आयल हा उसको हम नहीं जानते दोस्तों। तो ये सब तो भारत देश के रहा। तो बताए गए बाबा माई मुनी मेंटल लगे सब गईल है न्यू आम्स्टरडम कॉमोवेन में सरमक्का खरोडिंगर पे गईल है निकेरी में सब भी गईल है और वहाँ पर सब जाकर और वहाँ पर हरदाख कर लेबा हम लोग के एमी खराची के बारे में इसके गीत अभी आप लोग को हम जरूर सुनाएंगे। तो हमारी जनता हम और आगे चलते हैं सूरीनाम के ओर। हाँ तो आप लोग जानो हैं ओएएस के बोले ओ मिनिस्टर मेल्विन बोवा बैतलान से साकर के बोले हैं का ओएएस में जो सेक्रेटरी जनरल हम लोग के अल्बर्ट रामदेव रहा पहले फिर हपी के तहत पे वो रहा मिनिस्टर फन बैतलान से साकर के वो चल गए फिर ओएएस के सेक्रेटरी से बड़कवा हुआ के भैया। तो बताई गई है कि वहां पर बोले उकर बारे में अंदर सुख होवेगा फोकस भविष्यवान वक्त रखेरिंग इस्ट एट कॉम्सन फान मुखल का अंदर सुख अब फॉर दैट डेफिनेटिव स्थान पर वर्क नूमन तो बहुफाल उन खाली अगोरे है कि कब ये नमिया के बारे में छानबीन हुए। तो बतावे हैं मिनिस्टर बोले बनाद्र करी दैट नित इन सूरीनाम इज ऑन फर्स्ट सेल एंड वाज द फैटल कवार है इज इन द क्वेस्टी फोकस हम साल इवेंटुअल अंडरसुक मुतर ऑपरेशन ई है रामदीन के बारे में अंडरसुक हुए हुआ एस में बताई गई है वीस एरोप द रिक्वेस्टी ओक अंडर और दिस को तेरे में से रेसेंसी फरकादरिंग। तो हम बोले छोटा रूप में इसको हम बता दे भैया बहुत घींचा तानी असेंबली में हुए है तो लोग जाने हैं स्ट्राफ रेखतलक जो उनसे बन मांगे हैं ओएम और ओएम पठाई से गा काने के अने देयना में कि के हम लोग के माख है फरोरदेल करके ऑंडर सुख करके बारे में बेकर बारे में बराइत हम आप लोग को बताएंगे हमारे जनता की तोरिया कैसे हैं। तो यहाँ भी एनडीपी का बोले है फरहाल फन हु वे सामन सूरीनाम वर्धन हिंदुस्तान से मिखराची के बोले है न्यू हुफ्स तो के नखफसीद नेस तो ये भी एनडीपी भी एकर बारे में बतावे है दोस्तों। साथ ही साथ हम चलते हैं और चलते हैं मेलक ब्लास्टिंग लंद भैया हम लोग के ब्लास्टिंग बहुत ज़्यादा भरे के परे है यहाँ पर नीदरलैंड में। तो के बोले है ब्लास्टिंग कु भैया हाँ गाई ब्लास्टिंग कु के बारे में यहाँ पे

0: बिहारी है हमारी जनता। तो गीता बिहारी, आपको भी हम बहुत प्यार से स्वागत करते हैं अपना प्रोग्राम में गीता जी। तो हमारे जनता, हम और जा आगे चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर। बैंक के बारे में तो अभी आप लोग को हम बताए थे, सेंट्रल बैंक में क्या हुआ क्या ना हुआ। तो साथ ही साथ और समाचार यहां पर है दोस्तों, जो आप लोग को हम जरूर बताएंगे क्या हुआ और क्या नहीं होता है हमारे सूरीनाम में। अब देखो भाई, यहां पर बताए गए हैं रूफ जो है चोरी चपाटी बहुत ज्यादा होता है देश में, एकर बारे में दयाना में सब खोज कर ले हैं और बोले हैं सिपाही के घर में से, सिपाही के पुलिसी ब्यूरो में से इतना इतना चीज चोरी हो गए। और आगे इंस्पेक्टर किस गए ऑन द सुक करे, पीछे सिपाही के घर सब इतना ब्यूरो के बीच में से कानी कितना दे, यानी कि क्विक चोरी हो गए भैया। कितना क्विक चोरी हुई के देशवा में से, ये बड़ी बहुत आफत के बात है कि जोन अनमिया जहां पे सोचियो हमारे चीज से फैलक है, बस वही में से चोरी है और चोरी है। तो सिपाही के मीजा वर्क से भैले कि ना भैले भैया, ये तो 100% है। सिपाही यहां पे 24 घंटा ने बड़का कंटेनर में भैया उतना ढेर क्विक चोरी हुई है, एक बारे में देना में सब खोज बहुत ज्यादा कर ले रहा। और यहां टोनी इसरी भी आ गया है। तो तीन लोग जो हैगा पार्लियामेंट के, ओकर लगे देना के लगे ओएम यानी कि पीके पठाई से ब्रीफी की बोली से तुलों बताओ कि इस तीन अदमिया के तुलों तु स्टेमिंग हम लोग के देवे की अंडर सुख करी सकवा के ना। और इस तीन अदमिया के भैया हुफद्रात है क्लीम और हुफद्रात एक मिनिस्टर फन बहुता के तेज पे तो अबे तक फरार है। रियाद नूर मोहम्मद ओवे के राफे या पे के तेज और बोरंतो सोमो हार्जे मिनिस्ट्री फन बहुता लांस साके के। तो एकर बारे में बहुत घीचा तानी भैले भैया दे ना में, और घीचा चानी ए बल उही में और का बोले हैगा इंटरव्यू पे बताई सेगा, यानी कि अने अने अने गया दिन बोली से बोले एनडीपी ना मांगे सखवा अंदर सुख होवे, बोले उ ना मांगे कि ओपन बार में होवे एनडीपी, बोले चोरवन के बचावे है, बोले जैसे पहले बचाया रहा कि हुफद्रात हुफद्रात भग्य है, बोले उ सब चीजों ने करे है। मैं ऐन लग इफर खदरिंग हुआ इतना क्रासी गए भैया कि दया ना में गए है सब, और हम सब फॉलो कर ले भाई कि हुआ पे कैसे किस टाइम करी सेगा देना में कि इस फर फॉलक कोई होई कि ना होईगा, एकर बारे में बहुत घीचा तानी भइल है। तो एंड को कर रिजल्ट ई भइल भैया कि इस सप्त देना के नूर मोहम्मद हुफद्रात और समोहार जो इंस्टार फन बस्किल किंग होई गए है, अब ओएम के माख इस सब के अंदर सुख करे के खरोत देस अदमीरों जो नया नाम है उस सब स्टेम करी सेगा, स्टेम करी सेगा कि स्टार्ट स्टार्ट्स बस्कुल लखिंग में सोमो हार्जो और काबुल हुफद्रात और नूर मोहम्मद के अने स्टार्ट फन बस्कुल लखिंग स्टेल कर सके ओएम के चाहिए जाए के इस सब के अंदर सुख करी कैसे है, तो कौन ची चोरी कर ले कौन ची ना चोरी कर ले है। तो जो नेशनल असेंबली से नाम है दोंदर दाख के फोर्डरिंग फंड पी के बहंदल करी से ओम खवेसन पॉलिटिक अमतनार तीनों ने मुआ जोल ले दी है सबके यहीं जाए के अब अंडर सुख के। एनडीपी वेदर फ्रागन खस्तेल ओवर द वैलिडिटी फंड द दोषे, एनडीपी बोले हम ना मांगेला एकर बारे में बतिया, बोले हम मांगेला फॉलीद दोषे हुए वार फन गया दिन और अनमियन बोले तो के ना हुफते सब बोले तू अंडर सुख थोड़ो बाटे तू पी के ना बाटे, बोले पी के ये तो के कागज पठाइस के रमिया खमांगेला तोर अनमिक देनार में अंडर सुख करे ओमदा तू कुछ करी से, तो हमार कामना सबके फरोर दिल के हम लोग के काम है तू toestemming deven ke PG ke OM ke rechter ke kaam he bepaal kere ke de meerderheid uiteindelijk toch opgelukt mensen. Heel veel mensen zijn opgelukt. Kies zag wat onderzoek hoi. Niet een mooi tjit is op deze loot loot chori karker. Or mouj kere he bhaiya. To VHP, NPS, BEP, ABOP en A20 benadrukten juist DNA ke. Ki rechtbank is niet. Bole ki geen rechtbank is. Bole DNA bole rechtbank na he. DNA is geen rechtbank. En niet hoeft te oordelen over de schuld of onschuld. Volgens deze fractie moet de onafhankelijke rechter uiteindelijk me ik erbare mee bole ke. Oh NDP chorwan ke khali bachawe bhaiya. Chorwan ke khali bachawe he to ni. Ki ekke na karte ekke na karte ekke na kar. Aan chor log ke bachawat bachawat. Hum log ke desh barbaad hoye. Abbe ohi platwa. इस सब ड्राई करे हैं तो फरप्लेक्ट ना रहा कि सब कोई के चाहत रहा हाथ उठावे कि तेईका बाटे की ना जे ना मांगत रहा उ साल छोड़ के ओके चाहत रहा चल जाए कि तह फोर से तर अश्विन अधीन छोड़ के साल चल गए भैया बोले हम ना बैठे कुर्सी पे एगो फोर से वार दी मर फोर से बोले जा तू बोर देख कर बोले हेगा असेंबली के फर्दरिंग फॉर पीके तो स्टार्ट फ्रॉम बस्कुलकिन स्टैंड फ्रॉम थ्री फॉर्मल पॉलिटिकल अम्तनारन Daarom is voldaan we wettelijke vereisen op grond van artikel 140 grondwet in staat van de beschuldigingstelling van politieke ambtsdrager in de WIPA en kan de openbare minister strafrechtelijke onderzoek voorzetten. Dit is dus een hele goede nieuws mensen. Ki op kabole hega OM vrijba ik erbare mee. Onderzoek kare ke baare mein PG jo hai hum log ke Suriname ke straf lekht ka onderzoek kan kunnen verder naar de besluit van TNA de ekar baare mein an PG hum log ke yahan pe apart batai se ki ab us sab ja sab ke onderzoek kare ingestemd met de vordering van de PG aur bataye gaye hai gaat oud minister Klimmer Hoofdraad openbare werken nationale Noor Mohammed ke और नूर मोहम्मद के बाद में ब्रुंतो सो मोहार्जो के और यानी कि सबके फोर्थरिंग फॉर द PG werden op 9 maart 2026 bij DNA ingediend naar de behandeling van de verzoeken. Deze week stemde het parlement in met 3 vorderingen. Daarmee is volgens het OM voldaan van de vereisten van artikel 140 van de grondwet. Toen wil ik aanplukken. Hem, chota roep me bataai. Ki sakwa kaise hai hamare janta. Hamare pyare pyare janta. To ee joon malai hai varon to bhaiya bahut jor chhat कट कूदत रहा तो अब एहू तरी रिस्टक हुई और बोले उल्टा पूजाने सब कोई मेर दर है तो के बस्कुल दख कर दी तो ही आप रे बोली सेगा नीमा स्टार बोफन है फॉलक ओक ब्रुंतो नीत तो बोले हैगा आप इस सब अर्फकार ले के अपन साख लड़िए पेल असेंबली फोर्सेटर असेंबली ले और समोहार्जो पाउल ब्रुंतो समोहार्जो eist een eigen staat van beschuldiging instellen. Apreu op teken kan dit ki mag he, oké. Want u jane akeel uthoro boliga ki hamme namak tulke onderzoek kare. Grote deel bolie sega ki sabke chahi onderzoek hove ke. Ta apro teken kan dit ki haan chahi onderzoek hove ke. To dosto Suriname ke duane bhaiya ab dekho tamasa kaun chakallas bhai la bhai. कौन चक्कल एगो औरत के भैया एगो औरत है गा दुआने में इधर वर्कर भैया फर्राज भैले फ्रॉ केयर ट्रिक फन फकांसी एगो औरत फकांसी से लौटल भैया कहां गैला लौट के तो भैया सुंदर हीरा आपको भी हम बहुत स्वागत करते हैं और सबको बधाई देते हैं हमारा हिंदुस्तानी के इमिग्रेसी के जो आज जो 5 यूनिक के होंद 3 एंड 5 तक यार भइल है तो आपको भी बधाई है जितने हमारा हिंदुस्तानी हैं रेडियो फाउन के माध्यम से आप सबको हम बधाई देते हैं तो यहां भैया दुआने भैया फर्रास होइगे के औरत गई ले फकांसी से और फकांसी से लौट के आए ले भैया ते का लाई से औरतिया सब कोई भाई हमनो सुरीनाम से आइला ते का बोले मछरी लाइला भाई मछरी लाइला कड़ाबू लाइला अब ई औरतिया गईला फकांसी से भैया एगो स्विट्जरलैंड दिस इज व्हाट अ फ्रॉ इन द स्विट्जरलैंड से प्लाट tying deze week dag. Douane had er even druk mee, Bijan. Douane medewerkers doorgaan bij de grensovergang van Tangen. Boudoir ke ego bestel busje. Ujjar aile he. Ze wilden weten wat de chauffeur die terugkwam van de vakantie vervoerde. Bolle van kontje laise. Bolle de vrouw in het busje gaf daar gehoor aan en begon haar bagage uit te pakken. Suru karise op een bagage uitpakker. Beswama se bhaiya. 55 koffer leke aile. Bhai vakantie se lautal he. Ab bolie ka dharir bhaiya. Duane bolle ab kaun chakallasi bhail he. De een na de andere koffers kwamen uit de voertuig, maar liefst 55 koffers in totaal. De douanemedewerkers scanden ze allemaal en troffen niets geks aan. Ze bevatten diverse persoonlijke spullen, zegt een woordvoerder van de Zwitserse Federaal Bureau van de Douane. De douane in Zwitserland gebaat, is zijn naam gebaat, na Jeske Polke. Er was niks om bezwaar tegen te maken. Het is over het algemeen ook niet verboden, mensen. Toen hij ik had jaren leek je koffer na zo'n 20 minuten was de situatie afgehandeld. Dit soort dingen horen van de dagse routine van de bakkie 55 koffer. Maar ja, hare dada, hare dada, kaise it hoi hoi, o kaise i leegi hoi, hamare bian janta, teri socho, 55 koffer is niet hier, mensen. हम चलते हैं और आगे हमारे प्यारे प्यारे मीठा मीठा मीठा मीठा जनता। तो अब देखा जाए यहां बातचीत क्या हो रहा है। बातचीत क्या हो रहा है ओएम के बारे में तो हम आप लोग को बता चुका है, लेकिन और बात आप लोग को हम यहां बताई भैया। एगो देर तक यार के आदमी गैल है बौश बरख पे। हाँ, बौश बरख तो लोग जानो भैया, ओकर नाम हम दल्ली बाटी सेल्फ मोर्त बरख। हाँ, सेल्फ मोर्त बरख ओकर नाम चाहिए। ये ही देखो भैया, जैसे स्वयं बात में झड़ांग लगावे भैया, इरा जा टप से कुछ जाए कभी ना निकल के आवे बहरे। तो ऐसे को देर तक यार के अनमी गैल है भैया बौश बरख पे। तो हुआ से टेलीफोन करे और कैसे कैमरा से टेलीफोन करे है न बौश बरख में से कि अब हम जाएला कूदे, हम जाएला कूदे भैया अपन फैमिली लिट से। है नेट फॉर नेम दैट फैमिली लिट नाम से पॉलिसी ओवर फोर फॉल हिफ के इंफॉर्मेट और बताई गई है का रात के बातचीत है वेर का बेल्फिया वीडियो कस्प्रेक तेजी से कस्प्रेक ये भैया बतावे है का हम बहुत ब्रेक पसे। बोले हम जाएला कूदे, बोले देखियो तो लोग कैसे हम कूदीला, तो टिकटॉक बनावत रहा भैया लाइव यात्रा कूदे। Kort na deze melding werd de verbinding verbroken. Bole verbinding wat broeken. Ohiro se Jeremia na betane bhaiya koi ke na milal hai. Sindsdien is er geen contact meer geweest met de BM. To vermoedelijk is deze man natuurlijk in het water gesprongen, mensen. Hum jai teri van het hoge huisstraat ke baare mein bahut bhaiya aafad machale. Sarname jonanmi sarname gaadi chala आवे हैं आपके तो पता रास्तावा में भैया। हम का बोली जैसे काउ फूतू होइगे आसफाल में, काउ फूतू जैसे होइगे भैया। मां काउ फूतू में तो अब्बे तो गोड़ घुसी निकल जाई, इतना भारी भारी गढ़ा और बुड़ल है भाई। स्लांगन हाउस स्ट्रांड के बीच में फनो हुक है स्ट्रांड की आदमी बड़का बड़का ओतो लेके गढ़ा में घुस जाए। जो समय पे फिर यहां पे रहा भी ई प्रॉब्लम हुआ रहा, तो ई रखे रिंग हुआ लोन क्लाक करत रहा भैया। अब ओ ही के रखे रिंग में इतना बड़का चकल्लस हुए है, अब जनता उल्टे घर आवे है। एनडीपी के रखे रिंग के तुतुलों कौन ची करे है। तो यहाँ बताई गई इतना भारी भारी घरता खदेट लग ऑन कफे 150 मीटर। अब बोले हैगा स्लेक तुस खान फन वेग द अफलोपन प्रियोद अब इसे मांगे हैगा फन ढोक बहुत तो दृष्ट बरीदन वीकन उतरा ओतो हुआ चले फन रोक स्ट्राट में। और उसे मांगे चार तारीख यूनी के चार बजे वो छह बजे लेक मांगे बंद करे टुकवा और एक टुक्का मांगे सेवन असफाल तेर करे। भैया वही बात है वेर बुरुकु और पूर बुरुकु हम लोग निगरे में बोली न वेर बुरुकु चपटावे भैया सुंदर भाई जैसे कि कोई जब ढोल बजावे और रुंगरी कट जा है तो ऊपर प्लेस्टर लगा देवे है ढोलिया दोरो बजाए कमुआ बन जा है तो घरवा जाए तो तेल लगाए के हथुआ अच्छा करे है ना। और जो नरमी नाचे भैया जूता कभी फट गए तो गोड़ में झलका पड़ जा है तो उस समय पे मोटा सौको को पहन के अच्छा करे ऐसे भाड़ी भाड़ी गढ़ा है तो सबन चटावे भैया जैसे चिरई हगे है चारों बगल वैसे सबन आसफाल चटाई के और आदमी के आंखी में धूल डाल दे देख हम बना देली बाटी। तो ई सब बात बाकी कोई ना है कि चिजुआ खूब जोर तोड़ से फॉर ऑल टाइम ओके परमानेंट ही लमाल असफल तेर करके और हमारा ऐसा नाम के फनोहूक हैस्त्रात बना देवे है। तो सैफ बी से चित्रा अवतार भी आएंगे हैं तो वहां पर सैफ बी की फिल्म हमने देखा है। पानी भैया डैम से ई पार से ऊ पार जा है और आदमी लोग के घर में पानी कंडाल में भी चल गए है। आदमी लोग के वनिका से बुड़ल है आज के हालत कैसे है ये हमें मालूम ना है लेकिन काल के हाल कल के हाल तो यही था जो हमने देखा है। तो भैया एक आदमी है सीफरन ट्विन तक या रखे एक आदमी भैया हाँ यहाँ बताई गई है बुधवार के ई गैले गो रास्ता का नाम बा पीका दोस्त्रात और अनामुस्त्रात में वहाँ गैल है भैया। जब हुआ गए ले पिकादू स्त्रांत में तो बताए गए है वहाँ पे एगो त्योता फित स्त्रां भाए और बोले वहाँ पे दकते गए ले वैसाख है दा दफर मुडलकस के तो सामन में अंदर खराई से तो फत्रों के अंदर एक तेम तुरतो लाला दग उल भैया भैया एगो बार में तो मैं ही कहिला बार और हम तो न जाए इस नाम में स्कोतन खलोस बे बार हिल्स को फोन ऑपर पार्कियर टेरेन तो सुरिनाम इज ऑन फेलक मेंस बार और में ना जियो हम में भी एक मनिए ठंडा भी रना तो अपन घरिए मंगियो भैया ठंडा ठंडा पारबो बीर और ओके खूब नच से घरे पियो बाका करियो वेत वेती मछरी बाका करियो और करोर करोर ही मरियो ठंडा ठंडा बीर धरियो और धरियो भैया धरियो बैठक गाना पाचे में और झकझक झकझक बजे है दन हैप्पी हिल मालखिन प्रॉब्लम बाकी अपन लोहवन ताला कर दियो भाई वन असाई तो चोरवन भैया घरवे माई के लूटले है परसिये माई के लूटले वे है दिस ओहू चीजवा बचाई के रही है श्री नाम के हम नासिला वार है बताइला। अब देखो भैया मिनिस्टर फान मिनिस्टर के हम बोली ला मिनिस्टर के बोले ला मिसी काबा फॉलोस खोसांत है के अभी का बोले भैया श्री नाम में सिस्टर सिस्टर भैया ना है सब खोजे फर प्ले कुंद के तो मिसी काबा का बोले फॉलोस खोसांत है के अब वो का करेगा हुए के आदमी लोग के अपन कोस्ट पे मतलब लांटी के कोस्ट पे अपलेडिंग देगा बोले ढेर बोले दुनिया भर पे खफराख फर प्ले कुंद के तब बोले जे के हम लोग लेस देबे तो के फर प्ले के पांच छह बरिस फर प्ले खसर नाम में काम कर ओकर बाद में मंगी बैतलान तपन जाए के काम कर सके है अंदरी मिसी काबा के प्लाने भैया ऐसे देश चली ना कि अपन सिस्टर के उस सबके मुँह से पकड़ ले रू मांगे उस सबके अपले देंगे भर देवे पांच बरिस फर प्ले कर देसो हम का ओकर बाद में तू फ्राई बाटे जाओ बैतलान में काम करो हेड फेथ दैट इज ओन ग्रोथ ऑफ फ्राक इन बैतलेस ना श्री नाम फर प्ले कुंद के बात है भैया नीदलास में ढेर निकले लेकिन आपको हम हिंदू स्थानी में फोड़ के तरीज बताई नहीं है कि एकर प्लानिंग का है बोले हैगा फन वीक है फेद से देर तक दैसन ऐसे दी नित के बता लें उसे उतरा है अपलाइडिंग तो बोले हम लोग भरब है तेज विन विस्तरा तेही ओम दत में नित मेर के नुन है वन दत में ही मेंशन अपलाइडिंग फॉर हर बैतलान द दाग वार ऑफ मेंशन हिन डिप्लोमा क्रेग है कुनें से एंकलक आल इन फ्लिक्टेक स्टापन एंड वे खान तो ये बात है हमारी जनता, मिसी काबा के प्लान है भैया, मिसी काबा का प्लान है, ना कि अपन फरप्लीक कुंड के मोई से पैसा भर और सुरगु कर कि हमारा देश में अच्छा अच्छा दतरा हुए। अब देखो भैया तो लोग जानो सुरीनाम में दुकान में के आगे वॉट्स बड़ा गरम गरम बिका है, तो हाँ गरम गरम वॉट्स हुआ बिका भैया, तो गरम गरम वॉट तो हम भी कीन के खाए भैया मुर्गी के। तो यहाँ बतावे है कि ऐसा जो आदमी वॉटसोन बेचे हैगा ओहू के छुट्टी ना भैया, का बोले है रोफ ओफ के बारे में तेगो वॉट्स पर कूपरा भैया पंडित पलतन तिवारी वे और चोना कीट के हुकू पे भैया सबन वॉट्सवा का नमिया दागी समझाई नहीं वॉट्स मांगत रहा कौन ची मांगत रहा फॉर द उमर वॉर द नमान सेल फॉर यार द सामन मेट एंकल फ्रिंदर फोर अन बार फिर द तुन तुए क्रिमिनल ओप ब्रॉफिस ते प्लास फर्स्कीनन और दोनों उतरल है और बोले द बकेंस्ट्रात दर बकेंस्ट्रात आज पिल्लू कोनो पिल्लू भैया बकेंट है पिल्लू के नाम से और कोनो के पिल्लू नाम है फॉर फॉल्क साल दे प्रोसेलिंग ओ पिस्तौल और दागी से भैया इस सब के फरियारी दुकान के आगे मनावत रहा सोना के केती घींच के ले के चल गए है द वॉट फॉर कूपर फॉर सेट से खीफ वारना एगो वॉट स्टिलिंग भइल है तेज कॉन्फ्रेंसी फिर दे रोफट खरेक्ट ऑफ है ना है खुद रहने द फरदाख्त तरीक ना ब्रोफीस और एक केती ले के भाग गए बोले अब जाओ फिर वॉट्स टू बेचो भैया वॉट्स वॉट्स करिए और बोले द खवन द वॉट्स फॉर कूपर क्रिक डायरेक्ट सिपाही आई है डायरेक्ट ऑन कीफिंग में सामन सेटर से अख्तरफॉल्किंग द ब्रॉन्सिस वार ऑफ द फरदाख्त वान खफलिक वेर लाटर ऑन बहिर आन कट्रोफन मोंप्लेसिर में मिलल है और तू जाने भैया इस सब चुरवन जंगल बारा जोर कूदे है भाई हम रोके ती सब निकेरी में कपड़ी घींची से कपड़ी के लुंडन छोट छोट घींच के और भगल है जब दौरैली भैया तो जंगल में घुस गए हमका जंगल में जाबे भैया हीरा ना ना ना ना ना ना ले जाओ केती हम मरे ना जा भैया जिंदगानी रही तो फिन खेती की ना जाई माँ हम ना जा भी छुड़ी भुकौल के तो रांच राम लगन भी आ गया है। तो भैया रांच आपको भी हम अपने प्रोग्राम में स्वागत स्वागत करते हैं। तो हमारी जनता और आगे को अपना प्रोग्राम लेकर हम और चलते हैं सुनाते हैं। आप लोग जानो है हुफ दरात कितना दिन से फरार है भैया फरार है कब से वो भगल है भैया कई वर्षों के कोई ना पा बको और सखवा चले है और यहाँ अब जोगी का पूछेगा हम लोग के देना फोर्स सेक्टर अधीन से हुफ दरात बराई अरे कैसे तू हुफ दरात के बराई कर ले बाटे अभी बतिया पूछे है दोंदर दाख मेदाख के ओम पंबारे मिनिस्टर तोत हेत के स्टार बस्कुल लखिंग फन फरमान के मिनिस्टर हुफ दात रियाद बरुंतो के तेज फरखादर रिक्त फे यहाँ पे पार्लियामेंटरी महेंद्र जोगी दी ओक दिल ऐड मांग दर फन कमिशी देर फॉर सुख हिफ ऑन द सॉक अन फ्राक अन दे ना फोर सेटर अश्विन अश्विन से पूछी से जोगी पूछे है जोगी पूछे है जोगी वेल द वेतन ऑफ वेलकम वेसन फरमान के मिनिस्टर क्लीमर हुफ दरात ऑफ द होक्ता वास के स्टेल फन इन खतींदे फॉरदरिंग एक वेल अन यू ओरिएंटेरन द फ्राक स्टेलन एक नीम आन दैट एक दी फ्राक मग स्टेलन यू deelde mee dat u gewezen politieke ambtenaarsdrager op de hoogte heeft gesteld dat de vorderingen zijn binnengekomen. Mijn vraag aan u voorzitter, hoe heeft u de heer Hoef dat bereikt? Dat jogito poeche bole tukaise bereikale baate adhinwa. Voorzitter baate uademia faraar he. Bole tu bole sab ademien ket op de hoogste sal ab adhin batao na. Adhin reageerde en met een glimlach u weet dat er zijn raadsmanen antwoorden de पार्लियामेंट फोर्सिटर और भैया महाभारत नौरो पढ़ल है गीता कैसे ध्यान देवे है यही अधीन और यहाँ पे झूठ बोले भैया बोले हैगा तू जाने राजमान एडवोकात उसे ऊ का बोले कॉन्टैक्ट करी से हंस के बोले है NDB-fractieleider Ibu Jones concentreerde en vroeg een punt van orde. Volgens hem was het ongebruikelijk en procedureel onjuist dat de parlementaire je voorzitter onderdeel van de discussie wilde maken. Ik vraag uw spreker te verbieden om conform het reglement van orde van DNA vragen te stellen aan de voorzitter. Dit is procedureel niet correct. Stel Jota Jones tot de kutere bij ja kaliuker. Voordeel meer het en meer aan ja, ki iedereen mag iedereen vragen stellen. Sapke mag geen vraag stellen. Dat is het gewoon mensen. Of je het heen bent of je president bent, maar iedereen heeft recht namelijk iemand anders vragen te stellen. Tony, Amskobihum, Janneke, Hindustanse immigratie, ke, bahut, bad hai dete hai, tam sochila, jitne log hamara Facebook pe hai, sundar hira ranch lagan, aur chitra, aur Janneke isri, Tony, Raja Jodhya, aap sab ke liye ek geet hum chalate hai, aao milke isko suna jaye, ye hai hamare परवसी के कहानी।
1: 140 बरिस होई गए जब हम लोग के पुरखों भारत देश के छोड़ के गए ले सुरिनाम देश। सपना देख के

1863 में सुरीनाम देश में गुलामी का अंत हो गया रहा। सब अफ्रीकन गुलाम उबरी से आजाद हो गया रहा। ओकर कारण हॉलैंड के सरकार के खेतवन में किसान और कारखानों में कमकर्ता के जरूरी पड़ गए। उस समय भारत देश में अंग्रेज के राज रहा और अंग्रेजी सरकार हॉलैंड के इजाजत दे भारत में मजदूर के खोजे के खातिर। ऐसे भइल कि 1873 में हिंदुस्तानी के प्रवासी शुरू हुए। भारत देश में झूठ झूठ बात सुनाई के बहकाई के आंखी में धूल झोंक के सुरीनाम में बोलल गए, चल श्रीराम देश, उधर सब कुछ मिले। कलकत्ता में पानी के जहाज में बैठाइस और यात्रा शुरू।

पेट के खड़तीन श्रीराम देश चले। वहाँ पर 5 बरिस कौनो जमींदार के खड़तीन खेती बारी करती, तब ढेर पैसा मिलत। और 5 बरिस बाद हमें मुफ्त में एक खेत मिला। अरे खेतवा तो मिलल, बाकी बहुत में।

सरनाम अपन दे सोइगे सरनाम अभी यहाँ आए के अभी धरिए रहबे जिंदगी अभी यहाँ गुजरी

तो दोस्तों ये हमारे उस्तादों के उस्ताद मोहम्मद शरीफ इसहाक थे, जो आज दुनिया में नहीं है लेकिन अपना आवाज़ हम सबको दे कर गया है। बहुत महान थे दोस्तों, आप लोग जानते हैं। तो जितने लोग हैं यानी कि DFF तैयार हुआ है हमारा इमिग्रेसी के, आप सबको हमारी ओर से, हमारे समाज की ओर से, रेडियो फाउन के तमाम कोलीखा डायरेक्सी लेडी की ओर से आप सबको बहुत बहुत बहुत बहुत बधाई है। प्रताप अवतार भी आ गया है, लेडिंग शीफ आसिफ भैया बेटा सनही भी आ गया है। आपको तहे दिल से प्यार देते हैं और आपको हम स्वागत स्वागत करते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं अपना प्रोग्राम को लेकर और आगे को चलते हैं हमारी जनता। तो बातचीत ये है हो रहा है सुरीनाम में, आप लोग को भी बताए थे कि क्वेक जो क्वेक है सुरीनाम में, क्वेक के बात हम करते हैं। सुरीनाम में क्विक जो है चोरी भाई ला भैया अपिकर बारे में आप लोग को तो हम और ठीक से बताएंगे। तो जो कॉर्प शेफ मेल्फिन पीना से जोगी जोगी महेंद्र जोगी यानी कि दयाना मेकर बारे में जो मिनिस्टर फॉर यूजिशियन पॉलिसी के हनीश मनोरस से सवाल करी से कि कैसे इतना ढेर क्वेक चोरी हो सके है। एगो कंटेनर में जोन पॉलिसी ब्यूरो के परासी में धरल है, कैसे चोरी हो सके है तेकर बारे में ए बे जोन्स अब ओम चटकल के कहे फरकवा तो स्टेल। अरे भैया तू बाटे देना में एगो लड़का भी फ्रॉक स्टेल कर सके है कि कैसे चीज हुआ चोरी हो सके थे। अब एक बारे में कॉर्पशेप मेल्फिन पिनास जो है वुड्स दाख द्री यूनियन के गैल है परसोलक ऑन द सुख करे बसुख खबरा अन पुलिसी खैर फ्लाइट में वार्तवेई कफूल के साथ कर सेंट्रल स्टोंडन ऑन फ्रेमिंग फन क्विक आइटम कंटेनर फन अफदेनी फ्रॉड एंड ऑन ट्रेमिंग सेन फन डेनी फिला पार्क। तो लोग जानो डेनी फिला पार्क में हुआ पे एगो पार्क है भैया और जाए के पोकलेन मुंगरा पार्क और फिला पार्क में एगो मशीन है ले के हुआ आदमी लोग के घर के तरह तुरान है भैया और जो पोकलेनवा गए लोग के संगे बड़का बड़का बफेले हैं आदमी जड़ जबड़ आका कानी से इतने फिर तक बेले को जी भैया जबड़ जबड़ बंदूक लेके गए हैं कि वो सबके कोई कुछ ना करे और घर में अब सब इनबूदल है, सब इनबूदल है भैया तोड़ तार के घर प्लाटा कर दी। इसे जनता चिल्ला है उकर घर जहां पूछे 20-25 बरिस रहे और गैल है सब घर तुराई गए हैं। तो एकर बारे में बहुत हिंचा तानी भय लेकर बारे में देसी गैल है और यानी कि पॉलिटिक भी ओमा बमुई कई सची युवा बंद कर दी से स्टॉप करी से और अब सब पूछे है हनीश मोरर के जोन हुआ पोता जबर जबर अनमियन गला बड़का बड़का बंदूकी लेकिन उसे के रहा सब कह रहा कि इसको नाम के ना अंत पक्रिज में सो वापन लेके हुआ गई लेगा और उतरा घर तुराने ब्लैक भैल है कि जगहियन जितना हैगा तुई केर बिचाने भैया दुई डाई बिकान है जो नरमियन उना पैसा लांटी जगहियन नरमियन पैसा भर भर एरो भर भर जगहियन कीने रहा अपन कफलवा फीला पार्क के और मुंगरा के मुंगरा कॉम्प्लेक्स के तब वो सबके घर तुराई गए। एक बारे में अब बहुत घींचा तानी है तो अब यही स्कूतुआ मेल्फिन पीना स्कॉरप शेफ दुई चीज गए खैर फ्लाइट में पूछे कि ये चीज कैसे हो सके है ऑनर सुख गए करे क्विकवा कैसे चोरी भैल है। तो बोले हैगा इन्फॉर्मेर बेर फ्रॉड ऑफर फॉर द्वेनिंग फन हु फील है क्विक कॉरप शेफ नेम द साक hook up and hit direct unfilling the fail guys regling laten treffen haar aur jitra chi jab container mein raha sab hua se froisi karwa de ise ab froisi to bhai le bhaiya ab kyu kahan gaye le froisi ke sir naam kisi bhai vishwas na hai bhaiya pratap avtar vishwas na bhaiya bole hain je ke moos ke dhariyo aur kaise bole bilar ke dhariyo na bhaiya heera doot rakhave ek taka hoega to hamara fatingan ramraj bhi aa gaya hai aapko bahut pyar se swagat karte hai bhaiya fatingan तब धरियो बिलार के दूत रखावे के तो कैसे रख के कैसे वो रखाएगा। तो कॉर्प शेफ अब गए ऑन द सुख करे कि चीजवा कैसे है और इंस्पेक्टर बेन ऑफ द इन फ्रॉड किंग पिनास ओक ना अनखिफ्त दीन्स
और वो बोले है मुंगरा प्रोजेक्ट के बारे में एक भीगल अंदर सुकरे डेनिस विला पार्क सॉर्ट फॉर फील फ्रागन अंदर मेर ओवर द रोल फॉर द पुलिसी टाइडेस द ऑन्ट्रेमिंग नर द आनलाइडिंग दार फॉर इस मिडल अंदर सुकर स्टार्ट दोनों गेस्पेशलाइज्ड इनहेड फॉर द बस्टरेडिंग फॉर स्वार की मिनाली टाइडन के बारे में तो फील पार्क का मुंगरा तो लोग कितना कितना घर आदमी लोग के इन बुदल भैया जेमा इरको लगल ऐश काशी है घर में अब सब इन बुदल है कितना आदमी हैगा जोन के हुआ फकांसी है बनाए रहा अपन घर बनाए हुए रहा और ग्वाइटरलैंड में काम करत रहा जाए जाए धीरे धीरे अपन घर बनावत रहा कितना आदमी जो रहत रहा भैया सबके घर टूट गए हैं तो बहुत दुख के बात हैगा सूरीनाम देश के बातचीत हमारे जनता। अब देखो यहाँ पे हम बोली तरी जाए तो NDP का बोले है बोले फिना शेल मोदर पुल फन थिंग यार लॉस्ट ये नीड इन फेफ यार ऑफ और बोले मोदर पुल के बोले चहटान जो ची है बोले जो धसान चहटान है बोले है 10 बरिस के बोले 5 बरिस में थोरो बोले ओके अपलॉस कर पावे जब से देखो तो चहटियान है भैया फतिंगन कैया सफा भैल है कैया सफा भैल है NDP कोमोवेन के कोऑर्डिनेटर शांतल सामुएल तरह दत्तल मुदर पोल नीत इन ए स्टाप कर फरांदर इन द ड्रिंक वाटर दिर फरकलेकिंग एक्टर ओक फन टूपासिंग ऑफ द फिनांशियल सिचुएशन रखेरिंग सन टोकिन 2020 आंत्रो ऑफ फिनांशियल मुदर पोल दी टिल्ट गेडुरेंडे 10 यार इज ऑनस्टान लॉस इन नीत बिनेन इन 5 यार बोवेंडिन वेरदे द ईस्ट ट्वीरे रखेरिंगसयारन overschaduwd door de wettelijke COVID-19-pandemie, de economie en overal terwijl het zwaar trof. De दस बरिस या के चाटा में लौटत रहा भैया तो अपन चाटा जोन में तू लौटत है अब जाओ अपरे एक गिलास में धोइयो या परमानेंट में न हो ये सफा तो ना हुई भैया आधा सफा जो होवे है ना अरे तो फिर से वही में लबड़ा जाए कौन आवे है जो समय पे फरकी सिंह तय थेगा तो चाटवा लभेड़ल करी कि सबके हम का बोले खूब खवाई पियाई कि आओ हम में तू लो ने करके फिन बैठाओ और वही में काम दी है दुनिया भर के आदमी लोग के और देशवा तब चाहटा में हुए तो जोन अदमिया ले देशवा तब बोली हैगा देखो कितना हानि करके देश हम कैसे देशवा संहारी देते यार इन यार इन यार ऐथ है चीजुआ भैया सन्नाम के रवाज है चीजुआ तो कैसे भला देशवा हमार हमारे देशवा कैसे सुधरी भैया कैसे सुधरीगा सुधरे वाला ना है हमारे जनता। तो ये बात है हमारे प्यारे प्यारे सुनने वालों जॉनी के कहना सफा बात है अच्छा लगी तो ले लियो खराब लगी तो हमारे। अब देखो मिनिस्टर भैया एल्फे के नूर सालीम के बारे में यो ही नूर सालीम है भैया फतिंगन जोन समय पे NDP के समय पे ई परामारी बहु के देश ही रहा भैया और आप लोग जानो हैगा एक रात में जो तेकन निकल ले रहा कगचुआ तुम लोग जानो ना किल के वहां पे जगहियन बटाई गया रहा रात भर में वही नूर सालीम है भैया वही नूर सालीम है। अब NDP जीतल है तो एक सबन मिनिस्टर बनाई से LFFA के मिनिस्टर बनाई से भैया अभी LFFA के मिनिस्टर तो बन गए हैं मैं LFFA के मिनिस्टर तो बन गए हैं एक कर बेटवा कौन चक्कर लस करी से। अब देखो ओकर बात हम आपको बताई है ओके नूर सालीम माइक नूर सालीम हैगा मिनिस्टर फॉर लैंड बाउ फीतिल एंड फिशरी LFFA के एकर 20 बरिस के बेटवा का करी से मुन्नारायण भी आ गया है आपको हम स्वागत करते हैं। तो ये 20 बरिस के लौंडा का करी से भैया और एक के ये अपन बाप के मतलब लांटी के ओतो चलावत रहा भाई हाँ और ये लांटी के ओतो चलावत रहा बोले है तेबे द्वेई मानेड वर्दन और बोले है क्या को 15 यार के बरो में को लंडा 15 बरिस के ओके समान रूफ करी नूर साली मुआ के बेटा हुआ 20 बरिस युवा वाला रूफ करी से भाई यहाँ बताए गए रूफ करी से बपुआ के कौनची के कमती है के बेटवा जा है 15 बरिस के लंडा के रूफ करे
बाप है मिनिस्टर, और लड़का ने देखो क्या करे भैया, बाप चाहे अच्छा है चाहे खराब है, मन लड़कन बाप माई के नाम गिराए दे है। आप लोग देखो जानो संतोखी के बेटुआ भी अपन बाप के कितना बड़का बड़का बात बोली से। उधर बहुता के बेटुआ बोरंतो आज तक बन है, और वो बेटुआ और करेगा और है वो बन रहा भैया, वो निकल है तो लड़कन। अब उधर एगो और भैया गाय चोरा रख के गए एथनल के बेटुआ, तो बड़ा बड़ा पोसीसी वाला आदमी लोग के लड़कन का नाम गिराई देवे। ऐसे ही यहाँ पे नूर सलीम के बेटुआ एगो 15 बरिश के लौंड

Minister van LVV verplaatsen toen zij de minderjarige bronvisser tegenkwamen. Volgens de aangifte zou de slachtoffer vervolgens tegen zijn wil zijn meegenomen als op persoonlijke mishandelwikker. Die zeggen ja, de lanti auto de wehega minister lukke ki okar betwa jao chalao aur dam pe payo koi ke roof kar liyo. I hamara desh hai bhai, I hamara desh hai. Janta hua blasting bhare hai auto के जनता के ब्लास्टिंग से तो हुआ कि ना है और मिनिस्टर अपन बेटवा के देवे बोले जाओ रोफ करो. ये भैया कैसे देशवा चली और हमारा मीडिया जो सूरीनाम के है इस फराख ना जाने स्टेल करे ओमदान द मेस्ट मीडिया हीफ नामलक दान पॉलिटिक फोरडील तो उना जाएगा पूछे भैया कि और एक बहन ही एक helemaal geen voordelen met niemand. De sachai en media moet altijd vrij kunnen praten. Vrij kunnen praten, JC. Hè? Je moet niemand voortrekken. Jep. Noor Mohammed kan interview kunnen jou barmasi karise, chori karise. To oke chahi jahal me jaike. So is het. Oko verdediging na chahi karike. Jep. Hoofdraad लूट के गईल है तो ओके चाहे जहल में जाए के ना ओकर ऊपर तो लो हाथ धर के ओमदा तू एनडी पेयर है तो ओके ना माखे फॉर द रेक्टर जाए के सो खान अल्लाह ने दौर खान अब एको छोटा आदमी घरे चियो पर दे दे खोई सके धोई सके आसान भले ही के बड़का बड़का आदमी लोन बचावे है इंग्रिड बाउटर्स बोले हुफदरार के ना चाहे फॉर डील करेंगे एको मलाई नहीं बोले है अधीन जोन फोर्स से तरह आसान भले ये छोड़ के चल गए हैगा तो हम लोग के रेक्सटाट कहां है सूरीनाम में दोस्तों अतिस बलखलक फॉर ओंस लैंड सूरीनाम दा गात तो हम एंड दैट इज गोइंग द वारहेड हम किसी को फोरट्रेक न करीला तो जनता हम जाई भैया अब जइयो सूरीनाम देश में तो हुआ पे भैया हॉलैंड के कुत्ता पियो हां तो कुत्ता हुआ जो है भैया बारा जबर नकुना है ओके ओकर नकुना किलोमीटर से सूहे हैं झुर मछली ना सूहे कड़ाबू आबू ना सूहे खाली कोका सूने भैया और कोका जो सूही तो हुआ टप्प से बढ़ जाई कुत्ता ना काटी कुछ ना और ओकर जोन का बोले है बखले इधर है बास से ऊपर सीन जान जाए बोली कम में कॉफर खोल के और कोकाई ने तोर पाई जाए तो नीदरलैंड के अंबसाद जोन बा सूरीनाम में कुतवा के दी से ऑफिशियल ड्रग्स पीसो तो जितना आदमी ड्रग्स फ्रिक्स लेके आवे भैया पहले तोर स्वागत करी हॉलैंड के कुत्ता तो ओकर बाले में कॉल लेके मारा शीशे ही लगे जइयो ऐसे बतिया है एट मिस ऑफ फॉलन फॉर अ प्रोजेक्ट इज दैट ही मेड अ बास्ट बासस वर्ड ऑफ कलेक्ट फॉर द न्यू हंडन ब्री खाने के बारे में दोस्तों सूरीनाम देश के भैया चार मिला पकड़ा ने यहां इसके फल पे पैसा वेतवास करता भैया हां और नमुआ हम सुली बाटी कौन कौन है ओ मां बाकी जब लेग मीडिया पे ना ही हम नमुआ ना बतावे ना अति स्त्रीखेमेंस अति खाहिम जे तो के पकड़ी से वेतवा सके चीज और वो बतावे है कि इतना सना उच्चा दुगो और दुगो मरत हैगा सूरीनाम के यहां के पोल पे उकले के बहुत ढेर पैसा पाए सो के दुबई में मिलियनन के घर रहा मिलियनन के साकर बोले अंदर नीमर है सूरीनाम के और वो के पकड़ के सिपाही यहां बंद कर इसे का फोन वेतवा से पैसा के बारे में लेकिन नाम ना लिखल तो हम ना बतावे उन दांग हम नमोन सुन चुकली के है मदा खा एक नी से हम दत नी बकेंट इज एक वेल सेल्फ नीट इन द प्रॉब्लम एंड कोम मेंस तो ऐसे बात है और जोन क्विकवारा भैया फेव फोन द सीफन 30 किलो क्विकवा चोरी भेले कंटेनर में से भैया कंटेनर में से चोरी भेले अरे भैया तू एन तक
किलो हाँ 82 किलो उजर का मिलल सी गौरी चरण गजरी हाँ आपको स्वागत करते हैं। तो 82 किलो भैया सीफन तक ब्लॉक

0: सेफन तक ब्लॉक में पैर्स कर कर भैया तरीकी कर कर भैया दबाए दबाए दबाए दबाए धरे रहा कोकाइन 80 किलो भाई। दो ही पिस्तौल मिलल है सूरीनाम में बिलल है जहाँ पे सिपाही अंडरसुक करता होम पर स्ट्रात में बेड अंडरसुक इन दे फुरते एक वर्दन मिर्दन ब्लॉक कोकाइन और दो को वापन मिलल है का ड्रग्स फंग इन बेड फुरते uiteindelijk uitkomt op meer dan 80 kilo. Het onderzoek naar de herkomst van de drugs, de wapens en wat apps, wat ja, ik heb ja, kweek, chori hoi ge, ik ook een waka hoi. हम कोई के बस क्यों लख न करी लामा दैट इज गोइंग द वारहिट मींस द फॉरट्राउटहिट ऑफ द पॉलिसी फॉर सुरीनाम सुरीनाम दी राख टेलकस वेग भैया दी राख टेलकस वेग ik ga proberen een keertje toch meneer Hanis Manoret aan te bellen zodat hij namelijk beter kan uitleggen wat gebeurt het ohi je aila bhaiya net buiten la to ohi Hanis Manoret bole raha bole hai ga mo rek kon te kyu bole hum rek karke to ke pakda bhai और बोले नो टेस्ट में तो जोगी बोले बोले नो टेस्ट में बोले स्कूटून तो के टेस्ट करे पुलिसी ब्रो में से क्लोइस में से पैसा चल जाए ई चल जाए यू चल जाए 300 फील अन किलो क्विक चल 537 किलो क्विक चल गए है तो बोले कैसे एकर बारे में है तो ये बात 82 किलो कोकेन भैया पकड़ान है हमारे जनता ऐसे बतिया है तो और आगे हम आपको सुनाई है वे बोले रही सिपाही भी मांगे अपन नाखदीन के पैसा और सिपाही मांगे नाखदीन के पैसा ओहू सब मांगने हैगा ऑफ हेल्दरिंग एकर बारे में हमारे जनता हमारे दोस्तों तो आप लोग को हम बोली एगो गीतवा सुनाई दे तो शासार शारसार सारधा जवाहिर आ गया है हमारा प्रोग्राम में आपको हम स्वागत करते हैं
1: जब श्री राम देश आए थे हम

दोस्तों एक घंटा हो चुका है, मुझे प्रोग्राम तो रोकना पड़ेगा ना। और अपना देश को हम बहुत याद करते हैं, हमारा मातृभूमि श्री नाम है। और अगर जब किसी ने उस पर उंगली दिखाएगा तो दिल में तो चोट लगेगा ना, चाहे वहाँ के लोग चाहे यहाँ के लोग। अपना मातृभूमि तो अपनी ही मातृभूमि है हमारे दोस्तों, और जब अपने ही लोग उसको जो लूटेगा तो बताना तो पड़ेगा, चिल्लाना तो पड़ेगा ना, रोना तो पड़ेगा ना।

लिए है आप सबको हम बधाई देते हैं। हमारा एमिक्रासी के 5 यूनी का जो हुआ है और सीता गौरी चरण है, शारदा है, चित्रा है, मुन नारायण है, राज राम लगन है, टोनी इसरी है, सुंदर हीरा है, चित्रा अवतार है, धर्मेंद्र इसरी है, प्रताप है, राजा अयोध्या है। आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। राम राम, नमस्कार और प्यार भरी राम तो फॉल खंड केयर। आज हम आप लोग को कुछ नए गीत भी सुनाएंगे। तू मेरे आ

और दोस्तों तू मेरी आस मां परे और नए गीत कुछ पुराने गीत से आप लोग को हम सुनाएंगे करेंगे। मत कर इतना गुरूर, कभी कभी लोग को गुरूर बहुत हो जाते हैं। तो पंकज उदास अलका याग्निक क्या बताता है, मूवी के नाम है आदमी खेलो ना भैया खेलो ना।

और दोस्तों उसके बाद हम चलते हैं, कितना चाहते छुपाएंगे हम और कितना चाह छुपाएंगे तुम, और ये गीत है

छुपाएंगे बैठे आमिर खान या नाचो। दोस्तों जोंग ही जोंग आपको हम सुनाते हैं आंची और आप वहां हम यहां कि कभी राधा क्या बोलते हैं आओ सुना जाए।

0: अच्छा चलता हूँ।
1: और बोल ना राधा बोल, आज कुछ बोल किशन और राधा के सॉन्ग में आज हम मतवाला है दोस्ती, और राधा और कृष्ण का जोड़ी आज तक दुनिया पे और उससे जबर जोड़ी कहीं नहीं दोस्तों।

गोविंदा तेरे किशन कन्हैया मूवी का नाम है मेरा लहू। और दोस्तों आज कुछ किशन की मूवी में हम हैं तो एक और हो जाए, एक जान है हम आसमां के, आसमां पे लिखेंगे दो।

और दिल चाहे तो आसमां पे जमी पे दिल परे और जहां भी चाहो लिख दूंगा तुम्हारा नाम और तू तू तू तू तू तरा थोड़ा ना दिल हमारा।

बलमा बलमा अगर जिंदगी हो तेरी, रोमांटिक जोंग रोमांटिक जोंग के मूड में है। मूवी के नाम है झनकान फन नहीं खतक और बलमा नहीं खती द्री नहीं खतक का आशा भोसले का जोंग के बाद हम चलते हैं दिल लगी ना किया करो, दिल लगी ना किया करो।

0: क्या करो एवरी गिन एवरी ग्रेन। और दोस्तों सॉन्ग लवली सॉन्ग, और हम चलते हैं अगला गीत के ओर। और अगला गीत क्या होगा सुना जाए।
1: नहीं देखा कभी पहले,
0: और हम ही नहीं देखा।

0: और तेरा नाम में बसी ही खुदा। दोस्तों दोस्तों दोस्तों,
1: तो हमारे दोस्तों एकदम एकदम एकदम हम चलते हैं अपने कुछ लोकल जोन के बारे में, लोकल जोन की ओर हम चलते हैं। तो लोकल जोन क्या क्या है, आओ सुना जाए कोई मेरी प्राणों में।

प्राणमी आखिरी प्राण बस आखिरी लोकल सॉन्ग आपको हम आज सुनाएंगे रिकी जीव जरन का है हमारे यारो हमारे दोस्तों। तो हम और आगे को अपना गीत लेकर चलते हैं, तो हम चलते हैं एक और लोकल सॉन्ग हो जाए और वो है मेरे दिल यानी कि रोहित चांद का ये सॉन्ग है।

और दोस्तों ये एक यानी लोकल सॉन्ग थे आपके हमने सुनाई दिया और हम उसके बाद तो चलते हैं और वो अपने ही देन हाक का है और वो है भैया जॉन मॉकम सिंह का एक सॉन्ग हम आप लोग को सुनाएंगे और आओ मिलकर सुना जाए।

और दोस्तों कुछ लोकल सॉन्ग आप लोग को हम आज सुनाएंगे। अभी आपने जॉन मोकिम सिंह के बारे में सुना है और जॉन मोकिम सिंह के बाद में अभी हम आप वापस और यानी कि और आगे को लेकर चलेंगे। और यह है अपना

लो मोर कहनिया, हम आए सूरीनाम तो इस गीत को और ये चलाए हैं, गाए हैं मोहम्मद शरीफ ई झांक ने, हमारे यारो हमारे दोस्तों लोकल जोन हम आप लोग के लिए चलाएंगे। हम चलते हैं और कहाँ चलते हैं, ये कहाँ अनिल भीम की ओर हम चलते हैं, वो भी एक लोकल जोन है।

और तेरे दुनिया से बहुत मजबूर इंद्रोनील रॉय का ये सॉन्ग है, कुछ लोकल सॉन्ग आज सुनाएंगे हम। चलते हैं किरण केदार की ओर।

और बुधराम होलास दोस्तों, और थार गोरी और क्या क्या गाए हैं, ये एक चटनी जोंग है दोस्तों, चटनी जोंग। तो आज कुछ चटनी हम आप लोग को सुनाएंगे, आओ एक और सुना जाए, हरि सुखदियो के ड्रिंकिंग वाइड बाड़, और एक सुखा चटनी है दोस्तों।

और ड्रिंकिंग टू बार दोस्तों कुछ सोकान चटनी आप लोग को हम सुनाते हैं और सुनाते ही रहेंगे। तो दोस्तों हम चलते हैं केनेथ सालिक की ओर, ये भी एक सोकान चटनी आप लोग को सुनाएंगे।

ना एकदम। इस गीत में ये सुंदर सा गणेश गीत आपके लिए प्रस्तुत किया गया है मेरे दोस्तों। और यहाँ से एक ये भी है,

कोलकाता से ये म्यूजिक फ्यूजन म्यूजिक यहाँ से हमने सुने इंस्ट्रूमेंटल दुर्गा माँ के ऊपर लिए। गणपति बप्पा यू।

अमित कुमार जी के आवाज़ में, अमित कुमार यानी कि कुमार किशोर कुमार जी के सुपुत्र अमित कुमार जी के आवाज़ में ये जमी गा रहा है फिल्म का नाम तेरी कसम।

0: टू एंजॉय
1: हिम लता जी की आवाज में श्रवण की है। आप तो ऐसे ना थे फिल्म का नाम। प्यारी प्यारी पल, प्यारी प्यारी पल, खुशहालता के कामनाओं के साथ आपको एक शुभ समय, एक शुभ समय आपको जरूर से मिले। आपके लिए हमने सुने हेमलता जी की आवाज में, तो इस तरह इस बार हम सुनेंगे मोहम्मद रफी जी की आवाज में।

फिल्म का नाम तेरी कसम। फिल्म का नाम आप तो ऐसे ना थे, हाँ कोरेक्सी आप तो ऐसे ना थे। फिल्म का नाम रफ़ी जी की आवाज़ में, इससे पहले हम हेमलता जी की आवाज़ में सुने थे यही सेम गीत। और यहाँ से पेश किया गया है मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में और किशोरदा जी भी ये गीत गाया है। मौका मिलेगा तो हम ज़रूर से उनका गाया हुआ गीत आपके लिए चला देंगे। कहते हैं यू हैव नॉट ऑलवेज लुक गफोंडन द वार्डन, यू हैव नॉट ऑलवेज लुक गफोंडन द वार्डन, द जस्ट मेंशन होल्डन फॉर यू, द जस्ट मेंशन होल्डन फॉर यू, ओम वी यू एक्ट बेंट नीट ओम वी यू प्रोबेयर्ड टू सेन। गवोन यू सेल्फ ब्लेव मेंशन, लिव मेंशन गवोन यू सेल्फ ब्लेव।

0: बच्चों की आवाज़ में ये गणेश जी की सुंदर सा गीत आपके लिए चला दिया गया है। मेरे दोस्तों, आपसे ये बताना चाहती हूँ कि फोरुइट यानी कि आगे की तरफ, फोरुइट इज नीट ऑलटाइट रेखदोर। आप इसे समझे कि फोरुइट इज नीट ऑलटाइट रेखदोर,
1: या पुरुष या फिर वो दोनों है, क्योंकि शिव सिर्फ पुरुष नहीं, वो अर्ध नारेश्वर है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही तो शक्ति की आवश्यकता पड़ी। शिव ने अपनी आधी चेतना से शक्ति को प्रकट किया और फिर जन्म हुआ अर्ध नारेश्वर का।

0: आकार रूप लेकिन परम सत्य का प्रतीक अर्धनारीश्वर का अर्थ भी शिव है। क्या ईश्वर स्त्री है या पुरुष या फिर वो दोनों है? क्योंकि शिव सिर्फ पुरुष नहीं, वो अर्धनारीश्वर है। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचनी चाही तो शक्ति की आवश्यकता पड़ी। शिव ने अपनी आधी चेतना से शक्ति को प्रकट किया और फिर जन्म हुआ अर्धनारीश्वर का। एक शरीर आधा शिव आधा शक्ति, साकार रूप लेकिन परम सत्य का प्रतीक अर्धनारीश्वर का अर्थ है ब्रह्मांड की संपूर्णता। शिव चेतना है, शक्ति क्रिया है। शिव मौन है, शक्ति गति है। शिव विचार है, शक्ति भाव है। दोनों के बिना सृष्टि अधूरी है। जैसे शरीर और आत्मा, जैसे दिन और रात, जैसे श्वास और प्राण, हर इंसान के भीतर ये दोनों शक्तियाँ हैं। एक निर्णय लेने वाली शिव और एक महसूस करने वाली शक्ति। जब ये संतुलन में होते हैं तभी जीवन में समरसता आती है। ना पूरी शक्ति काम करती है बिना शिव के, ना शिव सक्रिय होते हैं शक्ति के बिना। इसलिए अर्धनारीश्वर सिर्फ एक देव नहीं, वो एक संदेश है। पूर्णता अलगाव में नहीं एकता में है। तो याद रखना, तुम में भी शिव है और शक्ति भी।
1: ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से होता है? ये आजकल कई बार मन में लोग, नई पीढ़ी में लोग सवाल करते हैं।
2: नहीं, जन्म से होता है। यदि शुद्ध ब्राह्मणी में ब्राह्मण के गर्भाधान से ब्राह्मण आ जाए
1: जी,
2: तो विद्या उसको अपने आप मिल जाती है। विद्या हवाई ब्राह्मण माधिगाम। कर्म से कैसे होगा? तो अनियंत्रित हो जाएगा
1: जी।
2: एक दिन व्यक्ति चार कर्म करे तो चार चारों बन हो जाए क्या हो?
1: जी। तो कोई व्यक्ति जो जन्म से ब्राह्मण हुआ लेकिन ब्राह्मण वो कर्म नहीं कर रहा,
2: तो पतित ब्राह्मण। हमारे शास्त्र ने कहा
1: जी,
2: यदि ब्राह्मण होकर एक बूंद भी उसके मुख में शराब चली जाए
1: जी
2: और बकरी के दूध का फेन चला जाए
1: जी,
2: तो ब्राह्मण पतित हो।
1: ब्राह्मण जो होता है वो जन्म से होता है या कर्म से?

दिल से। रिश्ते रिश्ते पैसों की मोहताज नहीं होते, क्योंकि कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, पर जीवन अमीर ज़रूर बना देता है।

तुम्हारे तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है, तुम्हारे शहर का मौसम बड़ा सुहाना लगता है। मैं एक शाम चुरा लूं अगर बुरा ना लगे।

एक बार फिर शामिल किया गया है अभिजीत भट्टाचार्य के इस प्रोग्राम में। शोहरत, शोहरत का पैमाना, शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता है मेरे यारो। शोहरत का पैमाना सिर्फ पैसा नहीं होता, जो दिल पर राज करे वो भी मशहूर होता है।

यस यस यस माय लिसनर, जी हाँ आपने ठीक सुना कि उड़े जब जब जुल्फे तेरी, हाँ हाँ मौसम में दस्तूर है तो जरूर से कंवारियां लोग के दिल मचलेगा। संदेश संदेश शिव दीन जी के आवाज में यहाँ से शामिल कर दिया गया है आज के प्रोग्राम में।

ये स्पेशल गीत आपके लिए पेश किया जाता है, स्पेशल स्पेशल चुन चुन कर गीत यहाँ से आपके लिए लाया जाता है मेरे प्यारे सुनने वालों।

इस बार आपके लिए हम सुनेंगे, मिलकर सुनेंगे कि जिंदगी की ना टूटे लड़ी। इससे पहले हम यहाँ सुनेंगे ये सुंदर सा गीत, वो सुंदर सा गीत हम अभी के आपके लिए चलाएंगे।

0: जी हाँ मेरे दोस्तों, नदीम खान जी की आवाज़ में हमसे सुने, हम सब ने सुने कि किसी से मुझे प्यार हो। यस्त मनीर ओम वातर तर द्रिंकन द्रिंक वातर तर वेल उसित वातर द्रिंकन तर वेल उस्ताद कान schadelijk zijn voor uw gewrichten en nieren. Lang, drink langzaam, langzaam drinken. Niet doorslokken. Langzaam drinken geeft het lichaam de tijd om het water goed op te nemen. Lauw water op een lege maag in de ochtend. Het verwijdert gifstoffen uit het lichaam en versnelt het stofwisseling. Hou voldoende tijd voor en na de maaltijd. Drink niet te veel water direct na het eten, maar drink het pas na 30 minuten. Drink water voordat je dorst krijgt. Drink 8 tot 10 glazen water langzaam verspreid over de dag.
1: आज मैंने कुछ सोचा है।
2: कभी-कभी ये काम भी करना चाहिए।
1: आज मैंने एक बहुत बड़ा फैसला किया है।
2: मैं बताऊं तेरा बहुत बड़ा फैसला? तू बसंती से शादी करना चाहता है।
1: अरे वाह वाह वाह, तू मेरा सच्चा यार है। एक यार ही यार के दिल की बात जान सकता है।
2: और वो यार ये भी जानता है कि इस साल में शादी का ये तेरा 8वां फैसला है।
1: ये फाइनल है यार।
2: फाइनल? सुबह से दारू पी रहा ना
1: यार। पार्टनर, मेरा एक काम कर दे।
2: क्या?
1: वो बसंती है ना, उसकी मौसी के पास जाकर मेरे रिश्ते की बात कुछ इस ढंग से कर कि मौसी शगुन लेके आ जाए।
2: मैं क्यों करूं?
1: अरे लड़के वाले ही तो जाते हैं लड़की वालों के घर। जय, और फिर इस दुनिया में तेरे सिवा मेरा है कौन?
2: देख, शादी तूने करनी, तू जाके बात कर।
1: जरा सोच, शादी के बाद एक घर होगा।
2: घर तो तेरा होगा।
1: एक बीवी होगी।
2: तेरी होगी।
1: 7-8 बच्चे होंगे।
2: तेरे होंगे।
1: पर चाचा चाचा तो तुम्हें बोलेंगे ना, प्यार से तुम्हारी गोद में खेलेंगे, तुम्हारे कंधों पे झूला झूलेंगे और तोतली जबान में बोलेंगे, ताता ताता हमको कहानियां सुनाओ।
2: यानी शादी के बाद तेरे घर में मुझे आया की नौकरी मिलने वाली।
1: समझा, तू मेरा दोस्त नहीं है। लानत ऐसी तो। इसीलिए अकड़ रहा है ना कि मेरा ये काम तेरे बगैर दूसरा कोई नहीं कर सकता। आज मेरी मां होती तो मेरी कब की शादी हो चुकी होती, मेरे छोटे छोटे बाल बच्चे होते। आज मेरा बाप होता तो बैंड बाजे के साथ मेरी शादी करके लाता। मेरे भाई बहन होते वो मौसी के पैर छूकर भी बसंती की शादी मुझसे करवा दे। लेकिन ये मत भूल जाए, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। भगवान, तू वो दोस्त नहीं रहा। तू नहीं चाहता मैं बुरे धंधे छोड़कर घर गृहस्थी बसा सकूं। मैंने तुझे क्या समझा था जय, लेकिन तू क्या निकला?
2: साला नौटंकी, खड़ी खड़ी ड्रामा करता है। चल बस बस, बहुत हो गया है, मैं मौसी जाके बात कर लूंगा।
1: सच?
3: अरे बेटा, बस इतना समझ लो कि घर में जवान बेटी सीने पर पत्थर की सिल की तरह होती है। बसंती का ब्याह हो जाए तो चैन की सांस लूं।
2: हाँ सच कहा मौसी आपने, बड़ा बोझ है आप पर।
3: लेकिन बेटा, इस बोझ को कोई कुएं में तो फेंक नहीं देता। बुरा नहीं मानना, इतना तो पूछना ही पड़ता है कि लड़के का खानदान क्या है, उसके लक्षण कैसे हैं, कमाता कितना है।
2: कमाने का तो यह है मौसी कि एक बार बीवी बच्चों की जिम्मेदारी सर पे आ गई तो कमाने भी लगेगा।
3: तो क्या अभी कुछ भी नहीं कमाता?
2: नहीं नहीं, ये मैंने कब कहा मौसी, कमाता है, लेकिन अब रोज रोज तो आदमी जीत नहीं सकता ना, कभी हार भी जाता है बेचारा।
3: हार जाता है?
2: हाँ मौसी, अब ये कम्बक जुआ चीज ही ऐसी, अब मैं क्या कहूँ।
3: है? तो क्या जुआरी है?
2: छी छी छी छी मौसी, वो और जुआरी ना ना, वो तो बहुत ही अच्छा और नेक लड़का है, लेकिन मौसी एक बार शराब पी ली ना
4: फिर अच्छे बुरे का कहां होश रहता है। हाथ पकड़ के बैठा लिया किसी ने जुआ खेलने, अब इसमें बेचारे वीरू का क्या दोष है।
3: ठीक कहते हो बेटा, जुआरी वो शराबी वो, लेकिन उसका कोई दोष नहीं।
4: मौसी आप तो मेरे दोस्त को गलत समझ रही हैं। वो तो इतना सीधा और भोला है। अरे बसंती से उसकी शादी करके तो देखिए।
5: Dit is geweldig. Diabetes hield me nooit tegen. Het zorgde alleen voor meer zorgen. Maar Omnipod 5 werkt samen met mijn sensor om automatisch insuline toe te dienen. Wat helpt om mijn waarde binnen bereik te houden. En het is waterbestendig. We gaan ervoor. Meer tijd om te leven als diabetesbeheer minder tijd kost. Maak kennis met Omnipod.
4: Je juwe en sharaab ki aadat to do din mein chhoot jayegi.
3: अरे बेटा, मुझे बुढ़िया को समझा रहे हो? ये शराब और जुए की आदत किसी की छूटी है आज तक?
4: मौसी आप वीरू को नहीं जानती, विश्वास कीजिए वो इस तरह का इंसान नहीं है। एक बार शादी हो गई तो वो उस गाने वाली के घर जाना बंद कर देगा, बस शराब अपने आप छूट जाएगी।
3: हाय हाय, बस यही एक कमी रह गई थी, तो क्या किसी गाने वाली के घर भी आना जाना है?
4: तो इसमें कौन सी बुरी बात है मौसी? अरे गाना सुनने तो राजा महाराजा और ऊंचे ऊंचे खानदान के लोग जाते हैं।
3: अच्छा तो बेटा ये भी बताते जाओ कि तुम्हारे ये गुणवान दोस्त किस खानदान के हैं?
4: बस मौसी खानदान का पता चलते ही हम आपको खबर दे देंगे।
3: एक बात की दाद दूंगी बेटा, भले 100 बुराइयां हैं तुम्हारे दोस्त में, फिर भी तुम्हारे मुंह से उसके लिए तारीफ ही निकलती है।
4: क्या करूं मौसी, मेरा तो दिल ही कुछ ऐसा है। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं?
3: पक्का? भले सारी जिंदगी लड़की कुंवारी बैठी रहे, लेकिन मैं ऐसे आदमी से बसंती को नहीं ब्याहने वाली। सगी मौसी हूं, कोई सौतेली माँ नहीं।
4: अजीब बात है, मेरे इतने समझाने पर भी आपने इनकार कर दिया। बेचारा वीर न जाने क्या करेगा।
6: कूद जाऊंगा, फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। जो मजनू ने लैला के लिए किया था, रांझा ने हीर के लिए किया था, रोमियो ने जूलियट के लिए किया था। सुसाइड, सुसाइड।
7: अरे भाई, ये सुसाइड क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब मरते हैं तो उसे सुसाइड कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग मरते क्यों हैं?
8: वो
9: अरे भाई बात क्या है, तुम सुसाइड क्यों करना चाहते हो?
6: ये मत पूछो चाचा, तुम्हारे आंसू निकल आएंगे। ये बड़ी दुख भरी कहानी है। इस स्टोरी में इमोशन है, ड्रामा है, ट्रेजेडी है। ये बसंती है ना, इससे मेरा लगन होने वाला था चाचा, लेकिन इसकी बुढ़ी मौसी ने बीच में भांजी मार दी। अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता। गांव वालों, तुमको मेरा आखिरी सलाम। गुड बाय, गुड बाय।
7: अरे भाई, ये गुड बाय क्या होता है?
8: अंग्रेज लोग जब जाते हैं तो गुड बाय कहते हैं।
7: लेकिन ये अंग्रेज लोग जाते कहाँ हैं?
6: गांव वालों, मैं जा रहा हूँ। भगवान, मैं आ रहा हूँ। रुकियो, तुम लोग जोर देते हो, थोड़ी देर रुक जाता हूँ।
3: अरे वाह, अरे तुम कैसे दोस्त हो? तुम क्यों बैठे हो?
4: क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे क्या मालूम क्या हुआ? वो देखो तुम्हारा दोस्त कहाँ चढ़ गया, देखो।
6: मेरा दिल भर चुका।
3: देखा, देखा तुमने?
4: हाँ देखा, कुछ नहीं होगा। जब दारू उतरेगी तो ये भी उतर आएगा।
3: क्योंकि मैंने एक से एक जाले देखा, मगर तुम्हारे जैसे पत्थर का दोस्त नहीं देखा। जो
6: इसलिए मैं जानते करूंगा, लेकिन एक बात सुन लो गांव वालों, जहां कोई प्रेमी जान देता है वहां भयंकर किस्म की मुसीबतें आती है।
7: कैसी मुसीबतें आएंगी?
6: अकाल, सूखा, चेचक, हैजा, और ये सब इस बुढ़िया की वजह से आएंगी, इस बुढ़िया की वजह से। देख लेना गांव वालों, When I dead, police coming, बुढ़िया going jail, in jail, बुढ़िया चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग।
10: अरे मौसी हाँ कर दो नहीं तो ये जान दे देगा।
3: अरे कैसे हाँ कर दो देना नाथ जी।
6: अरे गाँव वालो इस बुढ़िया से दरखास्त की कोई जरूरत नहीं। अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। मैं जानते करूंगा एक दो तीन।
3: मौसी मौसी हाँ कह दो ना।
11: तो कोर्ट कचहरी का चक्कर हो जाएगा मौसी।
3: अरे भैया मैं तो कभी कोर्ट कचहरी नहीं गई।
11: हाँ कह दो मौसी।
3: हाँ जीरो ठहर जा मैं तैयार हूँ।
10: मौसी ने हाँ कह दी भाई नीचे आ जाओ आ जाओ।
6: मौसी से कौन शादी करेगा सालो। मुझे तो वो धन बसंती से शादी करनी है। बसंती से
3: वीरू मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब नीचे आ जाओ।
6: अरे गाँव वालों सुना तुमने भाइयों मौसी भी तैयार है बसंती भी तैयार है इसलिए मना कैंसल। मैं नीचे उतरता हूँ मौसी। मौसी जी मैं नीचे उतरूंगा।
0: कहते कि मौसी से कौन शादी करेगा मैं तो बसंती के लिए आई हूँ। हाँ इसलिए मरना कैंसल जीना है मेरे प्यारे जीना है।

0: सर, वो तो पहले ही से अटेंशन।
1: आप जानते जानते जानते कार्यो कान खोल कर सुन लो, हमारे आने से पहले जो कुछ जेल में होता रहा है वो जब तक हम हैं नहीं चलेगा।
2: Operatie Back to School. Jij, schoolspullen. We willen geen verrassingen.
1: Ham, Andrezo ke zamane ke jailer hain. Aaj kal ke jaileron ki tarah nahin. Jo kaidiyon ko sudharne ki fikar mein lage rehte hain. Ham achhi tarah jante hain. Tum log kabhi nahin sudhar sakte ho. Are jab ham nahin sudhar sake to tum kya sudharoge? हम जानते हैं आजकल हमारी बातों को पसंद नहीं किया जाता, इसीलिए हमारी हर जगह से कुछ दिनों में बदली हो जाती है। लेकिन हमारी इतनी बदलियों के बाद भी हम नहीं बदले। इसलिए याद रखो, ये मत समझना कि जो कुछ तुम करते हो उसकी खबर हमको नहीं मिलती। हमारे जासूस इस जेल में चारों तरफ फैले हुए हैं, घड़ी घड़ी की रिपोर्ट हमको मिल जाती है। हमारे जाने बिना यहाँ परिंदा भी पैर नहीं मार सकता। ये क्या
0: परिंदा हुजूर? कबूतर, कबूतर
1: निकालो। अच्छा जाने दो, आज के लिए इतना काफी है, अब तुम लोग जा सकते हो। चलो।
0: बड़ा अजीब आदमी है,
3: जेलर था, जासूस कौन है?
4: मैं बताऊं, वो है ना अपना हरिराम नाई, जेलर का बड़ा मुंह चढ़ा है मुआ। हाँ,
3: हरिराम नाई।
0: हरिराम, अब तो ये मुझे भी निकाल दो।
5: सारी तैयारियां हो चुकी, कल से काम शुरू।
6: अच्छा, कितने दिन लगेंगे सुरंग बनाने को?
0: काट दिया।
5: सुरंग बनाने को यही कोई 6-7 दिन में काम हो जाए।
6: सुरंग निकाल कहां से रहे हो?
5: बैंक नंबर 9 के बराबर से।
6: कहीं जेलर को पता ना चल जाए।
5: किसी को कानो कान खबर नहीं होगी।
6: आओ।
0: बस हो गया। साहब।
7: आओ हरिराम, क्या खबर लाए हो?
0: साहब होशियार रहिए, जेल में सुरंग बनने वाली है।
7: आओ, जेल में सुरंग?
0: क्या कहा, हमारी जेल में सुरंग? यहाँ कैदी जेल में सुरंग बना रहे
1: हैं। हम अंग्रेज के जमाने के जेलर भाई।
7: हमारी जेल में सुरंग?

0: तुम लोग भूल गए कि हमारे जासूस इस जेल के कोने कोने में फैले हुए हैं। ये क्या? तो ये है सुरंग बनाने का औजार।
1: जेल में आ चुका है। हाँ, बस दो चार दिन में ही जेलर और उसके जासूसों को।
0: हमारे जेल में पिस्तौल
1: जी,
0: हमारे जेल में पिस्तौल यानी बगावत, खून की नदियां। सिपाहियों
2: gezond. Kies echt. Kies
3: 6 3
4: 2
5: 2
4: 1
0: और बाकी हमारे साथ आ।

0: पिस्तौल यहाँ है, जरा भी हिलने की कोशिश की तो चले गए। चलो अपने दफ्तर।
1: चलूं कैसे? तुम लोगों ने हिलने को मना किया है।
2: पहला ऑर्डर कैंसिल। चार
3: अंग्रेजों के जमाने के जेलर और इतनी घबराहट।
4: पहले हिफाजत से हमें गेट तक छोड़कर आओ।

0: trovato quel uomo.
1: Yes, sir.
0: Here I am. Here I have to stop.
2: उन दोनों ने भागने की कोशिश तो की होगी ना?
3: अरे कोशिश? ये थी कोशिश? जान तोड़ कोशिश करी? मगर मैं भागने दूं तब ना? एक को दी मैंने पटखनी कि वो लंबू निकला भागने को। मैंने पकड़ के टांग तो खींच लिए कि जाते किधर वा? और कस के धो दिए लबाड़े कि चलो छाने। बस फिर क्या था, पैर पकड़ लिए दोनों ने।
2: वीरू और जय ने तुम्हारे पैर पकड़ लिए?
3: हाँ हाँ,
2: मैंने तो सुना बड़े बदमाश है वो।
3: अरे वो बदमाश है, मगर हमारा नाम भी तूरमा भोपाली ये भाई नहीं है। अब आप समझो कि पैर पका के दोनों रो दिए कि तूरमा भाई माफ कर दो, वो तो मैं माफ कर देता, मगर मुझे इस बात पर गुस्सा कि मेरे इलाके में आ कैसे गए।
0: फिर क्या हुआ?
3: अरे फिर होना क्या था, ये तो स्टिक रखता हूँ, अब जो मैंने पिन फिनाई तो जाना सुधाई कर दी, धटा धट धटा धट, बहुत मारा बहुत मारा।
0: फिर क्या हुआ?
3: बस फिर होना क्या था, मैंने दोनों के पकड़ के गले बांध और मैंने कहा।
0: क्या कहा?
3: क्या कहा? हाँ, क्या कहा मैंने? हाँ, मैंने कहा कि और कोई खिदमत हो मेरे लायक तो आप बताओ मुझे। अरे मियाँ, आप लोगों को और कोई काम है कि नहीं? दिन भर बैठे रहते हो और 25 झूठ हमसे बुलवाते हो। चलो हाँ काम करो। अरे जाओ भैया, जबरन झूठते रहते हो, जाओ। मैं तो ये सही मजाक कर रहा था। और हाँ, बहुत जल्दी आप दोनों की छूट हो गई जेल से। वैसे माशाल्लाह तेहते मेहते तो बड़े मजे की करारी टन टन हो रही है।
0: सूरमा भाई।
3: हाँ भाई,
0: हम अपने 1000 रुपए लेने आए।
3: 1000 रुपए?
4: हाँ हाँ, 1000 रुपए।
3: अच्छा हाँ, 1000 रुपए। अरे वो तो आपकी गिरफ्तारी के दूसरे ही दिन मिल गए थे। वो दिन है और आज का दिन है, लिफाफे में बांध कर जेब में धरे धरे फिर रहे हो। ये देखो 200 के 10 है, गिन लो।
4: अच्छा सुरमा भाई, फिर मिलेंगे।
5: कुछ डायलॉग आपके लिए पेश किया गया है और आगे में जो समय रहे तो ज़रूर से और भी डायलॉग आपके लिए यहाँ से हम पेश करेंगे।
6: Adverteer nu bij VAHON Hindustani Radio en bel met de afdeling sales. Telefoonnummer 070 365 22 47.
5: Kijk, ik vertrouwen kan bergen verplaatsen, maar als het breekt, dan verdwijnt niet alleen de kracht, maar ook de blik van wie je werkelijk ziet. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig. De innerlijke oorlog lijkt eeuwig, maar elke strijd brengt je dichter bij rust. Verhalen en dromen zijn wat voor bestaan, wanneer feiten stof en as zijn en vergeten. Er zijn dagen dat de zon niet opkomt in de lucht, maar in jezelf. En dat is genoeg om de wereld te laten stralen. Soms moet je breken om te ontdekken welke licht er al die tijd in je verborgen zat. Je draagt de stilte niet om te vluchten voor de wereld, maar om de wereld in jezelf te horen spreken. En soms moet je dwalen. Soms moet je dwalen in de stilte om jezelf terug te vinden in het geluid van wie je echt bent. Waardeer het leven zoals het is, waardeer het leven zoals het is. Het zal nooit worden wat je begeert. Sommige dingen worden niet makkelijker, sommige dingen worden niet makkelijker, je geest wordt gewoon sterker. En je hoeft niet stil te staan om aandacht te geven aan wat telt. En soms kan de kleinste stap in de goede richting de grootste stap in je leven zijn. Henna.

0: Net even anders, gewoon perfect. Extra lucht.
1: Meri liye tum kaun? Kaise bataun main tumhe? Tum dhadkanon ka geet ho, jeevan ka tum sangeet. Tum zindagi, tum bandagi, tum roshni, tum taazgi. Har khushi, pyar ho, preet ho, malmeet ho. Aankhon mein tum, yaadon mein tum, neendon mein tum, khwabon mein tum. Tum ho meri har baat mein, tum ho mere din raat mein. Tum subah mein, tum shaam mein, tum soch mein, tum kaam mein. Mere liye paana bhi tum, mere liye khona bhi tum. Mere liye hasna bhi tum, mere liye rona bhi tum. और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मेरे तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन. कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो, जीवन का तुम संगीत. तुम जिंदगी, तुम बंदगी, तुम रोशनी, तुम ताजगी. हर खुशी प्यार हो, प्रीत हो, मनमीत हो. आंखों में तुम, यादों में तुम, नींदों में तुम, ख्वाबों में तुम. तुम हो मेरी हर बात में, तुम हो मेरे दिन रात में. तुम सुबह में, तुम शाम में, तुम सोच में, तुम काम में. मेरे लिए पाना भी तुम, मेरे लिए खोना भी तुम. मेरे लिए हंसना भी तुम, मेरे लिए रोना भी तुम. और जागना सोना भी तुम. जाऊं कहीं देखूं कहीं तुम हो वहां, तुम हो वहीं. कैसे बताऊं मेरे तुम्हें, तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं.
2: नाना पाटेकर जी के आवाज़ में उन्हीं के गीत ये गाए हुए हैं. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Er is niet genoeg ruimte in je geest voor zowel zorgen als vertrouwen. Jij moet beslissen wie er in je geest mag wonen. Kijk hé, ki do talwar ek mayan mein nahin reh sakta. Uit de scherven van het verleden, uit de scherven van het verleden, zorgvuldig bijeengerapt, ontstaat een mozaïek van wie ik nu ben. Eerst gebroken, daarna verweerd, toen geheeld en uiteindelijk weer compleet.

ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, ऊपर से मैं सख्त हूँ अंदर से नरम हूँ, अंदर से ठंडा हूँ ऊपर से गर्म हूँ। अरे बाप रे बाप, डर गया ना।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यूं ही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेतों के लिए तार कीजिए 9 7 3 5 7 6 2 2 6 9 8 फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

और आप लोग जानते हैं हमारे यारो पुराने गीते की मजा कुछ और है। हम चलते हैं परमा श्री मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में।

और दोस्तों प्यार में तो कभी कभी छोटी बात से बड़ी बात हो जाती है, आपको तो मालूम है। और कभी कभी प्यार में लोग भूल जाते हैं कि कौन से बात वो करते हैं, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए। तो ये सब बात है हमारे यारों। तो हम चलते हैं अगला गीत की ओर, वो है ओ साथी रे।

0: बिना भी क्या जीना है, और रेडियो फाहुन के बिना कैसे रात कटेगी। तो हम चलते हैं एक रोमांटिक सॉन्ग किशोर जी के आवाज में।
1: हाँ,
2: या चुप रहूं
1: ना,
2: दिल में मेरे आज क्या है,
1: क्या है

और दिल की टुकड़ी टुकड़ी करके और मुस्कुरा के चले गई। उसके बाद पे हम एक और गीत को सुनाते हैं।

0: हाथ डाल, ऐ गुल चेहरा परी जमाल, मुद्दत से दिल उदास दादा दास है, तेरे होठों की प्यास है, ऐ दिल पर मेरे लब पर कब छलकेगा तेरे लब का जा जा जा आम।
1: और जाम, तो ये बात है दोस्तों, यानी कि और यहाँ से हम शुरुआत करते हैं कुछ सॉन्ग्स आप लोग को। और ये सॉन्ग्स है यारन यारन, यानी कि बहुत पुराना नहीं है और बहुत नया भी नहीं है, कुछ मिली जुली गीत है। दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, गोविंदा करिश्मा कपूर ने इस फिल्म में काम किए हैं।

0: ओ मेरे दिल की चैन ओ सहनाई मेरे दिल को चुपाती लिए।
1: सुनो कहां कहां सुना कुछ हुआ क्या
2: अभी तो नहीं कुछ।

और आपको भी कुछ हुआ है? नजगिल लता जी किशोर दादा के ये गए हुआ जोंग है। अब आते हैं नजगिल लता जी और फरमा श्री मोहम्मद रफी का जोंग है।

मेरा मने प्यासा। दोस्तों ये गीत को और हम बढ़ते ही अति हिट फॉर द वेंस, बहुत हिट फिल्म रहा और फिल्म के नाम ही धर्मात्मा का एक सॉन्ग हम चलाने जाते हैं। तो हमारे दोस्तों हम चलते हैं फिल्म धर्मात्मा का एक गीत।

और तुम जान हमारी हो, फिल्म के नाम है धर्मात्मा का ये एक हिट फिल्म सॉन्ग हम आप लोग को सुनाए। और अगर आपकी चांद कहीं खो गया होगा तो ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए। फिल्म के नाम है का

श्री मोहम्मद रफी का गया हुआ सॉन्ग है खोया खोया चांद, फिल्म का नाम है काला बाजार। के बाद हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं और कैसे चाहते हैं, यहाँ पे इस गीत बताते हैं। फिल्म के नाम है कुर्बानी, ये भी एक हिट फिल्म सॉन्ग यानी कि एक हिट फिल्म थे दोस्तों। और हम चलते हैं, हम तुम्हें चाहते हैं कैसे।

ऐसे कि कैसे, ये भी एक बहुत हिट फिल्म थी दोस्तों, कुर्बानी फिल्म के नाम है। तो हम चलते हैं मोहम्मद अजीज की ओर और अलका की ओर दोस्तों, और ये भी एक हिट सॉन्ग है।

ऐ दिल और ऐ दिल है और ऐ दिल है। दिल के बाद हम जाते हैं एगो बेस्ट ऑफ देवानंद सुपर हिट सॉन्ग और वो है एवरग्रीन देवानंद हिट सॉन्ग। फिल्म के नाम है और काला बाजार का ये सॉन्ग है हमारे यारो और ये भी आप लोग को हम चलाएंगे।

और पूछ मेरा क्या नाम रे, नदी किनारे गांव रे, और पीपल झूमे मोरे आंगना, और ठंडी ठंडी छाँव रे। तो उसके बाद हम चलते हैं, फिल्म के नाम है धर्मवीर परमाश्री मोहम्मद रफी का गाया हुआ सॉन्ग है अनहिट सुपरहिट फिल्म।

और आकर दोस्तों महफिल्म के नाम है और वो है धर्म और वीर का ये जोन है। और हमारे दोस्तों एक गीत और हो जाए तो मेरे ख्याल से और चलेगा। नहीं नहीं दोस्तों मुकेश भाई थी मुकेश करोड़ों को करोड़ों का दिल चुराने वाला हार्ट ऑफ मिलियंस और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। शंकर जय किशन के साथ में हसरत जयपुरी शैल

उम्र लग जाए। और ये गीत के बाद हम चलते हैं और एक सॉन्ग की ओर। ओ हे करोड़ों का दिल चुराने वाला, द हार्ट ऑफ मिलियंस, और वो है माइटी मुकेश का ये सॉन्ग है। दोस्तों आओ सुना जाए क्या है ये।

पसंद होगा, वही गीत जॉनी आपको सुनाएंगे। हमारे यारों, ये सॉन्ग जो है दोस्तों पुराने गीतों की बाहर सॉन्ग है, जो मेरे ख्याल से न सिर्फ मुझे, आपको और आपकी बगल वाला या बगल वाली को भी अच्छा लगेगे। और निमर्स फन मेरे दिलिए पुकारे आजा, मूवी का नाम है नागिन।

पुकारे आजा, मेरा दिल ये पुकारे आजा। लता जी और तलत महमूद का ये जोन थे। दोस्तों हम चलते हैं और आगे को अपना प्रोग्राम को लेकर, और वो है अल्लाह जाने क्या होगा आगे। मनोज कुमार हरियाली और रास्ता का ये जोंग है, हमारे यारों हरियाली रास्ता का ये जोंग है।

और अल्लाह तो सब कुछ जानते हैं कि इश्त में क्या क्या हो जाते हैं। तो दोस्तों इश्त में बहुत कुछ हो जाते हैं। तो हम चलते हैं इसके बाद में, हम चलते हैं मुझसे इतना प्यार मत करो लता जी तलत महमूद का ये सॉन्ग है। मुझे इतना ज्यादा प्यार मत करो कि मुझे अपने आप पे गर्व हो जाए।

और इतना न मुझसे तू प्यार बढ़ा कि मैं एक बादल एक मैं हूँ जो बादल आवारा जो यहाँ से वहां तक। और वो चलते ही तदलत महमूद का और नाइटिगेल वताजी का जोंग थे। आशा परीक सुनील लतीफ ने काम किए। उसके बाद में हम चलते हैं दोस्तों और वो है नाइटिगेल लता मंगेशकर और को किशोर कुमार का। ये सॉन्ग है लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या है, आपकी आंखों में क्या है, ओ तो आपको पता है कि किसके सपने आप देख रहे हैं।

और दोस्तों लिखा है तेरी आंखों में और आपकी आंखों में क्या लिखा है आपको तो पता है। साथ ही साथ हम चल रहे कि पन्ना की तमन्ना में नाइटिंगेल लता जी किशोर दादा का ये सॉन्ग है। देवानंद सिंह ने तमन्ना ने इस फिल्म में काम किया, इस मूवी में क्या और पूछा है कि तुम्हारे तमन्ना क्या है, पन्ना ने पूछ रहा है।

गौड़ मिल जाता है, हीरा मिल जाता है, नैतिकता जी का ये जोन थे। उसके बाद प्रेम चलते है मौफी के नाम असली नकली निखती होने द्रियन शस्तक का, जिसमें देवानंद ने काम किया है। हमारे दोस्तों मौफी के नाम है असली नकली का एक सॉन्ग है परमात्मा श्री मोहम्मद रफी और नैतिक लता जी का सॉन्ग है, जिसमें शंकर जयस्कन का म्यूजिक पे इसे काम किया है हसर जयपुरी के साथ में। तो हम चलते हैं मूवी का नाम है असली और नकली।

की डोर से बांध लिया है मौफी के नाम थे असली नकली के बांध पे हम जाते हैं और मधुबाला की ओर परमाशीर मोहम्मद रफी और आशा जी का सॉन्ग है अच्छा ये मैं हारी काला पानी जोंग मूवी का नाम है।

और अच्छा ये मैं हारी चलो काला पानी का ये सॉन्ग है दोस्तों। ओल्ड एंड गोल्ड का प्रोग्राम आज हम चलाते हैं और ओल्ड एंड गोल्ड के बांध में अगला सॉन्ग की ओर हम जाते हैं। प्यार ही प्यार देखा है तेरी आंखों में बस प्यार ही प्यार, पद्माश्री मोहम्मद रफी का ये सॉन्ग है, मौफी के नाम है प्यार।

प्यार ही प्यार मौफी का नाम है हमारे दोस्तों। और हाल कैसा है आपका, ये हम नहीं पूछते हैं, किशोर दादा ने पूछ रहा है। मधुबाला मौफी का ये सॉन्ग है, चलती का नाम है गाड़ी।

और हाल कैसा है आपकी आप बता दीजिए, मुझे इतना प्यार है और किससे ये आप भी मुझसे बताइए।

पर ही तुमसे अपने ही दिल से पूछो, हम चलते हैं और आगे। तो एक गीत यहां पर हम हमने प्लेयर पे रख चुका है अखियों के झरोके से, और ये एक मस्त भरी टॉप सॉन्ग है दोस्तों, आओ सुना जाए।

और अनोखो अन अन अखियों की झरो की बात हम चलते हैं। आप जहां भी हो, जिस हाल में भी हो, हमारा प्यार

इस तरह से हमारे जिंदगी में शामिल जो होगा तो और क्या क्या नहीं होगा आपको हम जरूर बताएंगे। उसके बाद हम चलते हैं वो मेरी नींद मेरा चैन की ओर है।

और ये प्यार करते हैं तो दर्द भी सहना सीख लीजिए, कारण प्यार में दर्द तो जरूर होता है, नींद भी उड़ जाते हैं। और साथी साथी 1982 का एक स्पेशल गजल सॉन्ग फ्रॉम जगदीप।

आया जगदीप सिंह एक हिट गजल सॉन्ग थे हमारी आर्य साथ ही साथ हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया मिस्टर कुमार यानू अलका यागनी क्या सुनाते हैं यार नहीं कल तक हिट सॉन्ग फन जॉनी नंबर वन।

कर दिया और जाने क्यों मुझे मालूम नहीं दोस्तों, अगर आपके मालूम होगा जरूर कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं, मोहब्बत लोग क्यों करते हैं और ये क्यों करते हैं। नाइटिंगेल लता जी आपसे पूछ रहे हैं, अगर मालूम है तो जरूर बता देना।

मोहब्बत करते हैं क्या आपको ये मालूम हो तो जरूर बताना कि लोग मोहब्बत क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं, कब करते हैं। तो मोहब्बत कई तरह के होते हैं और मोहब्बत अगर जो आपको मालूम है तो जरूर बता देना। और एक और हम चलते हैं मोहब्बत का सॉन्ग और आज हम मोहब्बत के प्यार के मूड में हैं। हम चलते हैं द टाइगर ऑफ इंडिया कुमार शानू की ओर और ये गीत आपको जरूर सुनना चाहिए।

कि तुम कोशिश करना और कोशिश भी करना रेडियो फाहुन सुनने को दोस्तों। तो हम चलते हैं अगला जोंग की बप्पी लहरी का। ये जोंग है आशा जी के साथ में, इस गीत को गाया है, आओ सुना जाए।

फिल्म नागिन, फिल्म नागिन जो नहीं खतिन फिरन फैफ तक में पिक्चराइज किया गया है सुनने वालों। और इसमें जो स्टार कास्ट थे, प्रदीप कुमार, विजयंती माला, जीवन मुबारक, और गीत हमको सुनाए लता जी, और साथ में देखे तो आशा भोसले जी और हेमंत कुमार जी के आवाज़ में यह सुंदर सुंदर गीत आपके लिए पेश किया जाता है आपका फाउन हिंदुस्तानी रेडियो के जरिए से। इस बार है अकेली मत जाइयो, फिल्म बैजू भौरा से।

मोहम्मद रफ़ी और लता जी की आवाज़ में सुनाई हमको फिल्म बेज भौंरा से ये सुंदर सा गीत निकाला गया है।

अकेली मत जाइयो। फिल्म का नाम सिंगर है लता जी और मोहम्मद रफ़ी साहब।

हवा, ये मस्ताना मौसम, जैसे हमने बताया गीत के शुरुआत में, तो लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी की आवाज़ में अकेली मत जाइयो फिल्म का नाम, वही फिल्म अकेली मत जाइयो से।

सवाल आप करें, एक सवाल मैं करूं। जी हाँ, लाइफ ऑन इत्तेहाख फाहम हिंदुस्तानी रेडियो, जिस पर आप चुने।

लता और रफ़ी जी ने सुना दी कि कर गए जिसका इंतज़ार, देखो लाई मेरा प्यार। फिल्म में जो स्टार कास्ट थे राजेंद्र कुमार और जमुना, आप सोचते होंगे मैं तो कह दी फिल्म पर नाम नहीं बताई, तो यहाँ से नाम है फिल्म हमराही। खुद से वादा कर, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, खुद से वादा कर, खुद ही को ज़ुबान दे, नहीं रहोगे कदम। खुद से वादा कर, खुद को ही ज़ुबान दे कि नहीं रोकेंगे अपना कदम, जब तक पहुँच नहीं जाता, जब तक पहुंच नहीं जाता मुकाम पर।

यल बोले और दुनिया डोले, हमको सुनाए सुने वालों लता जी और मोहम्मद रफ़ी जी। और उसी फिल्म का नाम सरगम, फिल्म सरगम से हम आपको लेकर चलते हैं वही मशहूर गीत जो यहाँ से हम मिलकर सुनेंगे। और गीत का बोल है दफली वाले दफली बजा।

मोहब्बत सजा है ये माना मेरी जान मोहब्बत।

करारी किस लिए है। बलबीर और मोहम्मद रफ़ी जी ने हम सबको ये सुंदर सा गीत और सुनाए है। दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है, यानी कि त्वे फॉर्मख, दुनिया का हर चीज़ का विकल्प है किंतु स्वयं का कोई विकल्प नहीं है। ये बैंत अलीन एन एन एन पर्सोन, एन यूनिक पर्सोन, इसलिए सबसे अधिक स्वयं को स्वस्थ व प्रसन्न रखें। अपने आप को खसोंद एन खलुक रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है।

ये गोटेदार लहंगा जो हमको गाकर और सुना दी है वो है रफ़ी जी और साथ दे रही थी आशा भोसले जी ने।

थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा।

फिल्म मिलन से निकाला गया सुनने वालों ये सुंदर शागीत जो लता जी फरमाई कि तो है सवरिया ना ही खबरिया। सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, सच बोलने से हमेशा दिल साफ रहता है, अच्छाई करने से हमेशा मन साफ रहता है, और मेहनत करने से, जी हाँ, और मेहनत करने से हमेशा दिमाग साफ रहता है।

फन हंट हिंदुस्तानी रेडियो के माध्यम से यह कार्यक्रम आपके घरों तक पहुंचाया जाता है। अगर आप भी हमारे साथ देने के वादा करें तो हम यही मस्त नंग में लुटाते रहेंगे। साथ देने के लिए रेडियो फाहून के मेंबर बन जाइए और हमारे कार्यक्रम से आनंद उठाइए। लेते होने के लिए तार कीजिए 9735 तक 3 तक 7 फेटा फाहून हिंदुस्तानी रेडियो।

क्या हम उसके बारे में कभी चिंतन किए कि हमारा पर आजा, हमारा वृत आजा, हमारा वृत आजी कौन थे? तो इस अंतर्गत में कुछ मटेरियल भारत से भी और हम सब इस कार्यक्रम में जोड़ेंगे अभी। और ख़ास करके मैं आपसे गर्व के साथ ये कहना चाहूँगा कि अपना गांव जहाँ से हमारे पर पर पर दादा जो भारत को छोड़ कर के गए थे, वहाँ से और पंडित सूरज राज जी जो हम सब के साथ और अभी आगे कार्यक्रम में उसे टेलीफोन द्वारा और सम्मिलित करेंगे। आज के कार्यक्रम में हमारे पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी जो भारत से लेकर के और मूर्ति जो सूरीनाम देश में गए हैं वहाँ पर स्थापित किए हैं, इन बातों के हम सब अभी आगे में सुनेंगे। ये ख्याल रखना कि कुछ मटेरियल जो भारत में बनाया गया है उसे भी कोशिश करेंगे और अभी आपके लिए रखने के लिए। तो दोस्तों, पहले हम उस गीत की ओर बढ़ेंगे, तेरा राम जी करे बेड़ा पार, उदासी मन काहे को डरे।

0: ये है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो और ये कार्यक्रम जो हमारे पुरखों जो 150 साल पहले सूरीनाम देश को और प्रवेश किए है, जो भारत देश को छोड़ कर के सूरीनाम देश को गए हैं और वहाँ जा कर के हमारे जो परिवार वहाँ शुरू हुआ सूरीनाम में, जिसका और बीच हम सब है आज इस कार्यक्रम में, उसके बारे में कुछ संदेश रखा जाएगा। ऐसा हुआ कि हम सब तैयार होकर और भारत देश पहुँचे और अपना परिवार के खोज में, तो परिवार के खोज खोजते खोजते और बहुत जो मेहनत से वो स्थान को प्राप्त किए जहाँ से हमारे पुरखों हमारे पर दादा अख्तिन ससन नई खंतक में, उस समय जब बोट अब्बे जहाज जो होते थे लकड़ी का और बनाया जाता था, जिसे हम सैल बोट जो हवा के माध्यम से और कुछ 3 महीना तक समुद्र के लहरों द्वारा भारत को छोड़ करके सूरीनाम को पहुँचे, इन फीरन तख्त दाख जो रईस दूर हुए थे, तो वहाँ जा कर के पहुँचे और वहाँ अपना कंत्राक जो होते थे उसको काट करके और अपना फिर परिवार घर गृहस्थी बढ़ाए। तो हम भारत देश में पहुँचे और पहुँचे कहाँ पर, एक स्थान है जिसे उत्तर प्रदेश में कहा जाता है गोंडा, और गोंडा में गोंडा भी ठीक से और देखा जाए कि गोंडा एक डिस्ट्रिक्ट है और एक दौरप का नाम है भी, और दौरप में भी जो बड़े दौरप होते हैं उसमें भी छोटे छोटे और अपना इलाकाए होते हैं। तो एक होता है करगोपुर, और करगोपुर में हम लोग प्रवेश किए और वहाँ जबकि जा कर के खोजा गया तो और मिला एक पंडित जी, और उसके साथ हम कार्यक्रम में पंडित सूरज जी के साथ कार्यक्रम में आगे हम प्रवेश करेंगे।
1: देखिए, जब आप पढ़े लिखे तो आपको ये तो क्लियर होगा कि ब्रह्म से
2: हम लोग
1: और शक्ति से
2: जी
1: हम लोगों का प्रादुर्भाव हुआ।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि आए,
2: सप्तऋषि
1: सनक सनंदन सनत को जो आए चार, और उसके बाद पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: पांचवे नारद आए।
2: हाँ जी,
1: जो है तो 7 और 5 12 लोग हो गए।
2: हो गया 12।
1: 12 से हम लोगों का शुरू हुआ पूरे सृष्टि का निर्माण
2: शुरू।
1: मनु सतरूपा आई, इनके द्वारा
2: हाँ जी
1: बना सब ठीक है
2: जी।
1: अब जब हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: जी,
1: हमारा गोत्र ब्रह्म है
2: क्या?
1: फिर हम इधर उधर भटकने की जरूरत क्या?
2: जरूरत
1: हमारा गोत्र अच्युत है। अच्युत गोत्र यानी भगवान विष्णु का गोत्र होता है।
2: हाँ जी,
1: तो भगवान विष्णु का गोत्र अच्युत है, तो आप ये गोत्र लेकर के अपना काम कर सकते हैं, क्योंकि निज गोत्र मेरा ब्रह्म है। जो हमारा गोत्र है वो ब्रह्म है, ब्रह्म के अलावा कोई गोत्र नहीं है।
2: सही बात।
1: सप्तऋषि भी तो ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए।
2: एकदम बिल्कुल।
1: तो जब ब्रह्म गोत्र से उत्पन्न हुए हैं ठीक है, तो फिर जो है अब हमें ज्यादा माथा पच्ची करने की जरूरत ही नहीं।
2: बिल्कुल ना, पर माथा पच्ची नहीं करेंगे तो कैसे आपके साथ यहाँ बैठे।
1: हाँ, ये सही
2: तो
1: है।
2: बोले प्यासा को आप समझ गए, तो मैं इसलिए आपका अप नंबर हो गया ना।
1: चलिए,
2: और जो इस समय हम लोग यहाँ पर ये ट्रैफल कर रहे हैं ये नहीं होता भी।
1: जी जी, सही है।
2: समझ गया,
1: ईश्वर की कृपा थी, मुलाकात ये, हो गई।
2: ये जो होना है वो होना है, और ये बड़ा ये तो मुझे, अरे यही तो मुझे देखना था।
1: दर्शन करवाते हैं। देखिए, सबसे पुराना मंदिर है।
2: हाँ जी,
1: ये उदासीन आचार्य है, उदासीन आचार्य श्री चंद्र भगवान नानक जी के लड़के।
2: हाँ जी,
1: तो नानक जी का ये मंदिर है
2: जी,
1: शिव जी का मंदिर है।
2: ये तो जो सोचा भी नहीं था।
1: हाँ, कीजिए।
2: ये है मंदिर पुराना।
0: सुनने वाले, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे, तो ये आवाज जो एक वहां करगोपुर में हम सब पहुंचे पुलिस खाना के पास और जो प्रश्न किए तो वहां ये पंडित जी को हम सबको मिला दिया गया। और पंडित सूरज जी जो अपना मोटरसाइकिल पे आए थे और हमने वहां का वातावरण हमने वहां का और पहुंचते हुए वो जो अपनापन होता है वो महसूस किया और मोटरसाइकिल पे पंडित जी के साथ बैठ गए। और जैसे कि मोटरसाइकिल खींच रहे हैं आगे के ओर तो सड़क पे देखने को मिलता है पत्थर का सड़क था, पर पत्थर का सड़क पर आप ऐसा महसूस कीजिए कि पत्थर का सड़क पर फूलों का और गुलदस्ता बनाया गया था। सुनने वालों और मोटरसाइकिल पे बैठे चल रहे हैं, आगे में देखते हैं कि एक महिला जो सड़क के किनारे खड़ा हो करके और लोटा जो कहते हैं पात्र में जल सूर्य देव को अर्पित करते हैं और आगे में गाय का तबेला दिखाई देते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। वहाँ एक व्यक्ति जो जैसे सूरीनाम में हम सब गर्मी में और धान काटते थे वहाँ एक धान काट रहे हैं और आगे बढ़ते हैं तो अपना ही गांव में जो महसूस होता है कि केन का झाड़ा यानी कि यहाँ पर केन ढेर सारे हैं और आगे मोटरसाइकिल पे बढ़ते हैं और फिर जहाँ कुछ झुंड के साथ लड़के बैठे हुए अपने बातचीत कर रहे हैं और थोड़ी दूरी पे वहाँ जो जैसे कि गांव के सबसे पुराना मंदिर और उसका दर्शन हुआ। तो अभी इस बात के बारे में और भी चर्चा होगा, पहले हम मंदिर का दर्शन करते हैं।
2: जय हनुमान बाबा, क्योंकि पुलिस वाला ने भी कहा कि भगवान तो आप ही है, ऐसे ही कहा ना। जय हो। देखो यहाँ ये मंदिर का नाम शुभ नाम का
3: जय हो प्रभु। पहले माथा तो टेक ले।
2: आय हो माथा टेक ले। जय हो प्रभु।
1: सर झुका के
2: ओ लगत तो टपता चला।
1: आइए दर्शन कर लीजिए हनुमान जी महाराज का।
2: हाँ हनुमान बाबा फोटो वो बना लेते हैं।
1: आइए फोटो खिंचवाते हैं।
2: हनुमान बाबा हम लोग ना आ गए बहुत दूर से। जय हो।

0: ये हनुमान जी महाराज है सबसे पुरानी मूर्ति है।
1: बहुत पुराना मंदिर भी जैसे आपने कहा,
0: बहुत पुराना मंदिर है।
1: हाँ।
0: ये जो है भगवान श्री चंद्र नानक पंथ का ये मंदिर है। हनुमान जी महाराज सीताराम परिवार से इत्यादि विराजमान है। आगे चलिए आपको शिव जी के मंदिर दिखाता हूँ। हाँ एक मिनट साथ में हो जाए, फोटो हो जाए।
1: सुने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने और ये कार्यक्रम में जो रखा जा रहा है कुछ बेल्द जो टेलीफोन द्वारा वहाँ पर बनाया गया, उसे हम सब भी इस कार्यक्रम में रख देते हैं ताकि आपको वो महसूस हो सके कि ये वहाँ पर का वातावरण कैसे हो गया था और अपना परिवार के खोज में जो हमारे साथ और भी लोग थे और जा कर के कितना खुशियाँ महसूस कर रहे थे। हम सब कुछ बेल्द मटेरियल है, शायद बेल्ट मटेरियल देख करके आप और भी समझ पाते, पर वो तो रेडियो द्वारा नहीं रखा जा सकता है। पर कुछ कोशिश है कि हम अपना और संदेश आपके साथ बांट सके। जो हम सब अभी हनुमान जी का मंदिर में दर्शन दिए, एक ऐसा मंदिर, एक पुराना मंदिर जो भारत के और करगोपुर में, जिसमें और प्रवेश करते ही मन एकदम पुलकित हो जाता है। तो हम पंडित सूरज जी से अभी और भी संदेश सुनेंगे। ये है मंदिर गांव में खरगोपुर और हम लोग ने यहाँ पहुँच गए हैं। ये जय शिव शंकर भवानी।

0: सुनने वालों, जैसे कि हम सब मंदिर का दर्शन किए, हनुमान जी का मंदिर और शिव जी का मंदिर जो वहाँ है, और उसके बाद में मंदिर से बाहर निकलते तो एक बड़ा सा वृक्ष था, और बड़ा सा वृक्ष के बगले में एक तालाब, तालाब वाटर फाइफर जो वहाँ पर बनाया गया है, कितना सुंदर रूप से जो और है, और उसके पाछे में एक समाधि। तो समाधि का मतलब क्या है, इसे तो हम सुन करके और चकित हो गए, पर वो समाधि के बारे में बताया गया और उसके बारे में तो एक अलग सा कार्यक्रम हम रखने वाले हैं और ज्योति का प्रकाश के अंतर्गत। पर समाधि वहाँ पर एक संत का वहाँ एक समाधि बनाया गया है, और उसे और देख करके भी दैट इज ओकन हेल बिसोंदर है दच दत कांसिन एंड दत दत बस्तात इन इंडिया, ऐसा ऐसा चीज़ों जो हम और भी शायद तीर्थ स्थानों पे नहीं देखेंगे, ये सुंदर सा और स्थान से देखे। तो सुनने वालों, आगे का कार्यक्रम में हम सब बढ़ रहे हैं, और वहाँ जो मंदिर के पास एक छोटा सा शहर है जिसे तौन सिटी कहते हैं वो लोग, जो बखेन यार नई खंतीन होंदत में जो अभी ब्रिटेन का राज चल रहा था वहाँ, और उसे तौन सिटी बनाया गया एक छोटा सा गांव में। और ऐसा समझिए कि एक रास्ता जो पत्थर का है और छोटे छोटे दुकानें बगल बगल करीब करीब में है, और सब एक दूसरे के वहाँ पहचानते हैं, क्योंकि मैं पंडित जी के साथ वहाँ और प्रवेश लिए है मंदिर के बस कुछ मलिटो यानी कि 2-3 मलिट का रास्ता था।
1: ये गांव है हम लोग,
2: ये खरगुपुर है,
1: खरगुपुर गांव,
2: खरगुपुर नगर पंचायत,
1: नगर पंचायत। और ये हम लोग पीछे के रास्ते से जा रहे हैं मार्केट,
2: नहीं अभी मार्केट तो उधर जाएंगे,
1: वो उस तरफ है,
2: टाइम में है, गुरुजी गए हैं मार्केट में, हम जब तक जो घूम आएंगे तब तक जो है जो वो भी आ जाएंगे, गुरुजी आएंगे तो उनसे भी हो जाएगी आपकी मुलाकात।
1: अच्छा
2: आइए चलते
3: हैं।
1: समाधि
3: सेतन वर्ति नाम लख बखराफ अध्ययन वर्ग नहीं है क्रीम तो मलित वर्ग के मार्ग पास होगा समय का दिनामिश ट्रांसलेट
2: जी जी जी जी
1: ये राजेंद्र जी बहुत चलाक आदमी है, ये ट्रांसलेशन में बहुत बढ़िया। पंडित जी कौन सा पूजा होता है
2: यहाँ? बाबा श्री चंद्र का पूजा होता है, और यहाँ पे भगवान शिव जी, भगवान हनुमान जी महाराज, सीताराम परिवार, ये सब जो है विद्यमान है इस मंदिर पे। ये उदासीन संप्रदाय का मंदिर है, राम जानकी मंदिर उदासीन आश्रम खरगुपुर के नाम से विख्यात है। इसमें जो भी लोग अपनी मनोकामनाओं को मान करके यहाँ आते हैं और उनके कार्य जो है पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं, उनके भगवान श्री चंद्र उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं, यहाँ के क्षेत्र के लोगों की मान्यता है। और हम सभी, हमारा बड़ा भाग्य है कि हम जो है मंदिर के सेवादार के रूप में बाबा श्याम सुंदर दास तूफानी बाबा जी जो हमारे गुरु जी हैं उनके सानिध्य में हम सही मंदिर पे रहते हैं। आप लोग आए हैं इतने दूर से, आए कहाँ से आए हैं आप?
1: होलैंड,
2: होलैंड जर्मन के पास,
1: जर्मन के बगल बिल्कुल करीब है।
2: तो आपकी जिज्ञासा यहाँ आने की कैसे?
1: जिज्ञासा ये हुआ कि कितने बार देखा कि लोग अपना खोज किए
2: जी,
1: मुझे भारत से कुछ 2001 से संबंध है, और मन में ये
2: वही
1: उठा
2: पर, वही जो है हॉलैंड जहाँ रहते हैं वही,
1: हाँ
2: तो वहाँ करते हैं,
1: तो वहाँ पर ये एक से हुआ दो, यानी कि ऐसे आगे बढ़ता गया।
2: ये मार्केट यहाँ से प्रारंभ होता है,
1: वो मार्केट तो आपने कहा था 10 मिनट का, ये तो 2 मिनट
2: अब स्टार्ट हो गए।
1: हाँ ये तो मार्केट है,
2: ये हमारा मार्केट है, और यहाँ पर जो है छोटा सा कस्बा है, और यहाँ से आगे 2-3 मीटर जाएंगे बाबा का मंदिर,
1: अच्छा,
2: जो कि बहुत ही भव्य है, दिव्य है, एशिया का नंबर एक शिवलिंग है, सबसे ऊंचा शिवलिंग है।
1: अच्छा।
2: अगर आप उसके दर्शन जो है करना चाहें तो अभी बाहर से है रास्ता, वहाँ से चलते हैं, वहाँ पे दर्शन
1: कीजिएगा। तुक ले लेते?
2: नहीं वो तो है ना,
1: ओ
2: आपके पास से वही गाड़ी, इसको बढ़िया हाईवे रोड बना है। अब योगी जी के शासन में जान लीजिए यहाँ का बहुत बढ़िया विकास हो गया। योगी जी ने अयोध्या में जिस तरीके से महोत्सव मनाया है, अब जान लीजिए पूरा जनता जागरूक हो गई
1: जी,
2: आज लोग अपने धर्म को पहचान रहे हैं, सनातन धर्म क्या है इसके बारे में लोग जान रहे हैं, आज बच्चा बच्चा जो है अपने धर्म को पूर्ण रूप से जान रहा है, तो ये बहुत बड़ा अलग जगह है आदरणीय योगी जी के।
1: खरगोपुर बाजार है ये सुंदर से।
0: दोस्तों जैसे कि अभी आपने ये कार्यक्रम में सुन रहे हैं कि कुछ मटेरियल जो हम सब टेलीफोन द्वारा वहाँ से और बनाए थे और इसी कार्यक्रम में रख रहे हैं ताकि आपको ये महसूस हो पाए और वहाँ का वातावरण किस प्रकार से है। दोस्तों ये हुआ कि हम सब वहाँ पर पंडित जी के माध्यम से हम सब वहाँ पहुँचे जो उस शहर का सबसे अवस्था वाला व्यक्ति था। वो बाबा जी कुछ 100 साल का था और उसके पास हम सब जा कर के पहुँचे और वहाँ ये प्रश्न रखे कि आप हम जिस जिस नाम से जुड़े हुए हैं जिस नाम को चला रहे हैं उस नाम को कोई व्यक्ति को वहाँ पहचानते हैं या नहीं। और वहाँ इस बात को भी ये पता चला कि ऐसा हुआ जो 150 साल पहले के बात होते हैं सुनने वालों, तो उस समय से और आज तक भी काफ़ी और बदलाव भी आ गया है देश में। कोई कोई बिल्कुल पूरा परिवार वो और स्थान को छोड़कर दूसरा स्थान से चले गए हैं और कोई कोई भी अभी तक वहाँ रह रहे हैं। और जैसे कि बाबा जी हम सबको और अपना संदेश सुनाए कि 5 पीढ़ी तक उन्होंने ऐसा दर्शन दिलाए कि कैसे एक ही व्यक्ति जो अपना जिस प्रकार से वो बाबा जी रह रहे इतना अवस्था का हो गए हैं और उनको इतना व्यक्ति को पता था। तो हम देखते हैं और कोशिश करते हैं ये जो मोबाइल द्वारा मटेरियल इकट्ठा गया है उसे रखने के लिए
2: बाजार में आप आए। हमारा भाग्य है कि आपको लेकर के हम मार्केट टहला रहे हैं। जो अलैया गट्टे की दुकान है, सब छोटे व्यापारी यहाँ पर जो अपना व्यवसाय
1: व्यापारी करते हैं।

0: सब गोत्र से
1: कश्यप सुने का हम ज्यादातर इस बारे में जानते भी हैं।
2: अच्छा
1: नहीं वो तो मिल जाता 1826 नहीं ये आप 1192 की अगर खोज करें तो हम बता देंगे आपको।
2: अच्छा
1: यदि आप 1192 की वाली बात पूछेंगे तब भी हम बता देंगे आपको खरगपुर में
3: वही बात समझ गए।
0: मार्केट में हम बता रहे हैं मार्केट में 1896 में हमारे पूर्वज रहे 1896 के बाद में
1: ये 1904 में टाउन एरिया बनी।
0: आपसे बताया 1904 में ये टाउन एरिया बनी और देश आजादी के बाद से इलेक्शन होने लगा और उसके पहले बहुत सारे लोग आए गए।
3: कितना बदल गया
0: बहुत बदल गया। अब देख जब आए होंगे
1: पहले आप लोग हम देखने से भी हम लोगों को मालूम हो जाता है कि आप लोग किस कास्ट से आप लोग अपर कास्ट से।
0: चलिए आप अभी आपको जन्मभूमि मिले है
2: सीधे नाम राम का देश तो यहाँ चले गए लेकिन सर नाम से फिर तो हॉलैंड आ गया यूरोप में हॉलैंड से तो यहाँ आ गया लेकिन भूमि यहाँ है कि यहाँ पर चलते तो आपको लगते है कि यहाँ के हो।
0: अब यहाँ से 18 किलोमीटर दूर भगवान लवकुश का क्षेत्र है जहाँ पे भगवान की गायें ये गोंडा में गाय चरती थी और जो है राज्य उनका लवकुश का श्रावस्ती है जहाँ पे भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ।
4: सुनो मालो ऐसा हुआ वहाँ पर हम सब बैठ के बातचीत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ वार्तालाप कर रहे हैं और उसी समय पे वहाँ पर मीडिया वाला भी उपस्थित हो गए। मीडिया वाला भी अपने ओर से और जोर डाले और जाकर के फिल्म बनाई यूट्यूब पे रखा गया है और उससे और खरगोपुर में जो एक गांव है वहां पर दिखाया गया। तो कार्यक्रम को आगे अभी हम सब कुछ और रखने वाले हैं। ये आप सुन रहे हैं जो मटेरियल जो टेलीफोन द्वारा बनाया गया था और वहां का हमारे अपनापन जो जैसे कि अभी आप महसूस कर रहे होंगे तो हम कार्यक्रम को और आगे बढ़ाएंगे।
0: उनके पूर्वज
3: और जदुनाथ नहीं था भाई
0: जदुनाथ कोई
3: या उनका बाप का बाप
0: जगुनाथ जगन्नाथ जगन्नाथ
3: क्योंकि वो जो
0: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं
5: आपने जन्मस्थली
6: जैसे कसस आपके संबंध
0: ये वहाँ इनके था इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर था
3: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना कंप्यूटर था ही नहीं तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया।
0: अच्छा वो मोहल्ला
6: उनके भाई जगदम्बा रहे तो वो सब मर मराए गए सब
0: उनके पूर्वज
3: और जदुनाथ नहीं था भाई
0: जदुनाथ कोई
3: या उनका बाप का बाप
0: जगुनाथ जगन्नाथ
3: क्योंकि वो जो 1896 में गया तो लिखवाया था 26 साल का पर वो कॉन्फिडेंट नहीं है कि 26 साल का
0: अब आप 18,000 किलोमीटर से दूर खाली यही पता कर रहे हैं
5: आपने जन्मस्थली
6: जैसे कसस आपके संबंध
0: ये वहाँ इनके था इनके जो पास जो कागज है वो खरगोपुर ही दर्शा
3: और नहीं देता और उस टाइम पे नहीं था सब कुछ ना कंप्यूटर था ही नहीं तो वो जो जो बोल दिया तो लिख दिया। दादाजी कैसे चार भाई थे
5: जगतमणि
6: जगतमणि
5: चार भाई थे
6: ब्राह्मण
0: जगतमणि थे ठाकुर और
6: विश्वनाथ
0: संसारी
3: ऐसे
0: ये चार भाई थे और बाकी ठठेर में
3: 1904 में ये दूसर सेटी बना
0: 1904 में
5: सब पूरा पूरा सब गायब होगा।
0: हाँ। अब जिससे पहले घर द्वारिया होता रहा
6: जय देखो हम बताइए
0: हाँ।
6: पहले अंग्रेज जब आवा है 1857 में यहाँ अंग्रेज भारत पे यहाँ कब्जा की 1860 में यहाँ बंदोबस्त अव्वल बनाई
5: बंदोबस्त अव्वल
6: बना तब वो पूरे जिला बनाई बाजार के नक्शा बनाई उसके बाद अव्वल के बाद फिर उमा बना है 72 में पहले बना जब 72 नहीं घुमा बना 47 में जो अब सब पटवारी उठवारी
7: अच्छा अच्छा हाँ
8: 47 में यानी 75 साल पहले की बात
6: और उसके बाद में 72 में आखिरी बना है लेकिन वो आबादी के नहीं बना है खाली खेत खरियान बाग बगैचे बना अब आप क्या बहुत दिन तो हो गया
8: अब बहुत दिन हो
7: पांचवी पीढ़ी
6: पांचवी पीढ़ी देर नहीं लगता देखो लाला महादेव श्यामलाल राजकिशोर और कल्लू लड़का पांच पीढ़ी हमारे सामने हो गई
7: पांच पीढ़ी आपके सामने
6: बड़ी बात नहीं है
7: समय बहुत ज्यादा
4: दादाजी जो भारत करगोपुर में सबसे अवस्था वाला आदमी व्यक्ति जो वहां पर हम सबको अपना संदेश सुनाए और जो संदेश को रखे कि कैसे पांच पीढ़ी उसके सामने जन्म लिया और फिर जाकर के आज भी वो और स्वस्थ हम सबको हम सब के साथ बात किए और जो रेडियो में कोशिश किया गया रखने को और शायद क्वालिटाइट जो हमारे और वॉइस का उतना बढ़िया नहीं होंगे पर संदेश जो दादाजी ने रखे तो संदेश से हम सबको और ज़रूर उस पर ध्यान देते हैं और ज़रूर इसके बारे में सोचते हैं कि हमारे पूर्वजों जो भारत को छोड़ करके सूरीनाम आए थे क्या हम कहाँ से आए थे हमारे बीच कहाँ से रखे हुए भारत जो हमारी मातृभूमि ही कहलाते हैं मातृभूमि है और क्या हम अपने जीवन में जो ये सुंदर सा शरीर जो ये पांच तत्वों का बना हुआ शरीर है इसके लिए तो देवताओं भी तरसते हैं क्या हम उसके कभी खोज किए हैं इस साल हम सब जो इसी प्रकार के कार्यक्रम में और यानी कि तेईमा जो एमिग्रासी नार सूरीनाम इसी अंतर्गत में और भी कार्यक्रम बनाया जाएगा आप के ओर से जब इसमें आप सहयोग देना चाहते हैं आप कोई के और किस प्रकार से आपके अवस्था वाला आपके नानी नाना आजी आजा अभी जीवित है और वो वॉइस आप रिकॉर्ड करवाना चाहते हो तो ज़रूर फाहुन हिंदुस्तानी रेडियो में मालूमात कीजिए और मांग कीजिए संजय को और संजय जो कोशिश करेंगे मैं ज़रूर इस बात को कोशिश करेंगे कि वो वॉइस जो आर्काइव में रखा जाएगा और ये हम अपना यानी कि उनस एक आइडेंटिटी को और हम जान सकेंगे तो दोस्तों हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे हमारे न्यूज़ और कमर्शियल के बाद हम सब फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे

0: चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला अपना गांव संभालो मैं तो शहर की ओर चला।
1: सुनने वालों, जैसे कि हमने कार्यक्रम बना रहे हैं और कार्यक्रम जो हमारा गांव से जुड़ा हुआ है, भारत भारत में एक, जैसे कि अभी आप सुन भी लिए हैं कि ये हमारा जो, जहाँ से हमारे पुरखों जो आज से 150 साल पहले छोड़ करके सूरीनाम को गए थे और वहाँ का त्योहारों कैसे मनाया जाता है, तो हम इस समय लाइन पे आ रहे हैं हमारे श्री पंडित सूरज देवराज जी से, और जो हम सबको वहाँ पर का वातावरण वहाँ के और संदेश वहाँ से और हम सब के सारा वृतांत जो सुनाए हैं, तो हम पंडित सूरज देव राज जी को और लाइन पे ला रहे हैं, और ताकि हम सबको जो वहाँ अभी तक जो अपना गांव है वहाँ का वातावरण, वहाँ कैसे वो त्यौहार, जैसे होली हम सब यहाँ मनाते हैं, जैसे दिवाली हम सब यहाँ मनाते हैं हॉलैंड में, सूरीनाम देश में जो हमारे पुरखों लेकर गए थे वहाँ से हम सब यहाँ आकर के मना रहे हैं। तो हम इस समय लाइन पे आ गया, मैं देख रहा हूँ कि सूरज, पंडित सूरज देवराज जी, और पंडित सूरज जी आपको हार्दिक से स्वागत किया जाता है फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़ रहे इस कार्यक्रम में। तो सूरज जी, भला ये बताइए कि जो हमारे पुरखों लेकर गए हैं और अभी तो हम सब उसी तरह से और चला रहे हैं कार्यक्रम, पर हमारे गांव में कैसे और करगोपुर में कैसे त्यौहार जैसे होली पे खास करके मनाया जाता है?
2: जी जी, जैसा कि मैं आपको बताऊं, हमारे खरगोपुर में गोंडा जनपद है, गोंडा जनपद का नगर है खरगोपुर, जो 1904 में

जाता है, ऐसी व्यवस्था की जाती है कि दिन में हम लोग जुलूस निकालते हैं, लोग ग्रुपिंग वाइज जो है एक भारी संख्या में पूरे नगर के लोग, आसपास के क्षेत्र के लोग एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े के साथ में, साउंड ऑन के साथ में जो है वो पूरा जुलूस निकालते हैं, और जहां जहां होलिका दहन की जाती है वहां वहां जाकर के दर्शन करते हैं, उनका भभूति लेते हैं, और उसके बाद में फिर ये कार्यक्रम होली खेलते हैं, लोग एक दूसरे से मिलते हैं, गले मिलते हैं, गुजिया मिठाइयों जो है अंबाल लगी रहती है, हर लोग एक दूसरे से मिल करके खाते पीते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग क्या करते हैं कि जब शाम होती है, शाम होते होते एक नई रोशनी उदय होती है और हमारे यहाँ सब कुछ परिवर्तन हो जाता है, और एक नई राधा कृष्ण के साथ, जो भगवान भोलेनाथ के साथ, पार्वती जी के साथ में, हनुमान जी के साथ में एक दिव्य भव्य झांकी निकाली जाती है, जो पूरे नगर के क्षेत्र के लोग और आसपास के लोग, आसपास जिलों के लोग आते हैं, और पूरे प्रशासन के साथ जो एडिशनल एसपी एसपी लोग रहते हैं इस कार्यक्रम को संपन्न करवाते हैं, और दिव्य और भव्य झांकी होती है, और ये पूरे नगर का एक जो है एकमात्र ऐसा त्योहार होता है। ये आपके खरगोपुर का, विशेष रूप से खरगोपुर में, आसपास जिले में ऐसा कार्यक्रम भी नहीं होता है।

0: तो सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुने पंडित सूरज जी की, जैसे कि हम लोगों ने फिर भी कुछ उसमें से मैं निकाला हूँ कि जैसे होली में अभी जैसे पंडित जी ने कहा कि खाने वाला पकवानों में और गुजिया, तो ये भी आज तक हम लोगों मनाते और बना कर के खाते हैं इस त्यौहार में। पर जिस प्रकार से और जुलूस निकलते हैं, जैसे कि अबतोख बोले जाते हैं, और हर एक स्थान पे जहाँ पर जैसे पंडित जी अभी और चर्चा किए कि जहाँ होलिका दहन यथा होली को और दहन मनाया गया, वहाँ वहाँ जा कर के और सभी मिल कर के एक दूसरे के साथ मिलते हैं। पर पंडित जी ये बात हो जाता है कि हम लोगों भी सूरीनाम देश में भी कुछ देहाते थे, और जहाँ पर कुछ 60 लोग का परिवार रहते थे, और वहाँ घर घर जैसे क्रोनम्बेरो सूरीनाम में एक स्थान है, उसे क्रोनम्बेरो कहा जाता है, वहाँ भी घर घर जा कर के और ये जो चौताल आदि किया जाता था। तो जैसे कि अभी आपने चर्चा की है, तो वहाँ का और ऐसा वातावरण वहाँ का करगोपुर का कैसे किया जाता है?
1: यहाँ पर जो है जितने भी लोग होते हैं वो अपने स्थान पे जाकर के अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं, मंदिरों पे जाते हैं, दर्शन करते हैं, और चौपाल लगा करके जो है हारमोनियम के साथ, ढोलक के साथ बढ़िया जो है खेले अवध में होली, ऐसे करके गानों के साथ में जो है, और तमाम प्रकार के जो है बढ़िया सांस्कृतिक कार्यक्रम किए जाते हैं, आयोजन किए जाते हैं, और हर लोग जो है हंसी खुशी माहौल के साथ ऐसे ही जो है होली मनाई जाती है, और ये 8 दिनों तक लगातार चलता है। 2 दिन पहले से ही तैयारी होने लगती है कि हाँ भैया होली है, होली है। हमारे यहाँ बहुत विधिवत तरीके से, और हमें बड़ा गर्व है कि आप वहां पर भी अपनी संस्कृति को नहीं भूले और चौपाल लगा करके हर जगह जा करके लोगों से होली मिल रहे हैं, होली खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी विशेष बातें हैं, और

0: ये तो गर्व का बात हो जाता है पंडित जी ऐसा बात सुनने में, क्योंकि हमें ज़रूर जो हमारे पुरखों ने लेकर गए भारत से और आज तक हम लोगों ने करते आए हैं, और हर हर जैसे कि आप लोगों पूरा सब जगह जा पाते हैं, तो हम लोगों का यहाँ जो शहरों थोड़ा दूर दूर से है, जैसे कि देनहाग, रोटरडम, लेवार्द और अम्स्टरडम, इन शहरों में होलिका दहन का और मनाया जाता है, यानी कि होलिका दहन किया जाता है। पर हम लोग एक शहर से दूसरे शहर अभी तक इस बात पे कभी चिंतन नहीं किया गया था, और ज़रूर इस जैसे कि आप कह रहे हैं तो हम सब के पास ज़रूर वो फैसिलिटी है, तो हम एक दूसरे के साथ ज़रूर जा करके इसका, और महत्वपूर्ण बात जो अभी आपने कहे कि एक दूसरे के साथ जा कर के मिल करके और न सिर्फ गुजिया खाएंगे पर खूब एक दूसरे के गुलाल भी लगाएंगे। पंडित सूरज जी, मैं एक प्रश्न और रखने वाले हैं आपके साथ, पर ज़रूर एक इस बात को कहना चाहूँगा कि चौताल जो अभी हम लोग यहाँ चलाते हैं, और जो होलिका जैसे कि आपने कहा 8 दिन तक वहाँ होते हैं, तो हम लोग यहाँ जब उसका कोशिश किया जाता है बुढ़वा मंगर तलक का, उसके बारे में आपके क्या संदेश है?
1: ये बहुत बढ़िया प्रयास है आप सभी का, वही ये सेम चीजें हैं। आप तो, मैं तो कह रहा हूँ कि आप उसको जो है यहाँ की जो परंपरा है आप वहां निभा रहे हैं। होली का त्योहार ही इसीलिए होता है कि अगर मन मुटाव हो गया है, मन में मैल जग गया है, आभास हो जाता है, एक दूसरे से गले मिलते हैं और जो है आपसी प्रेम सौहार्द बन जाता है, और एक दूसरे से मिल करके आपस में जो है बैठ करके जो जितनी बातें होती है एक दूसरे से परस्पर मिलन होता है। कहते ना कि मन की आटी अटपटी झटपट दर्शन, जैसे अटपट मिट जाता है झटपट दर्शन हो जाता है। तो जब प्रेम न खेतो उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा चाहो प्रजा चाहो शीश दिए ले जाए। जब आदमी झुकता है दूसरे के प्रति, गुजिया क्या है, गुजिया में मीठापन होता है, जब मीठा आदमी मीठा खाता है तो मिठास आता है। ऐसे ही एक दूसरे से मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल करके, और प्रेम से मिलते हैं तो सारे वैर भाव भूल जाते हैं, सारे आपस की जो तनातनी होती गायब हो जाती है। उस दिन हम लोग प्रेम से मिलते हैं और जो है अगले साल के लिए एकदम से वादा करते हैं कि पूरा जीवन आपके साथ हम जो है ऐसे ही प्रेम स्पर्धा बना रहे।

0: अति सुंदर रूप से आपने गुझिया का संदेश भी रख दिया पंडित सूरज जी, जो हम शायद इसके बारे में कभी सोचा भी नहीं था कि उसका जो मीठापन है और ख़ास करके। पर इसमें एक छोटा सा प्रश्न और, क्योंकि मन में ये लालच बढ़ रहा है कि आपसे प्रश्न करते रहूं, पर हमें भी अपना रेडियो का समय पे ध्यान देना है, तो एक छोटा सा और प्रश्न रखता हूँ कि हम सब जो चौताल का और जो आखिरी वाला हम लोगों ने जब वहाँ से जो इस घर से यानी कि कहीं मंदिर है तो कहीं किसी के घर पे जा कर के चौताल करते हैं, तो आखिरी वाला हम लोग गाते हैं कि सदा आनंद रहे वो द्वारे मोहन खेले होली हो, तो वो अभी वहाँ गांव में भी होते हैं?
1: जी जी जी, गांव में होता है अब धीरे धीरे आधुनिकता के दौर पे, लेकिन फिर भी जो है हमारे बुजुर्गों ने आज भी जो है सजोए रखा है। हम सब युवा पीढ़ी को संदेश देते रहते हैं और हम सभी भी उसी को आगे ले जाने के लिए अथक प्रयास में रहते हैं, और गांव-गांव सांस्कृतिक कार्यक्रम कराने का, और साथ साथ एक कार्यक्रम और का जो है हम लोग कराते हैं कि जैसे होली हो जाए, होली होने के जैसे अभी इस वक्त होली हो चुका है, लेकिन हम लोग 8 दिन तक जो होली मनाते हैं वो प्रयास करते हैं कि कम से कम 8 एरिया में जा करके नए नए लोगों से मिल करके उनको अपना बना करके अपनी तरफ आकर्षित करते हुए और अपना प्रेम सद्भाव का शिक्षा दे सके, उनको अपनी ओर आकर्षित कर सके, इसी को जो है होली कहा जाता है। होली मतलब होली, उसके साथ होलिया, वो मेरे साथ होले, प्रेम बना रहे। जी

0: संदेश सुनने वालों, जो हमारे साथ जुड़े हुए हमारे अपना गांव, हमारे अपना गांव जो करगोपुर है भारत देश, और ये बात है कि जरूर आप में ये दिलचस्प बनाने के लिए हम सब ये कार्यक्रम को रखते हैं। 105 तक यार 150 साल होंगे जो हमारे भारतवासी, हमारे पुरखों जो अपना और भारत को छोड़ करके सूरीनाम को गए थे, और सूरीनाम में जाकर आज कहीं 1873 से पीढ़ी जो सूरीनाम देश में, सूरीनाम से भी और हॉलैंड देश में आए, और कभी ये प्रश्न रखिए कि मैं किसका बीच हूँ, मेरे और जो वो नहीं होते तो हम भी नहीं होते। तो आज हमारे साथ जो अपना गांव से जुड़ा हुआ पंडित सूरज देवराज जी, जो हम सब के लिए अपने ओर से संदेश दिए, तो पंडित जी कुछ और संदेश आपके ओर से है और हम सब के लिए, जो खास करके हमारे फाहोन हिंदुस्तानी रेडियो के सभी सुनने वालों, जो आपके आवाज़ दुनिया में 188 देशों तक सुना जा सकता है, तो कुछ और संदेश से हम सबको सुनाइए।
1: अब सभी को, जितने भी लोग हैं सभी को हृदय से बहुत बहुत आशीर्वाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। होली आनंद पूर्वक ऐसे ही बुढ़वा मंगल तक, जैसा आप लोग परंपरा बनाए हैं, ऐसे मनाते रहें, और ये होली सदा होली बनती रहे, सदैव प्रेम मिठास बना रहे, सदैव जो है एक दूसरे के प्रति अनुराग बना रहे, सनातन में श्रद्धा बनी रहे, यही सुभाषीष, यही आशीर्वाद, आप सभी का प्रेम ऐसे ही मिलता रहे। जय श्री राधे राधे।
0: सुनने वाले, सुंदर रूप से हमारे साथ जुड़े रहे पंडित सूरज देवराज जी, जो करगोपुर भारत से, और हम सब के अपना, जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि अपना गांव से, जहां से हमारे पुरखों छोड़ करके और देश को और सूरीनाम गए थे, और वहां का संदेश हम सबको सुनाए। पंडित जी को एक बार से फिर हार्दिक से धन्यवाद दिया जाता है। हम एक सुंदर से गीत की ओर बढ़ेंगे, और गीत के बाद फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे।

0: वालों, बहुत गर्व के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारे साथ भी इस कार्यक्रम में कुछ ऐसा संदेश लेकर हमारे परम आदरणीय पंडित नरेंद्र सरजुबी सिर जी, जो एक महान यज्ञ सूरीनाम देश में करके आए हैं, और उनके ओर से एक ऐसा शब्द उन्होंने प्रयोग किया जिसे हम थोड़ा बेचैन हो गए कि कैसे वो और किए। तो पंडित जी, सर्वप्रथम आपको स्वागत किया जाता है फाउन हिंदुस्तानी रेडियो में, और जैसे कि अभी आपने हमें ये संदेश दिए कि आपने भारत को गए और भारत से नंदेश्वर महाराज को लेकर के सूरीनाम गए, तो पहले आप अपना एंट्री डालते हैं। पंडित जी, आपको स्वागत किया जाता है।
1: फाउन रेडियो की श्रोतागण, आप सभी को सब हृदय नमन, सब प्रेम नमस्कार। जैसे अभी आपने कहा है तो हम गत दिसंबर को गए थे भारत, वहां से शिव मंदिर, जो शिव मंदिर वेखनार पे पोत का है हंसू पे, तो उन्होंने निवेदन किया था नंदीश्वर भगवान को वहां से लाने के लिए, तो गए थे भारत और वहां से वो नंदी महाराज को ले करके निकले बेंगलोर से, बेंगलोर से अबू धाबी, अबू धाबी से पहुंच गए फिर हॉलैंड में, तो कोई प्रकार के विघ्न बाधा इत्यादि नहीं उत्पन्न हुआ, और फिर यहाँ से हॉलैंड से उनका जो अंतिम स्थान था जहाँ उनकी स्थापना होने वाला था वो था शिव मंदिर वेखनार पेपर पॉट सरनाम हंसू में। तो यहाँ की जो है कई हजार किलोमीटर बाबा ने पार किया, और ये चिंतित थे हम कि कैसे बाबा को हम साथ ले जाएंगे, क्योंकि उनकी जो है स्थान वहां मंदिर में लोग बना चुके थे उनको वहां स्थापना करने के लिए। तो जबकि आप लोग को पता है कि हवाई जहाज में जाने से पहले सिक्योरिटी जो है संरक्षण जो है तो बहुत बहुत सख्त है, और मैंने सोचा कि चलो अगर बाबा को जाना है तो बाबा ही इसी सिलसिला में, इस समस्या में हाथ बटाएंगे। तो सिक्योरिटी पहुंचकर मैंने उन लोगों को संकेत कर दिया कि देखो ये हमारे बाबा हैं, वो मंदिर के लिए हम साथ ले जा रहे हैं, और आपसे निवेदन है इसको आप देखें, और बाबा की ही कृपा हुआ, बाबा ही तैयार हुए, बाबा ने सब आयोजन कर दिया कि सिक्योरिटी ने उनको सिर्फ स्कैन किया, और स्कैन करने के बाद उन्हें कहा मनेर यू माख्यूरख यू वेख सरफोखन, आप अपना जो यात्रा आप जारी कर सकते हैं। तो बाबा को भारत से ही हांत बखाशे में हम साथ ले करके पहुंचे हैं सूरीनाम, और जबकि इस यज्ञ के सिलसिले में वहां की जो योगदान देने वाले हैं और जो उपसभापति है, जो बहुत जनता के लिए और धर्म के लिए बहुत मेहनत करते हैं, और बाकी जो हैं मंदिर के सदस्य और जो सभापति हैं और अन्य लोग, वो जब मूर्ति का खुलासा हुआ तो वो लोग वहां रो पड़े, वो भावुक हो गए, और बाबा को पहले अभिषेक करा करके दूध दही जल गंगा जल और शहद और शर्करा घी के साथ उनको पूरी तरह अभिषेक किया, और वहां से घंट नाद और शंख नाद से लेकर के उनको अपना स्थान पर ले जा करके वहां उनका स्थापना हुआ, बस बिल्कुल बाबा की ही आमने सामने। और जब भी आप नंदी महाराज के जो सिंह हैं उनकी दो सिंह के ऊपर आप अपने जो है उंगली डालें, आप युद्धम एनी वाइज फिंगर, अगर वो डाल करके और उस जो छिद्र है उसको बीच में आप देखें, और तो आपको साक्षात ही सामने बाबा दिखाना चाहिए, बाबा को आप उस रूप में आप देखेंगे। सो हुआ ये, और बड़ी बड़ी श्रद्धा और बड़ी प्रेम के साथ ये यज्ञ को जो है लोग सुसंपन्न किए, और जबकि हंसू में पहली बार ये जागरण का प्रोग्राम महाशिवरात्रि के अंतर्गत रखा गया था, तो काफी लोग वहां पधारे। तो ये जो श्रेय है, ये श्रेय हमारे धर्म का जो है, ये है हमारे बाप दादे के ऊपर जाते हैं, जिन्होंने हम सब के ऊपर, हम सब के ऊपर वो संस्कार डाले, हम लोग के अंदर में संस्कार डाले और अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना भाषा भेषा और भूषा को बता करके हम वो जो सूरीनाम में अब चौथा या पांचवा पीढ़ी अब चल रहा है। तो ये था एक छोटी सी संकेत इस विषय पर, और ना कि 150 वर्ष पहले, लेकिन आज तक भी साउथ अमेरिका में सूरीनाम सिर्फ एक देश ही है जो अपना जहां जिसको लिटिल इंडिया कहते हैं लोग, जब जहां की अपना संस्कृति, अपना सभ्यता, अपना धर्म, अपना भाषा, अपना भेषा और भूषा सब अभी कायम रखे हुए हैं, ताकि ये भी इस बात को प्रेसिडेंट मोदी जी ने कई साल पहले वो गए थे सूरीनाम और यहाँ हॉलैंड में रुक करके उन्होंने कहा कि देखो भाई, अगर आप जानना चाहते हैं हम क्या है, हम कौन है, कहाँ से आए हैं, तो सूरीनामी लोग से आप मिलें, सूरीनाम से जो है आप जाकर देखें कि हमारी क्या है। बाकी अन्य देश जो आसपास में है वहां तो संस्कृति और सभ्यता तो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है, लेकिन सूरीनाम एक ऐसा देश है जहाँ जैसे बाप दादे पहले आए थे वहां ही ऐसे सब लोग ऐसे कर रहे हैं। और सो क्योंकि भारत का उन्होंने एक एक उदाहरण दिया कि आजकल के जो माँ बाप हैं तो अब अपना मातृभाषा छोड़ करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे तमिल हो, चाहे जो भी हो, लेकिन वो भाषा को छोड़ करके इंग्लिश भाषा में बच्चे से बात करते हैं। तो वहाँ हमारी जो संस्कार है, हमारा संस्कृति, हमारा सभ्यता है, उसमें जाकर लुप्त हो जाता है। और यहाँ तक इसी संकेत से अपना वाणी को हम विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अब ये अवसर हमको प्रदान किए। 5 जून को तो 150 साल हो गए हैं जो भी हमारे पुरखे श्री राम को ढूंढने के लिए, श्री राम को पाने के लिए अपना देश छोड़ करके वहां पधारे, और ये बड़े गर्व के बात है कि हमारा निष्ठा, हमारा विश्वास, हमारा दृढ़ता अभी तक बना रहे और बना रहेगा, यही भगवान से यही प्रार्थना है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरिओम तत्सत।
0: सुनने वालों, जैसे कि अभी आपने सुनी पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने अमृत वाणी से हम सबको अपना संदेश रखे, और ख़ास करके ये संदेश है कि भारत से अभी हम सब जुड़े हुए हैं, क्योंकि नंदेश्वर स्वयं भारत से जाकर के सूरीनाम में विराजे हैं। तो हम कार्यक्रम के और अपने समाप्ति पे आकर पहुँचे हैं। आशा ये रखता हूँ कि कार्यक्रम में जरूर कुछ न कुछ संदेश आपके मिले होंगे।

जिंदगी छोटी नहीं होती है, लोग जीना ही देरी से शुरू करते हैं। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का वक्त हो जाता है। बस यही जिंदगी है दोस्तों। आज के कार्यक्रम में हमारे और सहयोग दिए पंडित सूरज देवराज जी, जो खरगोपुर और भारत से हमारे साथ जुड़े, और हॉलैंड से पंडित नरेंद्र सरजू मिसिर जी, जो अपने ओर से अपना संदेश रखे। आशा ये रखता हूँ कि कुछ न कुछ संदेश जरूर आपके पास पहुँचे होंगे। लोग अक्सर कहते हैं कि जिंदगी रहेंगे तो मिलेंगे, मगर एक अच्छे सच्चे दोस्त ने कहा है कि मिलते रहेंगे तो जिंदा रहेंगे। मैं हूँ संजय, और सभी को एक नमस्कार।